अगनशोरी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:37 और 11 सेकंड और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। भोर सुहानी की वो खूबसूरत महफिल है जिसमें बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं और जिंदगी की बातों के साथ। दोस्तों कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा होता रहता है और ये यूं ही होता रहेगा। इसी तरीके से इस रंग बदलती दुनिया में लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है और कभी कभी हालात भी हमारे खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो है हमारे दिल की अच्छाई, हमारा भरोसा और आगे बढ़ने का हौसला, यह हमेशा कायम रहना चाहिए। जिंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है, कभी सपनों की अहमियत, कभी अपनों की अहमियत, तो कभी खुद को संभालने का हुनर। अगर दुनिया बदल रही है तो हम भी सीखें टूटना नहीं बल्कि और मजबूत होना। यकीन माने हर बदलता मौसम अपने साथ नई शुरुआत लेकर आता है, बस जरूरत है दिल में उम्मीद बनाए रखने की, क्योंकि इस बदलती दुनिया में जो मुस्कुराना नहीं छोड़ते उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

जिंदगी हमारी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए। और जिंदगी में मुस्कुराने के लिए कोई बहुत बड़ी खुशी जरूरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीजों के जरिए भी आप जिंदगी को खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं जिंदगी हर किसी को आसान रास्ते नहीं देती, कभी हंसी के पीछे दर्द होता है तो कभी खामोशी के पीछे हजार बातें, लेकिन असली ताकत शायद यही है कि हालात कैसे भी हों, चेहरे की मुस्कान कम ना होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये हमेशा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम अपने दिल को कितना मजबूत रखते हैं। जिंदगी एक रंगमंच की तरह है जहां हर दिन एक नया किरदार निभाना पड़ता है, लेकिन सबसे खूबसूरत किरदार वही है जो मुश्किलों में भी उम्मीद को जिंदा रखे। अगर कभी दुनिया समझ ना पाए तो भी खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपनी एक अनकही कहानी लेकर चलता है, और शायद खुश रहना ही जिंदगी को सबसे खूबसूरती से जीने का तरीका है। और इसीलिए भले ही इंसान आपके बारे में कुछ भी कहे, कैसा भी आप पर तंज करे, लेकिन उन सब के पीछे आपकी अपनी एक ताकत होनी चाहिए जो हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। और जब आप मुस्कुराएंगे तब भी आपके आस पड़ोस में भी लोग मुस्कुराते रहेंगे।

कहता है जोकर सारा जमाना। फिल्म मेरा नाम जोकर का ये नगमा था मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत भोर सुहानी से। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप कहीं भी मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 6:10 पर सुनीता रहेंगी आपके साथ लेकर अर्पण। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई 2026 सुबह के 5:53 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:57 और 36 सेकंड। आइए अब हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर हाजिर रहेंगी आपके बीच सुनीता चौहान। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड भाग 69। और इसके लेकर आपके साथ रहेंगी सुनीता एक बार फिर से। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार, और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात, जिसे आपके लिए लेकर रहेंगे आपके बीच सुनीता चौहान। 7:30 का वक्त होगा आज सवेरे कार्यक्रम का, और 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे न्यूज इन इंग्लिश मॉर्निंग न्यूज, और 8:30 पर उर्दू में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया।

0: आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited candidates, selected from across the country, will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorism terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the

7.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 6:11 और 57 सेकंड ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। मैं हूं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

दलाई लामा कहते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान न पहुंचाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने

0: कि आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड आरोप।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 6:34 और 4 सेकंड। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण सुनीता के साथ।

जी हाँ, ईश्वर से यही प्रार्थना कि वो हमें मन की शक्ति दे जिससे कि हमारा जो भी निर्णय हो, हमारा जो भी कार्य हो, वो वैसा ही हो जैसा वो चाहता है। और कार्यक्रम अर्पण में अब आगे बढ़ेंगे और समय हो चला है रामचरित मानस गान का, तो आइए सुनते हैं बालकांड से ये अंश।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

6:53 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप इसे सुन रहे हैं और भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप सुन रहे थे। और अब स्टूडियो की घड़ी का इशारा है कि हम जाने देश दुनिया का हाल। जी हां, रामचरितमानस गान अभी आपने सुना और अब समय है समाचार का। समाचार होंगे पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों के बाद एक बार फिर सुनीता लौटेगी आपके लिए लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। समय रहेगा ठीक 7:10, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और क्या है ताजी खबरें। तो खबरें अब हम सुनेंगे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आपको जाना कहीं नहीं है, बने रहना है आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ ही।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबन्ध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।

0: के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India and Cyprus also agreed to expand cooperation in the maritime domain. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has said that India has adequate availability of petrol and diesel and supplies across the country remain stable. In a social media post, the ministry advised citizens to avoid panic buying and to purchase fuel only as per actual requirement. It said any temporary pressure at a few retail outlets is being addressed through continuous supply monitoring and coordinated distribution by oil marketing companies. Indian Army officer Major Abhilasha

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आपने ट्यून किया है। 7:10 और 58 सेकंड ये टाइम गोल्ड सुप्रभात का। मैं हूँ सुनीता

1965 की फिल्म हिमालय की गोद में से ये सॉन्ग आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और सॉन्ग में सूरजमुखी बगिया का जिक्र किया गीतकार इंदीवर ने। वैसे ये जो मई का महीना है ना, इसमें सूरजमुखी, बोगनवेलिया, हाइबिस्किस, मोगरा जैसे फूल अपने पूरे शबाब पर होते हैं। अच्छा, जब आप आज ड्राइव कर रहे होंगे तो सड़क के आसपास नजर डालिएगा, ढेर सारा बोगनवेलिया अलग अलग रंगों में आपको दिखाई देगा। भीषण गर्मी में ठंडक का एहसास देते ये फूल ठीक इस गाने की तरह।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात, आप एंजॉय कर रहे हैं FM गोल्ड पर, जो है आकाशवाणी दिल्ली का सुनहरा हिस्सा, और आपकी जिंदगी के खूबसूरत साथी आकाशवाणी के 90 साल का जश्न मना रहे हैं हम।

मैं सुनीता, यह है गोल्ड सुप्रभात। लू चलेगी, आसमान साफ रहेगा और तापमान मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस। यह है आज के मौसम का हाल। तो भाई, अब मौसम का हाल जान के अगर आपके मन में कुछ हो रहा है, डर लग रहा है, तो बस ध्यान आप ही को रखना है कि जब भी आप बाहर निकलेंगे तो पानी की बॉटल आपके पास होने चाहिए, सर को कवर करने के लिए कोई गमछा, कोई कपड़ा, कोई छाता आपके हाथ में, आपके बैग में जरूर होना चाहिए। बाकी ठंडे ठंडे गाने तो हम आपके लिए प्ले कर ही रहे हैं यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर। मैं हूँ सुनीता।

0: 1981 की फिल्म प्रेम गीत से ये डुएट सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल ने गाया था। ऐसे ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स पूरा दिन आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर। अब ये प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन से होंगे जिनमें ये गाने आप सुनेंगे, उनकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा देती हूँ। सुबह 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम होगा, जो कि एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है। 11:10 पर सुबह आप प्रोग्राम सुनेंगे तस्वीर, जिसमें आज पंचगनी महाराष्ट्र की जानकारी मिलेगी आपको, और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की बातें कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम में होंगी, और इसका टाइम रहेगा 1:10 पर। अब देखिए, फिलहाल घड़ी की सुइयों का इशारा है कि समाचार सेवा प्रभाग का जो कार्यक्रम होता है आज सवेरे, उसे हम सुन लें। सुनीता को दीजिए इजाजत, म्यूजिकल दिलेगी 8:45 पर लेकर फिर आऊंगी।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और मेरे साथ हैं आज नीना रकल। आज के इस अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे और याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। आज 23 मई 2026 है और समय हुआ है 7:30:46। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार नीना।
1: गुड मॉर्निंग फरहत। डियर लिसनर्स, द सन इज वर्किंग हार्ड टुडे, बट योर वर्क टुवर्ड्स योर गोल इज इवन हार्डर एंड पर्पस ड्रिवन। स्टे हाइड्रेटेड, कीप दैट ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड लेट्स बिगिन दिस गॉर्जियस सैटरडे टुगेदर विद गुड एनर्जी एंड मे बी एन एक्स्ट्रा आइस क्यूब इन योर लेमनेड। On that note, Farhat, we welcome our listeners to a brand new morning into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we usher in the morning vibes to give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 23rd of May 2026. Let's begin with the news headlines, Farhat.
0: जी नीना, सबसे पहले हम एक पॉजिटिव खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार

0: के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The Reserve Bank of India (RBI) has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI, in its release, said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%.
2: और रेनीना, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। वह सुबह कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। कोलकाता में वे मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो विक्टोरिया मेमोरियल भी जाएंगे। श्री रूबियो कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।
1: The India Meteorological Department (IMD) has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha during the next 5 days. Similar conditions will prevail over coastal Andhra Pradesh, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh during the same period. Meanwhile, the weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim until tomorrow. So Farhat, I think there is hope for it, Delhi also.
2: जी बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से पारा अपना जो है चढ़ा हुआ है, क्योंकि 45 से 46 डिग्री तक यहां पर पहुंच चुका है, गर्मी बहुत ही शबाब पर है। तो अगर मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो सबसे पहले राहत जो है यहां के आम लोगों को मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड खबर से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक डॉक्टर ने गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया का शीघ्र पता लगाने और गर्भवती महिलाओं को इसकी गंभीर स्थिति के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया है। प्रीक्लेम्पिया गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु की बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक बताया जाता है और इसमें आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होता है। कल विश्व प्रीक्लेम्सिया दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में एम्स की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रमुख डॉ नीना मल्होत्रा ने बताया कि यदि समय पर इसका पता नहीं चलता है तो इससे दौरे, स्ट्रोक, अंग विफलता और यहां तक कि मां और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर मल्होत्रा ने इस बारे में और जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
3: प्रीक्लेम्सिया एक बीमारी है जो प्रेगनेंसी में बनती है, जिसमें मां का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसका निदान है, इसको हम शुरू में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। और ये बीमारी अवल नाल की है, जिसको अबनॉर्मल और डिफेक्टिव होने की वजह से मां का मैनिफेस्टेशन हाई ब्लड प्रेशर के फॉर्म से, इसको प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। जब वो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर 5वें महीने के बाद बनता है या बढ़ना शुरू करता है।
1: The Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has successfully completed its first ever all-women international mountaineering expedition to Mount Everest, marking a historical milestone in the force's mountaineering achievements. We have a report.
4: A 14-member team of ITBP comprising 11 women climbers and 3 technical and support staff summited the world's highest peak on 21st of this month through the South Col route from Nepal side. The expedition was flagged off from the ITBP headquarters on 19th of April. As a part of its Clean Himalaya Save Glacier campaign, the team also carried out environmental awareness activities and collected non-biodegradable waste from the Everest region. Union Home Minister Amit Shah congratulated the team for unfurling the national flag atop Mount Everest. Mr. Shah said that by achieving this remarkable feat in extreme terrain and harsh climatic conditions, the team has upheld ITBP's motto of Nation Before Self. Meanwhile, with this achievement, ITBP has now now completed 232 mountaineering expeditions, including 5 successful Everest summits. The force has also scaled 6 of the world's 8,000-meter-plus peaks, including Mount

0: Everest, Mount Kanchenjunga, Mount Makalu, Mount Lahotse, Mount Dholagiri and Mount Manaslu. Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: और अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं।
2: इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर अभिलाषा बराक, सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन इन लेबनान, हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2025 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। मेजर बराक इज करंटली सर्विंग विद द इंडियन बटालियन एज कमांडर ऑफ द फीमेल एंगेजमेंट टीम इन द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान UNIFIL। शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी। With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper in receiving the honor.
1: और नीना, भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत ही अच्छी ये पहल है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग की बेजोड़ पहुंच और भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र में फ्लिपकार्ट की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाकर देश में विश्वसनीय और ग्राहक केन्द्रित पार्सल डिलीवरी समाधान प्रदान करना है। समझौते के अंतर्गत डाक विभाग पूरे भारत में फ्लिपकार्ट शिपमेंट के लिए अंतिम मील डिलीवरी सेवाएं भी प्रदान करेगा।
2: That's a brilliant initiative and partnership, Farhad. Now we move on to Punjab news. The Indian Institute of Technology, Roper, IIT Roper, the nodal institution for Punjab under the Yuva Sangam initiative, yesterday flagged off a Punjab delegation to Bihar as part of Yuva Sangam Phase 6. This is a flagship program of the Ministry of Education under the Ek Bharat, Shreshth Bharat campaign. Under this Phase 6, Punjab has been paired with Bihar. During their 10-day visit, the delegates will embark on a rich cultural and educational journey.
1: तो श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम महानगरों की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले नीना से जानते हैं चेन्नई में क्या है खास।
2: The Chennai port handled 57.9 million metric tons MMT of cargo, recording major growth across its four sea categories, including an all-time high container traffic of 1.9 MMT and handling 204,165 automobile units. According to Chennai Port Chairman S. Vishwanathan, KPL also handled 49 million metric tons of cargo, led by 25.72 MMT of coal and 18.86% rise in automobile handling to 191,825 units. The growth was supported by operational improvements, with Kamarjar Port completing capital dredging phase 6 at a cost of 440 crore rupees, enabling it to become Cape compliant with an 18 meter draft. Vessel turnaround time also improved under the One Nation, One Port initiative, reducing logistics delays and documentation issues in Exim trade. Combined operation income of the two ports crossed 2,400 crore rupees. Some more from Chennai, Farhad. State Health Minister K.G. Arun Raj has said that inspections of government hospitals to determine cleanliness rankings will be conducted quarterly. After chairing a review meeting with joint directors of medical services to assess the functioning of district headquarters, hospitals and other government medical institutions across the state, Arun Raj told reporters that the joint directors supervise several healthcare institutions, including government medical college hospitals, primary health centers and sub-direct hospitals.
1: और नीना, चेन्नई के बाद हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए 30 जून से घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और ये सर्वेक्षण 29 जुलाई तक चलेगा। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बैठक की। सभी दलों को एसआईआर की प्रक्रिया समझाई गई और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया। सभी दलों ने एसआईआर को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही मतदाताओं की मदद के लिए जागरूक

0: का वीडियो भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने सराय कालेखान नमो भारत स्टेशन पर व्यवसायिक स्थानों की लाइसेंसिंग के लिए निविदा आमंत्रित की है। ये कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन परिसरों को विकसित करने की दिशा में उठाया गया है। एनसीआरटीसी ने बताया है कि निविदा के अंतर्गत स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 818 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 स्थानों को 9 से 15 वर्षों की अवधि के लिए यथावत आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें फूड और बेवरेज आउटलेट्स, कैफे ये सब बनाया जाएगा। इसके अलावा इच्छुक बोलीदाता ई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 17 तारीख है। वहीं बुराणी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क का शिलान्यास कल किया गया। लगभग 3 एकड़ में बनने वाला ये पार्क केवल हरित क्षेत्र नहीं होगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक सहभागिता का आधुनिक केंद्र भी बनेगा। पार्क के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा 1 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं अतिरिक्त 1 करोड़ रूपये उनकी विधायक निधि से प्रदान किए जाएंगे।
1: फ्रॉम दिल्ली लेट्स मूव ऑन टू बेंगलुरु। Karnataka has urged the centre and NCRT to introduce a dedicated chapter on groundwater conservation and management in school textbooks under the revised NEP 2020 curriculum for 2027-28. Minor Irrigation, Science and Technology Minister N.S. Bose Raju said the state has written to the central government stressing the need for groundwater literacy at the school level, noting that the existing NCRT Class 10 content mainly focuses on surface water. The state has proposed the inclusion of topics such as rainwater harvesting, aquifer recharge, groundwater mapping, climate change impacts, advanced monitoring technologies and national water conservation programs. Some more from Bengaluru. Infrastructure Development Minister M.B. Patil on Friday announced that flight services from Bengaluru to Bidar and Kalaburagi will resume from June 1 and June 10 respectively. Star Air will operate flights on the Bengaluru-Bidar and Bengaluru-Kalaburagi sectors, with the government providing 28.47 crore rupees as viability gap funding. Advance booking for both routes has begun.
0: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एआई भविष्य की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति होगी और उन्होंने सभी क्षेत्रों में एआई को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुंबई के सहाद्री गेस्ट हाउस में मुंबई टेक वीक 2026 की घोषणा करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई टेक वीक जैसी पहल एआई के क्षेत्र में युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने में मदद करेगी और महाराष्ट्र को भारत में एआई नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। ये कार्यक्रम 29 और 30 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इंडिया एआई इन एक्शन थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कल आश्वासन दिया कि राज्य में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और नागरिकों से ईंधन की कमी की अफवाहों पर नहीं घबराने की अपील की। मीडिया से बातचीत में श्री भुजबल ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहा है वो काफी चिंताजनक है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और कई जगहों से अत्यधिक खरीदारी की खबरें भी आई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मई में सामान्य खपत के स्तर की तुलना में लगभग 20% अधिक ईंधन की बिक्री हुई है।
1: टाइम फॉर न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। द निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। द हॉस्पिटल हैज कम्प्लीटेड 2,000 किडनी ट्रांसप्लांट्स, मेकिंग इट द नंबर वन इंस्टीट्यूशन इन साउथ इंडिया फॉर दिस प्रोसीजर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी कंग्रेचुलेटेड द निम्स मेडिकल टीम फॉर दिस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एट निम्स हैज परफॉर्म्ड ऑल दीज ट्रांसप्लांट्स विद ग्रेट स्किल एंड डेडिकेशन। निम्स नाउ रैंक्स 3rd in the country for kidney transplants.
0: और श्रोताओं, अब हम मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है कि राजधानी दिल्ली में इस समय गर्म हवाएं चल रही हैं और गर्मी का प्रकोप जारी है। और तापमान की बात कर लेते हैं तो अधिकतम तापमान आज रहेगा 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात की जाए तो वहां पर आज बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान शहर का रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आकाश रहेगा। कोलकाता में गर्मी रहेगी और तेज धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास।

0: फोरकास्ट रहेगा।
1: वेदर न्यूज फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्री। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव heat wave. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 44 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between minimum of 30 degrees and a maximum of 42 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आज है 23 मई 2026। तो सबसे पहले आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आज विश्व कछुआ दिवस है।
1: यस फरत, दे हैव बीन क्रूजिंग आवर ओशंस एंड वॉकिंग आवर सैंड्स सिंस द टाइम ऑफ द डायनासोर्स, बट टुडे दीज एंशिएंट मरीनर्स नीड अ हेल्पिंग हैंड एंड वी विश आवर लिसनर्स अ हैप्पी वर्ल्ड टर्टल डे। The World Turtle Day is observed to spread awareness about the protection and conservation of turtles and tortoises around the world. The day highlights the importance of preserving their natural habitats and protecting them from threats such as illegal wildlife trade, pollution, climate change and habitat destruction. Environmental organizations and wildlife experts also encourage people to take steps towards safeguarding these slow-moving reptiles, which play an important role in maintaining ecological बैलेंस।
0: और नीना, वैसे भी हमने बचपन में कहानी सुनी थी कछुए खरगोश की, जिसमें कछुआ हम जो है जीत जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रेस में कछुआ हमेशा जीतता रहे ताकि जो इसकी संख्या है वो बढ़ाई जा सके।
1: वी विश द टर्टल्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड आवर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो टू देयर इनहैबिटिंग दिस अर्थ। Turtles and tortoises are among the oldest living creatures on earth, symbolizing patience, longevity and balance in many cultures. As several species face the threat of extinction, World Turtle Day serves as a reminder that protecting wildlife is a shared responsibility. The occasion encourages people to respect nature and contribute towards building a safer and healthier environment for future generations.
0: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात सन 1951 की। इतिहास में 23 मई का दिन तिब्बत पर चीन के औपचारिक कब्जे के रूप में दर्ज है। चीन के इस कदम का तिब्बत और दुनिया के कई देशों में जमकर विरोध हुआ था।
1: द सेकेंड डिफेंस्ट्रेशन ऑफ प्राग टुक प्लेस ट्रिगरिंग इवेंट्स दैट लेड टू द 30 ईयर्स वॉर इन 1618। इन 1785 बेंजामिन फ्रैंकलिन अनाउंस्ड हिज इन्वेंशन ऑफ बाइफोकल्स, कंबाइनिंग नियर विजन एंड डिस्टेंस विजन लेंसेज इनटू अ सिंगल पेयर ऑफ ग्लासेस। एंड इन 1915 इटली एंटर्ड वर्ल्ड वॉर वन बाय डिक्लेयरिंग वॉर ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी।
0: और नीना, सन 1984 की अगर बात की जाए तो भारत के प्रसिद्ध पर्वतरोही भजेंद्र पाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से आने वाली भजेंद्र पाल ने कई चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया। एवरेस्ट अभियान के दौरान उन्हें प्रतिकूल मौसम और कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
1: In 1949, the Federal Republic of Germany was officially established with the adoption of the Basic Law, and in 2016, ISRO launched the Reusable Launch Vehicle Technology Demonstrator, RLVTD, India's first indigenously built space shuttle from Sriharikota, Andhra Pradesh.
0: और सन 1995 में आज के दिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जावा का पहला सार्वजनिक संस्करण जावा 1.0 जारी किया गया। और सन 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। और इतिहास के बाद अब आइए कुछ जानी मानी शख्सियतों को हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्नाराम सुदामा की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। सुदामा ने राजस्थानी और हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और अन्य विधाओं में 25 पुस्तकें लिखी। इनका साहित्य अन्नाराम सुदामा समर्क के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। अकादमियों और संस्थाओं की अगर बात की जाए तो इन्हें 11 पुरस्कार मिले। इनकी साहित्यिक रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। इनकी सबसे प्रमुख रचना मेवे रारुख है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
1: जूल किल्चर, professionally known as Jewel, is an American singer, songwriter, musician, producer, actress, author and poet. She has received 4 Grammy Award nominations, and as of 2015 she has

0: और अब हम याद कर रहे हैं जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी को। ये दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में भगेरे का शिकार किया। सन 1939 से 1970 तक गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। इसके अलावा महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल का इन्होंने शिलान्यास किया जयपुर में 1943 में, और इंडिया का ये यानी भारत का ये पहला जो है महिलाओं का स्कूल था।
1: Rehman is an Indian film actor who has starred in over 150 films, primarily Malayalam, Tamil and Telugu films. From teen idol to season star, Rehman's journey through Indian cinema is nothing short of remarkable. Both Rasheem Rehman, he burst into the silver screen with Koodavidu in 1983, a debut that earned him the Kerala State Award for Best Supporting Actor. Enjoy listening to this song from his movie.

0: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक और आलोचक चंद्रबली सिंह को। गाजीपुर में जन्मे चंद्रबली सिंह ने लोक दृष्टि, हिंदी साहित्य और आलोचना का जनपक्ष नामक शीर्षक से पुस्तक का प्रकाशन किया। इनकी गिनती एक उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक के रूप में की जाती है।
1: टुडे वी ऑनर एंड रिमेम्बर

0: और श्रोताओं, आज के दिन हमें अलविदा कहा भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता राखलदास बंदोपाध्याय ने। ये भारतीय पुराविदों के उस समूह में से एक व्यक्ति थे जिसमें से अधिकांश ने 20वीं शती के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातात्विक उत्खनन, शोध और स्मारकों के संरक्षण में विशेष ख्याति प्राप्त की थी। और अब इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर किसी कारणवश आप हमारे कार्यक्रम को नहीं सुन पाए हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
6: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
7: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षक

0: Evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. Six Pacts Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled "She Put In Meat, A New Axis in the Making," the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you. Nina, and now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. Adab. Khabarname ke saath main Zameer Rizvi. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरों में तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकरीरशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रोजगार मेला वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकरीरनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकरीरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे में रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दिगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
2: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया जिसकी सदा

0: भारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है, जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं है 27.60 का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
1: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दोतरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अक्वामे मुत्तहदा के 2025 के एक बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराक जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराक तीसरी भारतीय कयाम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जुनूबी सूडान में अक्वामे मुत्तहदा मिशन के तहत खिदमात अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कांगो में अक्वामे मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अक्वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहिरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में

0: ये काबिले तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने आईटीबीपी के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
1: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रूपए 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रूपए 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाजे और आमनाए हुरमुज में रूकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी न करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल जरूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड यूसीसी की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में ucc.mp.gov.in वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजव्वजा यूसीसी मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दअमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। सीबीआई ने कहा कि यह पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर सीबीएसई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस की मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद यह फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्जा हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीकेकार में बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमरीका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वह अपने शौहर एब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वह गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फराइज अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 200

0: बचपन रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजनामा प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक्किद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल काहिल खित्ते और बाहमी मफादात के बैन अलाक़वामी मसायल पर गौर खौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाया किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम करेंगे। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

हफीज बनारसी फरमाते हैं कि क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते, क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। नगमा वही नगमा है उतर जाए जो दिल में, नगमा वही नगमा है उतर जाए जो दिल में, दुनिया को हफीज आप बता क्यों नहीं देते। कुछ लोग अभी इश्क में गुस्ताख बहुत हैं, कुछ लोग अभी इश्क में गुस्ताख बहुत हैं, आदाब वफा उनको सिखा क्यों नहीं देते। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। 8:00 हो गए हैं 40 मिनट और 25 सेकंड। म्यूजिकल दिल्ली की लेकर हाजिर हूं मैं सुनीता, और बाहर झांक के देखिए मौसम बदल गया है।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से एक रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यह जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंड

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कभी ना कभी किसी न किसी का इंतजार करते ही रहते हैं। जब भी अभी हमने जो गाना सुना था साथिया तूने क्या किया, उसमें जैसा इंतजार था ना वो हम भी करते हैं। इस झुलसती जो गर्मी है उसमें बारिश का इंतजार, वैसे अभी अभी मौसम जो बदला है, घटा जो छाई है, अब क्या होगा आगे ये तो हम भी नहीं जानते। हेक्टिक दिन के बाद हमें रहता है रात का इंतजार, और करवटों में जब रात कटी हो तो उस रात के बाद नई सुबह का इंतजार, तो ये जो सिलसिला है वो जारी रहता है हमेशा। वैसे FM गोल्ड पर गानों का सिलसिला भी जारी रहता है, पर फिलहाल ये छोटा सा विराम लेंगे हम और उसके बाद लौटेंगे आपके बहुत ही मनपसंद गाने के साथ।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस प्यारे से गाने के साथ लेती हूँ मैं इजाजत, यानी सुनीता, एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ समय बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.91 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूर

0: मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुपुर जिले के पलडामे में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. A correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The President was speaking after hosting a banquet in honour of her Cyprus counterpart Nikos Christodoulidis and his delegation at Rashtrapati Bhavan yesterday. She said technology and innovation have emerged as key forward-looking areas of the bilateral relationship.
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulidis also highlighted the friendship with India. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak, serving with the United Nations peacekeeping mission in Lebanon, has been honoured with the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for 2025. Major Barak is currently serving with the Indian Battalion as commander of the female engagement team in the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. With this recognition, Major Barak becomes the third Indian peacekeeper to receive the honour. Earlier, Major Suman Gawani was awarded in 2019 for her service with the UN mission in South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stability

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहें?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में।

0: के बाद।
1: वाह,
2: इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
2: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो, तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा, तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
2: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
2: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
2: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
2: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
2: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
2: जी,
0: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
2: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
2: जी।
0: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
2: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे,

0: तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो
1: जी,
0: है उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता है तो नहीं था, फिर भी
1: हाँ
0: अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी,
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो ये सवाल ऐसा है
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी
1: जी।
0: हम रहे पांच बच्चे
1: अच्छा,
0: मेरे पेरेंट्स के,
1: हाँ,
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है।
1: वाह,
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ। जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक या किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में,
1: जी,
0: इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी
1: सभी
0: क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का,
1: जी
0: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
1: जी,
0: खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
0: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की।
1: जी
0: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: बिल्कुल
0: था
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: लोगों को।
1: जी,
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन नहीं, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे
1: साथ?
0: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
1: जी,
0: दोनों में, तो कॉमन

0: जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को, दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो वो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था, मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गई थी, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे, तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया, तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट?
0: हाँ, मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको

0: मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली की और मैं हूं आपके साथ भावना।

आप हमारे दिल का हिस्सा हैं, आप हमारे जिगर में रहते हैं, इसीलिए आकाशवाणी जो अपने 90 साल मना रहा है उसमें आपको भी अपने साथ शामिल करना चाहता है और इसीलिए हम हर बार आपसे प्रश्न पूछते हैं आकाशवाणी से संबंधित, ये जानने के लिए कि आप हमें अपने दिल में कितना बिठाते हैं। आकाशवाणी द्वारा प्रथम अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ये हमारा आज का प्रश्न है। एक बार फिर, आकाशवाणी द्वारा प्रथम अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? fmgold@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। 9868686853 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें जरूर लिखकर बताइए। और हाँ, समय कम है, अपना नंबर भी लिखिए क्योंकि हम आपको कॉल करेंगे जिसका भी सही उत्तर होगा। तो जानना चाहते हैं हम, आप कितना जानते हैं आकाशवाणी को और कितना प्यार करते हैं आकाशवाणी से।

0: जानते हैं हम कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और उत्तर भी अपने भेज रहे हैं, लेकिन अपना नंबर भी साथ में लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। मिलते हैं छोटी सी मशहूरी के बाद।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat.
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आज 23 मई है और आज के दिन मनाया जाता है प्रसूति संबंधी फिटसुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी जब प्रसूति होती है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो मां को फिस्टुला नाम की एक गंभीर चोट से कई बार गुजरना पड़ सकता है और इससे काफी परेशानी आगे तक चलकर महिला को होती है। हमारी मां हमारे लिए कितना सहन करती है ना, यही सोचने समझने का दिन है आज। और स्टुला जो ये प्रॉब्लम होती है लेडीज के अंदर, इसको जड़ से समाप्त किया जा सके, इसका उपचार किया जा सके, इस पर बातें करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने खास हैं, हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, और हम कभी हम उनके प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जिससे हमारे माता पिता का, हमारे वृद्ध जनों का हृदय टूट जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि कुछ वृद्ध जो हैं वो अपने परिवार से अलग हैं किसी भी कारण से, तो अटल व्यो अभ्युदय योजना है, यानी एक ऐसी योजना जो वरिष्ठ नागरिकों को, जरूरतमंदों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करती है, जिसके लिए उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन, सारी बुनियादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना जीवन जी सके। वैसे ऐसा कभी परिवारों में होना ही नहीं चाहिए कि इस प्रकार हमारे वृद्ध जनों को, हमारे अपनों को, हमारे माता पिता को हमसे अलग होना पड़े, क्योंकि हमारे माता पिता हमारा संसार है, हमारे लिए सब कुछ है।

0: और इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे श्रोता जो सही उत्तर लेकर हमसे बात करना चाहते हैं। कौन है उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग भावना जी।
0: गुड मॉर्निंग सर, पहले तो सबको अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं एनआर प्रसाद बोल रहा हूँ, राजाजी नगर बैंगलोर से।
0: जी तो राजाजी नगर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद साहब। सही उत्तर बताइए हमारे प्रश्न का।
1: हाँ, ये उत्तर है 25 जनवरी 1956।
0: बिल्कुल सही आंसर है। जी जी, आकाशवाणी द्वारा 25 जनवरी 1956 को पहली बार अखिल भारतीय सर्वभाषा कवि सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो ये प्रश्न पूछना और उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है हमें। हर रोज सुनता हूँ और एफएम गोल्ड मैं करीबन 8-10 साल से सुन रहा हूँ। और ये मार्केट मंत्र करके एक आता है
0: जी जी जी प्रोग्राम आता है
1: 6:30 बजे
0: शाम को।

0: बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारा सवाल मैं पूछता हूँ, हर रोज पूछता हूँ, खासतौर पर शनिचर और इतवार और मंडे के दिन बहुत प्रश्न पूछता हूँ मैं।
1: जी जी जी,
0: हमें तो... हमें हमें सही सही उत्तर दे देता है, बहुत प्रॉफिट भी हमने लिया है एफएम गोल्ड बात करके।
1: तो आकाशवाणी की तो हमेशा से यही कोशिश रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो है सबको
0: सही काम है ना, सही काम।
1: तो प्रसाद साहब, आपकी पसंद का कोई गीत अगर आप सुनना चाहें तो बताइए।
0: देखिए, एक गाना है मन मंदिर से, 1971 में बनी फिल्म है, जादूगर तेरे नैना, बहुत ही अच्छा गाना है, किशोरदा और लता दीदी का एक गाना है, बहुत अच्छा डुएट है, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए और हमारा श्रोतागण को सुनना चाहते हैं ये गाना।
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये रहा आपकी पसंद का गीत।
0: थैंक यू।

बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया था। एक बार नाम सबके मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी। कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, सुनीता यादव हैं, नवीन भाटिया हैं, राजकुमार रिवार हैं और एनआर प्रसाद जिनसे हमारी बात हुई वो भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। अभी मैं चलती हूं लेकिन कहीं नहीं जा रही। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स ये प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रूपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में

अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी से आज नई दिल्ली में मुलाकात। ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड लेने के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप के खतरे को राष्ट्र स्तर पर उच्चतम बताया। और भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार बताते हुए कहा कि भारत के साथ कई क्षेत्रों में काम करना है। ट्रंप प्रशासन ने अमरीकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन ने अस्थायी वीजा पर रह रहे और ग्रीन कार्ड के इच्छुक आवेदकों को अपने देश से ही आवेदन करने का नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार स्थायी निवास चाहने वाले विदेशी नागरिकों को अब आवेदन करने के लिए स्वदेश लौटना होगा। अमरीकी नागरिकता और आवेदन सेवा के अनुसार अमरीका में आवेदन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। नई नीति के अंतर्गत स्थायी निवास के आवेदकों को अब विदेश में ही काउंसलर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस निर्णय से अमरीका में अस्थायी वीजा पर कानूनी रूप से रह रहे लाखों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इनमें विद्यार्थी, अमरीकी नागरिकों के जीवन साथी और विदेशी कामगार शामिल हैं। अमरीका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गबार्ड ने कहा है कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजे त्यागपत्र में सुश्री गबार्ड ने कहा कि पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर कार्य करने के लिए वे बहुत आभारी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका में केविन वॉश ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने जेरोम पावेल का स्थान लिया है। श्री पावेल 2018 से इस पद पर कार्यरत थे। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व श्री वॉश के नेतृत्व में जनता का विश्वास बहाल करेगा। उन्होंने श्री वॉश को केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्तियों में से एक बताते हुए

0: विश्वास व्यक्त किया कि वे इसके सबसे प्रभावी अध्यक्षों में से एक होंगे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में लगभग 40,000 लोगों को निकासी के आदेश दिए गए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्लास्टिक के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक रसायन के भंडारण टैंक से रिसाव के बाद लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम करार दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इसके संक्रमण के 82 रोग सामने आए हैं और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है और दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। इसका उष्मायन काल 2 से 21 दिन तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है, जो बाद में गंभीर जटिलताओं में बदल सकते हैं। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं लवली निगम।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। एक रिपोर्ट।
2: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
3: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: चीन के शांशी प्रांत में एक कोयला खदान में कार्बन मोनोक्साइड का स्तर सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 मजदूर अब भी खदान के अंदर फंसे हुए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार यह घटना चांगझी शहर के केन्युआन काउंटी में स्थित लियू शेन्यू कोयला खनन में हुई। दुर्घटना के समय खदान में 247 मजदूर थे। बचाव अभियान जारी है और अब तक 201 मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया गया है। स्पेसएक्स ने आज सुबह सबसे बड़े और शक्तिशाली स्टारशिप सुपर हेली रॉकेट सिस्टम का प्रक्षेपण किया। ये चंद्रमा और मंगल ग्रह के मिशनों के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य अंतरिक्षयान विकसित करने के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। इसमें सुपर हेवी बूस्टर और ऊपरी चरण के अंतरिक्षयान दोनों में सुधार किए गए हैं। रॉकेट ने अमरीका के टेक्सस में स्थित स्पेसएक्स के स्टारबेस संयंत्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इस मिशन में सफल हॉट स्टेजिंग पृथक्करण हुआ। इसमें बूस्टर के पूरी तरह से अलग होने से पहले ही ऊपरी चरण के रैप्टर इंजन प्रज्वलित हो गए। सुपर हैवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी की ओर अपनी निर्धारित अवरोहण यात्रा शुरू की, लेकिन पानी तक पहुंचने से पहले ही हवा में विस्फोट हो गया। बूस्टर के नष्ट होने के बावजूद ऊपरी चरण के स्टारशिप

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं, आपकी पसंद के गीत होते हैं और हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं। आप किस चैनल के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं, हर बार बताते हैं हम आपको। ईमेल आईडी है हमारा fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868 68753। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप, मैं हूं आपके साथ भावना, और लीजिए फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, इनका हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमारे पास संदेश आ गया, और भोपालगढ़ छत्तीसगढ़ से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का गाना सुनना चाहते हैं ये।

आकाशवाणी हमेशा हमारी आवाज से अपनी आवाज मिलाता आया है, हम सबके मन को भाता आया है। ये कृष्णा वाटक जी हैं, इनका उत्तम नगर दिल्ली से संदेश आया, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये कैसे कर लेते हैं, मतलब अलग अलग रंगों में अपने नामों को लिखना, हरा, लाल, पीला, नीला, ऐसे लिख कर भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और पढ़ने में भी आनंद आ जाता है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसा ही हमें अपना नाम लेकर भेजा है, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने। बहुत ही खूबसूरत है आपका संदेश जी, कहना पड़ेगा। इसके अलावा प्रकाश गोगिया जी हैं, इनका भी संदेश हमारे पास दिल्ली से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताज मोहम्मद जी हैं, लक्सर हरिद्वार से हैं, गुलाम साबिर राही महराज जहां भी इनके साथ हैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है। ये है मोहसिन हाशमी, इनका संदेश हमारे पास गंज डुंडवारा नई बस्ती से आया है। यासीन हाशमी भी इनके साथ हैं, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, इन सब का संदेश है ये एक साथ मिला के। इसके अलावा हमारे पास शंभू दयाल जी का संदेश आया है और गांव जाखौद से इनका संदेश हमें मिला है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी, ये इन्होंने लिखकर भेजा है, तो शुक्रिया जी हमारी तरफ से भी जी। इसके अलावा संदीप मक्कड़ जी हैं, इनका संदेश हमें मिला है, मन्नत मक्कड़ भी इनके साथ हैं और भारत मक्कड़ भी इनके साथ हैं, कमल साहनी भी इनके साथ हैं, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर पंजाब से इनका हमें संदेश मिला है। बहुत आनंद आता है जब इतने प्यारे प्यारे से आपके संदेश पढ़ते हैं ना, तो मजा आ जाता है। आमिर हुसैन है, बेगम तैयबा शेख है, फौजिया शेख हैं और कौन है, आहिल हुसैन अरहान और परिवार के सभी सदस्य, इनका भी पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हमारे पास संदेश आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जी का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक बार फिर से स्वागत आप सभी का दिल का मेल बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ भावना और हमारे साथ हैं यानी मेल पर जुड़े हुए हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अरोड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा राशिद हुसैन अंसारी साहब हैं हमारे साथ ईमेल के थ्रू जुड़े हैं, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी हाँ, भारत भूषण जी हैं, अंजू श्रीवास्तव हैं, दिव्येंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं, पौरुष हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्टर 67 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज का संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का संदेश हमारे पास आया है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक बार फिर स्वागत आप सभी का दिल का मेलबॉक्स प्रोग्राम में। बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी कह रहे हैं कि हमारा जरूर शामिल कर लीजिए संदेश, चंडीगढ़ से इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हो गया शामिल आपका संदेश। सुनील पाठक जी हैं, कमल पाठक हैं, दीपिका मल्होत्रा हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं, भाई सुच्चा सिंह पाठक हैं और अनारकली बाजार जगराओं से इनका संदेश हमारे पास आया है। हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का संदेश हमारे पास मिला है। हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी

बुलंद शहर से, और जो गाना ये सुनना चाहते थे वो हम ऑलरेडी सुनवा चुके हैं। 9 बजे फरमाइश में हमारे जो खास श्रोता थे जिन्होंने आकाशवाणी के प्रश्न का उत्तर दिया था, उनका जो गाना पसंद का था वो इनका भी है, मन मंदिर फिल्म का जादूगर तेरे नैना, वो हम सुनवा चुके हैं। इसके अलावा जिला खरगोन उत्तर प्रदेश से हमारे पास संदेश आया है अशोक कुमार वर्मा जी का और उनके सभी साथियों का। बहुत ही खूबसूरती से अपना संदेश ये लिखकर भेजते हैं और गाना सुनना चाहते हैं फिल्म हीरो से ये।

यूं ही आपका प्यार बना रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे। चलते चलते एक संदेश पढ़ते जाते हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। साथ ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग बढ़ेगा। अमरीकी राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्री आज ही नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत रवाना होने से पहले श्री रूबियो ने मयामी में मीडिया से बात करते हुए भारत को एक महान सहयोगी और साझेदार देश बताया। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बाराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बाराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बाराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बाराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी, बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्व

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं या कहें कि आपके साथ घूमने जाते हैं। पंचगनी महाराष्ट्र का एक खूबसूरत हिल स्टेशन, आज इसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे हम। रेडियो तस्वीर, आपके साथ रहूंगी मैं भावना।

0: लंबा अपने नियुक्ति पत्र पाकर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाओं से विकसित भारत की यात्रा को मजबूती देंगे। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें।
1: परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आपने हमारे बीच रह करके हमारी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। 22 अक्टूबर सन 2023 को आपके द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेले के इस क्रम में आज हम 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यदि अभी तक हुए 19 रोजगार मेला के कार्यक्रमों का आकलन किया जाए तो समझ में आता है कि रोजगार मेला के इस क्रम के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर नियुक्ति सरकारी नौकरियों में होने वाली नियुक्तियों में संख्या में वृद्धि हुई है, वहां साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता भी आई है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें भी टाइमलाइन अथवा समय सीमा का अनुशासन बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उम्मीदवारों का नियुक्ति प्रणाली में विश्वास भी बढ़ा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों का मेरिट भी श्रेष्ठ रहा है। यह सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध कराया जा रहा है और SSC पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वह अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है। और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु, यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी

0: प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस की हैं। यहीं पले बले, यहीं उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यहीं शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना न की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हरेक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है, लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प। न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी

0: जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल हैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान।

कारण होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर
भारत के युवाओं

इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में
भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता।

करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स,

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर

लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से हैं, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से हैं। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं।

0: पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही है, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 1000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रूपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations.

0: आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: और देखो
1: और बिल्कुल बिल्कुल बोलो
2: क्या हाँ, देखो मंजुला, देखो घर आंगन कार्यक्रम है जहां पर बात होगी परिवार की, सेहत की, करियर की भी, और इतिहास की, गहराइयों की, संस्कृति की, और बहुत कुछ होगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि जिंदगी के छोटे बड़े पहलुओं की हम यहां बात करते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खुद की पहचान बनाने वाली महिलाएं ही दुनिया बदलती हैं। अपने सपनों को पंख दो, आसमान खुद रास्ता दे देगा। जब एक स्त्री अपनी पहचान खुद बनाती है तो वो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, पूरे परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये सुना फिल्म थी नीला आकाश।
1: और अब बात करते हैं कि ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। यह कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आज के समय में डॉक्टर बनना एक करियर विकल्प है, लेकिन जरा सोचिए 18th सेंचुरी में जब लड़कियों की पढ़ाई तक पर सवाल उठते थे तब क्या होता था।
0: बिल्कुल, तब एक लड़की को डॉक्टर बनने का फैसला कितना बड़ा कदम रहा होगा ना मंजुला। आनंदीबाई का जन्म 1865 में हुआ, कम उम्र में शादी हुई जो उस समय आम बात थी। उनकी जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया।
1: और अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और देखो एक भारतीय महिला उस दौर में विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने का निर्णय लेती है, न भाषा आसान न हालात, लेकिन इरादा एकदम साफ था। वो अमेरिका गई, पढ़ाई की और 1886 में मेडिकल डिग्री हासिल की। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई और उन्होंने इतिहास रचा।
1: ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो समाज से आगे चलने की हिम्मत रखती है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा रास्ता बना चुकी थी जिस पर आज लाखों महिलाएं आत्मविश्वास से चल रही हैं।
0: और कभी कभी देखो बदलाव के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़ा इरादा चाहिए होता है। आज जब हम अस्पताल में जाते हैं, महिला डॉक्टर से मिलते हैं या किसी लड़की को बड़े सपने देखते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते की शुरुआत आनंदीबाई जैसी महिलाओं ने ही की थी।
1: और सपना छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, हौसला उसे सच बना दे बस इतना ही काफी होता है। कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम से जीते हैं और वही दुनिया में असली निशान छोड़ जाते हैं।

0: अदना सरगम और कुमार शानू की आवाज में। अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जुर्म।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
3: और दोस्तों, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें समय से परे होती हैं। हम उसी आवाज का जश्न मना रहे हैं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन रही है। वो दौर जब एक रेडियो के आसपास पूरा परिवार जुटता था और हर कार्यक्रम एक साझा अनुभव बन जाता था।
0: और फिर आया डिजिटल युग और लगा कि शायद रेडियो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आकाशवाणी ने खुद को और भी करीब आ गई। आज आकाशवाणी सिर्फ AM तक सीमित नहीं, बल्कि FM की दुनिया में भी इसकी मजबूत पहचान है। 1993 में आकाशवाणी ने एक नई पहल की, निजी कंपनियों को FM पर एयर टाइम देना शुरू किया।
3: दिल्ली और मुंबई से शुरू हुई ये पहल जल्द ही बड़े शहरों तक पहुंची और इसके साथ ही कंटेंट भी बदला। म्यूजिक, चैट शो और शहरी अंदाज के प्रोग्राम जो हैं वो लोकप्रिय हुए। आज यही FM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गाड़ी में, फोन में, हर जगह।
0: और अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और लाइव चैनल लिंक के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ने भी सुनने का तरीका बदल दिया है, जहां समय की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, तेजी से बदलती इस दुनिया में भी आकाशवाणी वही सुकून देती है जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 90 साल का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का है। तो सुनते रहिए, क्योंकि माध्यम बदलता है, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा साथ रहती है।

0: से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और भूपेंद्र की।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की, मंजुला है ना, यानी कि SHG की, जो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा। ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है, जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करता है।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से कम ब्याज पर उसे लोन देता है।
1: और SHG का उद्देश्य लोगों, विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद को भारी कर से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, और सबसे प्रमुख जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
1: बिल्कुल, और इसके तहत समूह को शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी और अपने नजदीकी समूह से जुड़ने के लिए आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखिए मंजुला, जानकारी तो हमारे श्रोता लेंगे ही, लेकिन हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, और जिसके लिए उन्हें हमें मेल करना होता है, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और हमें इंतजार रहेगा हमारे श्रोताओं के संदेशों का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तकदीर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और प्रतिभा, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ घूमने का बहाना नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का मौका होती हैं। और अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग, कुछ खास ढूंढ रहे हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब बहुत हुआ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम ले चलेंगे आपको उन जगहों पर जो सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस की जाती है।
0: बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ले चलते हैं चोपटा, है ना, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। यहां की असली खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं, उसके सन्नाटे में है,
2: शांति में।
0: यहां का तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और वहां तक का जो ट्रैक है, हर कदम पर बदलते नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पर सूर्योदय देखते हैं तो वो पल कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होते हैं।
2: क्या बात है, तुम तो कविता पढ़ दिया तुमने। और शानगढ़, जहां वक्त धीमा हो जाता है, शानगढ़ की पहचान है उसका विशाल घास का मैदान, इतना खुला कि लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। यहां एक शांगचूल महादेव मंदिर है जहां के आसपास का इलाका बेहद पवित्र माना जाता है, जहां आज भी कोई पक्का निर्माण नहीं होता है।
0: और देखो, तवांग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी तवांग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और गहरा ही बनाती है। और यहाँ का जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं, सुनाई भी देती है। रास्ते में सेला पास, बर्फ से ढकी ऊंचाई और सेला झील जो बादलों के बीच तैरती सी लगती है, और फिर बुमला पास जहाँ भारत चीन सीमा है, और तवांग आपको ये नजारे ही नहीं देता बल्कि सुकून भी देता है।
2: बिल्कुल सही। और हाफलोंग बादलों का घर है। हाफलोंग की सबसे खास जगह है हाफलोंग झील, सुबह की धुंध में ढकी हुई जैसे कोई पेंटिंग हो। यहाँ के पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग, जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो बादल इतने करीब होंगे कि आपको छूकर निकल जाएंगे। हाफलोंग शोर से दूर नहीं बल्कि शांति के और करीब आपको ले जाता है।
0: और कनाताल की बात करें तो सादगी में छुपी खूबसूरती, कनाताल का जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका यहाँ पर अनछुआपन। यहाँ एक सुरकंडा देवी मंदिर ट्रैक है, छोटा लेकिन ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू, बस ये सब देखने के लायक। कनाताल इको पार्क, यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच चलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है। और रात में कैंपिंग के दौरान तारों से भरा आसमान जो शहरों से अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता।
2: तो दोस्तों, इस बार सिर्फ जगह मत बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, भीड़ से दूर जाइए उन रास्तों पर जहाँ कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वही रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता और गीता से।
1: और मंजुला, देखो आज जब हम किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाते हैं तो हम महिलाओं की भागीदारी हर जगह पाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, रक्षा से लेकर मनोरंजन, हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता पाई है।
0: बिल्कुल सही कहा। रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, तो टूर गाइड इसको भी अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। टूर गाइड के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक जो परीक्षा होता है उसमें भी महिलाओं को मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल। और देखो साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत करके विदेशी भाषा सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। महिला पर्यटक विशेष रूप से महिला गाइड को ही प्राथमिकता देती है, और कुछ भी काम देखो आसान नहीं होता, अपने साथ चुनौतियां भी लाता है।
0: इस काम में भी जो

0: चुनौतियां हैं, असुरक्षा भाव बना रहता है, साथ ही लंबे टूर पर जाने या कई दिनों तक घर से बाहर रखने के कारण परिवार और बच्चों की देखभाल में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और देखो अगर हमारे जो श्रोता हैं उनमें कोई महिलाएं हैं, अगर वो टूर गाइड बनना चाहती हैं तो कम से कम इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप पर्यटन या इतिहास में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड या डिप्लोमा ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकती
0: हैं। बिल्कुल सही कहा, तो आप ट्रेवल कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं या फिर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे एप्स और वेबसाइट के माध्यम से अपना खुद का टूर भी डिजाइन और बेच सकती हैं। तो आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए और इस डिफरेंट तरीके के करियर को जरूर अपनाएं।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी बुलंदी।
1: बिल्कुल। और प्रतिभा, गर्मियों का मौसम आ चुका है और धूप, पसीना और धूल, ये तीनों मिलकर हमारे बालों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा समर हेयर केयर रूटीन जो आसान भी है और असरदार भी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, साफ सफाई। गर्मियों में सिर की त्वचा जल्दी तैलीय हो जाती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, तेल लगाना ना भूलें, नारियल या बादाम का हल्का सा तेल हफ्ते में 1 से 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए।
0: और अब बात करते हैं असरदार घरेलू हेयर मास्क के। मुल्तानी मिट्टी, दही, एलोवेरा जेल और करी पत्ता के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाइए और 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लीजिए।
1: ये आपके सिर को ठंडक भी देगा, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और बालों को प्राकृतिक

0: से स्वस्थ बनाता है।
1: और एक और जरूरी बात यह कि गर्मियों में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें, इसके बजाय बाल धोने के बाद हल्का सा हेयर सीरम लगाएं जो टॉक्सिन फ्री हो। इससे आपके जो बाल हैं वो मुलायम रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे।
0: और हाँ, शरीर को भीतर से ठंडा और तरोताजा रखना भी उतना ही जरूरी है। भरपूर पानी पिएं और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर निकलते समय बालों को धूप से बचाने के लिए दुपट्टा या टोपी पहने या फिर स्कार्फ लगाएं। तो दोस्तों, इस गर्मी अपने बालों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए,
1: क्योंकि जो हमारे अगर जो बाल हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें असली खूबसूरती भी देंगे। लहराते बालों में छुपा है क्योंकि एक राज, और सादगी में भी झलकता है इनका अंदाज़।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या

0: हम सब उस्ताद हैं। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: अब बात ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी हुई। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनने में आम लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वे पीड़ित को घर में ही डिजिटल रूप से कैद कर लेते हैं और छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो जबकि कानून में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जालसाज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि आपके नाम का कोई कुरियर पकड़ा गया जिसमें गैर कानूनी सामान है, या आपके आधार से धोखाधड़ी करना और ये कहना कि आपका बैंक खाता या आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल सही। तो वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर

0: बने रहने के लिए मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना। ऐसे में घबराए नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। तुरंत कॉल को काट दें और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
1: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आप एक गीत सुन रहे हैं, फिल्म है मेरे सनम।
1: बिल्कुल, और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और

0: विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 1:11:04 हुए हैं और इस वक्त कलाकार बेमिसाल। आज का ये बेहतरीन सफर तय करेंगे गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की बातों और यादों के साथ। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असली नाम रहा असरार हुल हसन खां। इनके लिखे गीतों में शेरो शायरी के जरिए जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त ताकत रही। इनकी कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा बन चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को जीवन के हर रंग रूप से जोड़ दिया। तो यही असरार उल हसन खां बन गए मजरूह सुल्तानपुरी जब ये फिल्मी दुनिया से जुड़े। रुमानियत को भी इन्होंने एक नया जामा पहनाया और इनके लिखे गीतों की बहार आज भी हमारे चारों तरफ फैलेगी। 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से।

0: विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और जाने माने शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जिक्र हो रहा है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मे मजरूह सुल्तानपुरी के पिता एक अच्छे ओहदे पर थे। वो बेटे को भी अच्छी ऊंची तालीम दिलाना चाहते थे। मजरूह ने लखनऊ के तकमील उल वीब कॉलेज से यूनानी पद्धति की मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की। एक क्वालिफाइड हकीम के तौर पर काम भी किया, साथ साथ उनका शौक भी परवान चढ़ता रहा। बचपन से ही शेर व शायरी का उन्हें शौक रहा। आसपास होने वाले मुशायरों में वो शिरकत भी करते रहे। इसी के चलते शायरी की महफिलों में उन्होंने खूब नाम कमाया। वहां वाही लूटी, बस मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ बाद में उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी तरफ लगा दिया, यानी कि शेर व शायरी की तरफ और लिखने की तरफ। उनकी कलम का जादू जितना चलाना वो तो सर चढ़कर बोला ही, और प्यारे प्यारे गीतों की बहार भी इस वक्त हमारे चारों तरफ फैली हुई है। एक और दिल को छूने वाला गीत उनकी कलम से निकला हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं और बात हो रही है जाने माने शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और साथ थे आपकी अंजलि। तो फिर जब हमने देखा कि शायरी में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डुबो दिया और लिखने लगे और महफिलों में शिरकत करने लगे, ये सिलसिला जो था बढ़ता गया इनका। शायरी करने के दौरान ही उनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी से हुई और इसी तरह शेर व शायरी की महफिलों से ही उनकी जान पहचान कुछ फिल्मी दुनिया के दिग्गजों से हुई। जाहिर सी बात है, अब फिल्मी दुनिया में कदम रखना ही था। कैसे हुई इनकी फिल्मी दुनिया में शुरुआत गीतकार के और पर, तो इसके भी जो गीत लिखने की शुरुआत मुंबईया फिल्मों के लिए जो ये जो कहानी है ना, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। बात बस इतनी सी है कि एक बार 1945 की बात है, सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट ने एक मुशायरे का संचालन किया। बस इसी में हिस्सा लेने के लिए वो मुंबई चले आए। यही उनकी शायरी सुनकर मशहूर फिल्म निर्माता AR कारदार उनसे बेहद प्रभावित हुए और उन्हें ऑफर दे डाला कि उनकी फिल्मों के लिए भी मजरूह गीत लिख।

थे, लेकिन साहब उस वक्त तो मजरू साहब ने कारदार साहब को मना कर दिया क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि फिल्मों के लिए लिखना सही रहेगा या नहीं। फिर क्या हुआ? फिर तो हम जानते हैं क्या हुआ कि गीत जो उनकी कलम से रचे गए, लिखे गए और लोगों के दिल में बस बसते ही चले गए, तो एक और गीत उनकी कलम से निकला गारवा फिल्म का, गोरिया कहां तेरा देश रे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जाने माने गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब की। अंजलि है आपके साथ और जो हमने बात की कि भाई कैसे इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ, तो जब इनकी मुलाकात बहुत सारे जैसे फिल्मी दुनिया के दिग्गजों से हुई तो फिर बात तो बनी ही थी और एक तरह से एक और इन्हें मतलब फिल्मी दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो एक और इन्हें जो बोलते थे गाइडेंस मिली या सजेशन मिली इनके दोस्त की तरफ से। मजरू के दोस्त बन चुके जिगर मुरादाबादी के कहने और समझाने पर भी मजरू सुल्तानपुरी ने फिल्मों के लिए शुरू कर दिया। संगीतकार नौशाद ने एक बार उन्हें एक धुन सुनाई और उस पर कुछ लिखने को कहा। उनकी लेखनी से नौशाद साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म शाहजहां के गीत लिखने की पेशकश कर डाली। 1946 में आई फिल्म शाहजहां का ये गीत जब दिल ही टूट गया काफी लोकप्रिय हुआ और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं थमा नहीं, बस चलता ही रहा चलता ही रहा। इसी तरह से भाई बातें हमारी भी होती रहेंगी। कलाकार बेमिसाल का ये सफर चलता रहेगा। 1:33:54 हुए हैं और ये बेहतरीन संगीत मेरा प्यार भी तो है साथी फिल्म से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में नौशाद साहब का संगीत बद किया हुआ और लेखनी का जादू तो यहां पर भी चला है मजरू साहब का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की हम बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी और नौशाद साहब की जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को बेहद कामयाब गीतों का खजाना सौंपा। अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगीवाला, धर्म कांटा, गुड्डू, इन फिल्मों में रचित गीतों की सफलता के बाद उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। इसी तरह से मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी एसडी बर्मन साहब के साथ भी खूब जमी और इनकी फिल्में रही पेंगेस, 9-2-11, सोलमा साल बाद, एक रात की, तीन देवियां, ज्वेल थीफ, मेरे जीवन साथी अभिमान, बहुत सारी और भी फिल्में हैं, लंबी लिस्ट है। तो मजरूह सुल्तानपुरी के जो रचे कलम से रचे हुए गीत है ना, उनके बारे में जितना बयां करें ना उतना कम रहेगा, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हमें फिर मौका मिलेगा ना, फिर हम उनके बारे में ढेर सारी बातें और उनके लिखे ढेर सारे गीत आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह से तो बात मजरूह सुल्तानपुरी के जो सिग्निफिकेंट काम था ना, उसे पुरस्कृत भी किया गया, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। 1993 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इसी तरह 1964 की अगर हम बात करें उससे पहले, तो दोस्ती फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो क्यों ना ये गीत ही सुन लिया जाए, दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और कलम का जादू चला है मजरूह सुल्तानपुरी साहब का, और बहुत ही प्यारा सा गीत है। म्यूजिक इस गाने का तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए भी मजरूह सुल्तानपुरी ने खूब लिखा। सबसे पहले उनकी फिल्म पेंगेस्ट के गीत लिखे, उसके बाद बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है और भी कई सुपरहिट मूवीज रही जिनके लिए उनके लिखने का सिलसिला चलता रहा। आज कलाकार बेमिसाल में हमने इन्हें याद किया है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब को, जिनकी कलम को सलाम करते हुए यही कहेंगे कि वक्त हमें ज्यादा इजाजत तो नहीं दे रहा उनके बारे में और भी बातें आपसे साझा की जाए, लेकिन उनके रचे गीतों को फिल्म प्रेमी ऐसे ही हमेशा सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्रीरनामे सौंपे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रूशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रीरनामे तकसीम किए। पूरे मुल्क में 47 मकामात पर इस रोजगार मेले का इनेकाद किया गया था। मुलाजमत हासिल करने वाले नौजवान जिनको पूरे मुल्क से चुना गया है वो वजारत रेलवेज, वजारत दाखिला, वजारत सेहत और आला तालीम के महकमे समेत दीगर कई वजारतों और महकमों में शामिल होंगे। रोजगार मेले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होने के लिए बेकरार है। जनाब मोदी ने कहा कि मौके और मुलाजमत दस्तियाब कराने और मुल्क के नौजवानों को पूरी दुनिया से रोशनास कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकतदार बन रहा है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCS कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकर्रीरनामे तकसीम किए गए। RCS कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। इंडिया इज प्रिपेयरिंग आर यंग पीपल टू प्रोवाइड लीडरशिप इन दैट एरिया।
0: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकर्रीरनामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकर्रीरनामे सौंपे गए। पेट्रोलियम, कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका अहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैंड को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में ICF रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉ मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12,00,000 रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकर्रुरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकर्रुरी के इम्तहान TRE-4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायजा लेकर मुलाजमत के लिए ताज़ा दरख्वास्त देगा। बिहार हुकूमत ने आज 21 जून को होने वाले NEET-UG के फिर से इम्तहान में शिरकत करने वाले सभी तलबा के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में नीट के सभी उम्मीदवारों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की इजाजत दी जाएगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन की हुई नकल हासिल करने की आखिरी तारीख 24 मई तक के लिए इजाफा कर दिया है। इससे कबल इसकी आखिरी तारीख आज यानी 23 मई तक थी। CBSE ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक आने और गैर कानूनी तौर पर वेबसाइट में मुदाखलत करने की वजह से यह फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि तलबा जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल होने के बाद 2 दिन तक फिर से जायजे के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। यह भारत का उनका पहला दौरा होगा जो अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुलकाहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गौर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आलमी सेहत तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला मुल्क भर में फैल जाने के अंदेशे का इजहार किया है। इस तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस का कहना है कि इस वक्त इस वायरस के कौमी सतह पर फैल जाने का बहुत ज्यादा, इलाकाई सतह पर ज्यादा और आलमी सतह पर फैलने का कम अंदेशा है। आज शाम लखनऊ में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्रुरी नामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रोशनाज कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में इबोला की किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening.

0: and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue Quad framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों

0: की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान

0: दौरान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका। 100.1 एफएम गोल्ड पर गोल्ड स्टूडियो से वक्त हुआ है 2:31 और आप ट्यून इन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात में। गोल्ड स्टूडियो से आपका स्वागत करती हूं मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा, और मेरे साथ हैं
2: निरंकार करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार।
1: जी
2: पूजा जी, हम जानते हैं हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, लेकिन जब वह वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं तो ज्यादा अच्छी गुणवत्ता और अच्छा उत्पादन पाने की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी
2: और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर हम खेती खुले खेत में करते हैं उसमें कई

0: सारी समस्याएं आती हैं। और जब हम संरक्षित क्षेत्र में यानी पोली हाउस के अंदर या पक्के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फसल लेते हैं तो कई उसमें फायदे भी होते हैं, खर्चा भी आता है वैसे तो, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। बिना मौसम के कई चीजें हम तैयार कर लेते हैं, तो इस तरीके की जो तकनीक है उससे हम बहुत सारी अच्छी फसलें ले सकते हैं, बेमौसम फसलें ले सकते हैं। इसी विषय पर आज हम अपने कार्यक्रम में जानकारी लेंगे और जो संरक्षित तकनीक से किस प्रकार से मशरूम को उगाएं। और मशरूम आप जानते हैं, मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है,
1: बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्वादिष्ट,
0: गांव देहात तक इस्तेमाल की जा रही है,
1: बहुत स्वादिष्ट भी होता है और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी होता है
0: और बहुत सारे इसके व्यंजन बनते हैं।
1: हाँ।
0: बहुत पसंद है लोगों को, तो क्यों ना हमारे किसान भाई ऐसी फसल को उगाएंगे तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे और ज्यादातर लोगों को इसे उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन इसे हम संरक्षित तकनीक से कैसे उगाएं, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत ही खूबसूरत भूमिका बांध दी है आज के कार्यक्रम के हमारे विषय के बारे में। अपने श्रोताओं को एक बार हम बता दें कि आज किसान की बात में आप जिस विषय पर बातचीत कर सकेंगे और सुन सकेंगे वो विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो सहायक निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: नमस्कार, सभी को नमस्कार।
0: और पूजा जी, हमारे जो श्रोता है ना, जब आप सवाल करेंगे, हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, तो उनके जहन में भी कुछ सवाल आएंगे, तो वो किस तरह से हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी फोन नंबर बता देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, मैं बताने ही वाली थी निरंकार जी, आपने बहुत जल्दबाजी में मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित कर ही दिया। चलिए तो बताई देते हैं अपने श्रोताओं को कि वो हमारे साथ किस तरह जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। करना आपको सिर्फ ये है कि आप हमें एक फोन कीजिए और फोन नंबर आपको नोट करना है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और उसके बाद अपने फोन कॉल्स को हम तक पहुंचाएं इन नंबर्स के जरिए, यानी 2342-1081 और 2342-1083,
0: यानी 2342-1081 और 2342-1083।
1: बिल्कुल, तो जब तक निरंकार जी फोन कॉल्स हम तक पहुंचते हैं हमारे श्रोताओं के, हमारे सुनने वालों के, हमारे साथियों के, क्यों ना डॉक्टर साहब से हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में रहा है और मुझ जैसे लोग जो बहुत ज्यादा कृषि और उससे बहुत करीब से जुड़े हुए नहीं है, वो ये जानना चाहेंगे कि सरल भाषा में डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि संरक्षित तकनीक का अर्थ क्या है और इसके लिए मुख्य रूप से किन किन बातों या किन किन चीजों का होना जरूरी है।
2: नमस्कार सभी को, जैसा कि आज का जो विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन कैसे करें, शब्द अपने आप में ही काफ़ी कुछ कह जाता है। जैसे मशरूम की खेती हमारे किसान भाई लोग मौसम के हिसाब से करते हैं, मौसम के हिसाब से अलग अलग वैरायटी का पसंद चूज करके वो मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन जब उसी मशरूम को सीजन ना हो और जब दूसरे सीजन में हम उस मशरूम को नियंत्रित वातावरण में हम मशरूम की खेती करते हैं, नियंत्रित मतलब जिसमें हम तापक्रम, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ लाइट की जब हम कंट्रोल करके मशरूम की खेती करते हैं, तो वही एक तरह से यह संरक्षित मशरूम उत्पादन की खेती में कहलाता है। संरक्षित मशरूम की खेती या संरक्षित मशरूम की खेती करने में काफ़ी बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल में होता है और नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि वह सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है।
1: डॉक्टर साहब आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फोन पर, उनका कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं तरफ से नमस्कार
1: जी, बताइए अपना सवाल पूछिए।
3: सोनू बोल रहा हूँ, सागरोद गांव, सागरोद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिला बागपत से।
1: जी सोनू जी, जी अपना सवाल पूछिए।
3: मेरा सवाल यह है, जो मशरूम है वो इन दिनों में जो है इसकी खेती कैसे करें इसकी।
1: हाँ डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि
0: मशरूम की अच्छी खेती कैसे करें, ये पूछ रहे हैं वो।
1: हाँ
0: इस मौसम में मशरूम की अच्छी खेती।
2: समझ गया, इनकी बात समझ गया। अगर अभी चूंकि आप देख रहे होंगे बाहर का टेम्परेचर हमारे देश में लगभग 45 डिग्री के आसपास है, उससे ज्यादा है, इस कंडीशन में अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे वैरायटी के ऊपर सेलेक्ट करिए, चूंकि यह टेम्परेचर पे जो है मिल्की मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। अगर इसको आप जो है कंट्रोल कंडीशन में करना चाहते हैं तो थोड़ी सी व्यवस्था करके आप अपने कमरे में कूलर लगा के बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर मशरूम में जाना चाह रहे हैं तो बटर मशरूम के लिए फिर आपको काफ़ी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें आपको पफ फैनल लगाना पड़ेगा और एएचयू यूनिट लगा के, एएचयू मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसमें आपको उसकी जो टेम्परेचर की डिमांड है मांग है वह 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है, उसको आपको जो है आर्टिफिशियल टेम्परेचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी तब आप जाके उसकी खेती कर पाएंगे। बाकी अगर आप सीजनल में करना चाहते हैं तो मिल्की मशरूम आपको हम सजेस्ट करेंगे जो आपको इजीली आप कर सकते हैं।
1: जी, आपने मिल्की मशरूम और बटन मशरूम का जिक्र किया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या मशरूम की अलग अलग किस्में हैं?
2: जी, दोनों की वैरायटी अलग अलग है और दोनों कमर्शियल वैरायटी है। बटन मशरूम सीजनल अगर करते हैं तो उसकी खेती अक्टूबर से लेकर फरवरी मास तक इजीली कर लेते हैं किसान भाई, लेकिन जो कंट्रोल कंडीशन में करते हैं वो 12 महीने के लिए, उनको फिर अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है और उसमें एसी लगा के, चिलर एसी लगते हैं उसमें लगा के कंट्रोल टेम्परेचर को नियंत्रित करके फिर उसमें मशरूम खेती करते हैं।
0: अच्छा, इन दोनों प्रजातियों की विशेषताएं भी बता पाएंगे?
2: जी, बटन मशरूम की खासियत है उसको आज की डेट में मार्केट में काफी डिमांड है और काफी प्रचलित वैरायटी हो चुकी है बटन मशरूम, आप अगर आप देखेंगे लोकल मार्केट में काफी इजीली इसको मिल जाता है। मिल्की मशरूम अभी उतनी पॉपुलर नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं है, और यह हाई टेम्परेचर पर ग्रो करता है, इसमें फाइबर की मात्रा कुछ ज्यादा होता है। अगर इसको आप शेप की बात करेंगे, इसकी स्ट्राइप मतलब इसका जो तना होता है काफी लंबा होता है और इसकी जो छतरी होती है, कैप जो होती है, काफी छोटी होती है, मार्केट में काफी हाई रेट पे ऑलरेडी ये उपलब्ध है वैरायटी जो है।
1: इनके अलावा भी और किस्में भी होती है?
2: बहुत सारी वैरायटियां हैं मशरूम की, 2500 वैरायटियां हैं, जिससे खाने वाली वैरायटी बहुत कम है, बाकी सब रेशम वैरायटी हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो नॉन एडिबल है, मतलब पॉइजनस है, जो जंगलों में अपने आप ग्रो करती है उसको नहीं खाना चाहिए।
0: यानी ये जरूरी है कि हम देखें कि कौन सी खाने वाली है और कौन सी जहरीली है।
2: जी, जो कल्टिवेटेड जो वैरायटियां हैं वही को खाना चाहिए।
1: तो आमतौर पर तो हम देखते हैं कि बटन मशरूम जैसे आपने कहा वही ज्यादा मिलता है।
2: जी,
1: जो हम
2: बटन मशरूम पूरे विश्व में नंबर वन है प्रोडक्शन में और हमारे भारत में भी नंबर वन पे है। दूसरे नंबर पे ऑयस्टर मशरूम है और तीसरे नंबर पे मिल्की मशरूम जिसकी भी चर्चा हो रही है।
0: कई बार कूड़े के ढेर पे जमी होती है तो गाँव में शायद कई लोग इसीलिए सांप की छतरी भी बोलते हैं इनको,
2: वह एक भ्रांतियां हैं, सांप की छतरी
0: शायद इसीलिए कि पॉइजनस हो सकती है।
2: जी जी जी, पॉइजनस नहीं है उसका नाम ही, चूंकि जो हमारे आदिवासी लोग हैं या जो रहते हैं या गांव में रहते हैं तो जो मशरूम अपने आप ग्रो कर जाती है उसके उसको लोग कलेक्ट करके लाते हैं और खाते हैं, तो उसके जो एडिबल है उसके साथ नॉन एडिबल वैरायटी भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से खाने से उनको ऐसे कुछ हार्मफुल उसके अंदर तत्व होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाकर रिएक्शन करता है और इतना पॉइजनस होता है कि आदमी डेड हो जाता है।
0: तो यानी
2: उससे बचने के लिए जैसी सी घटना न घटे तो लोगों ने उसका नाम ऐसा सांप की छतरी रख दिया जिससे ऐसी घटना।
0: तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि इस तरह की
2: जबकि नॉन कल्टीवेटेड वैरायटी है
0: हाँ, तो उसको खाना नहीं चाहिए?
2: नहीं खाना चाहिए, जो आप पहचान नहीं रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो गुच्छी जो है वो भी एक प्रकार का मशरूम है?
2: गुच्छी भी एक वैरायटी है, मेडिसिनल में वैरायटी यूज होती है और यह अभी पहाड़ों पे या
1: काफी महंगा होता है,
2: काफी महंगी वैरायटी है गुच्छी मशरूम जो है।
0: और व्यंजन क्या क्या बनते हैं इनके?
2: मशरूम के बहुत सारे व्यंजन है, आप जो भी सब्जी आप खा रहे हैं, जो भी सब्जी का आप नाम लेंगे सबका मशरूम की व्यंजन बन सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की अगर आप बात करें जिसमें हम इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन करके इसका बढ़ा देते हैं, तो जैसे मशरूम के आप बिस्किट बना सकते हैं, मशरूम नमकीन बन सकता है, मशरूम पापड़ बन सकता है, मशरूम चिप्स बन सकता है, मशरूम टॉफी बन सकती है, मशरूम चॉकलेट है, मशरूम जैम है, जेली है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मशरूम की आज के डेट मार्केट में न उपलब्ध हो।
1: वेरी गुड, मतलब ये सब चीजें मुझे लग रहा था कि शायद नमकीन व्यंजनों का तो हम सब जानते
2: जी
1: हैं, हमने खाया भी
2: अगर
1: है,
2: देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं
1: नहीं पता था कि मशरूम से वो भी बन सकते हैं।
2: जी, बच्चे जो है मशरूम को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो अगर उनको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में उनको हम दें तो उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको जैसा आप शुरू में चर्चा हो गई कि मशरूम ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं
1: जी।
2: तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिवार्य भोजन है।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को निरंकार जी एक बार फिर से बता दें कि आज का विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन, और अगर इससे जुड़े कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप इन फोन नंबर्स पर हमें स्टूडियो में सीधे डायल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और उसके बाद 2342-1081 और 2342-1083 इन फोन नंबर्स पर आप डायल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो सहायक निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, वेराइटीज की बात हमने कर ली, संरक्षित तकनीक का अर्थ भी हम समझ

0: गए। लेकिन अगर हमें संरक्षित तकनीक से मशरूम का उत्पादन करना है तो उसके लिए किन किन बातों की, किन किन चीजों की हमें जरूरत होगी मुख्य रूप से, अगर ये सवाल जानना चाहें तो क्या इसका जवाब रहेगा?
1: संरक्षित मशरूम की खेती में हम खास करके बटन मशरूम की बात करना चाहेंगे, क्योंकि बटन मशरूम की अभी आज की डेट में ज्यादा डिमांड है, काफी मांग है। तो जो भी किसान भाई हैं थोड़ा सा इसका प्रशिक्षण लेके इस पे मशरूम का काम करें, तो इसमें जो है पफ पैनल लगा के एक आइडियल कमरा बनाते हैं, जिसमें हम 16x40 का अगर हम बात करें तो एक कमरा बन जाता है और उसमें 1500 बैग के आसपास लग जाते हैं, जिसके लिए 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर वो आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं एसी लगा के। दूसरा मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिफायर लगा के 80 से 90% मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। तीसरा CO2 चूंकि मशरूम के ग्रोइंग के ऊपर बहुत काफी असर पड़ता है, तो अलग अलग स्टेज पे हम कमरे के अंदर CO2 की मात्रा देते हैं। जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कराते हैं उस समय अलग CO2 की मात्रा की जरूरत पड़ती है। जब हम पिनिंग स्टेज या मशरूम के फ्लोटिंग स्टेज पे ले जाते हैं तो अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। वह भी हम आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसकी व्यवस्था देते हैं उसके अंदर। और एक निश्चित समय, मतलब अगर आप देखा जाए तो बटन मशरूम जो है जिस दिन आप कंपोस्ट के अंदर बीज डाल देते हैं उसके एक महीने बाद मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अगले 40 से 45 दिन तक मशरूम आप आती रहती है और मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसकी हम तुड़ाई करते हैं और पैकिंग करते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं।
0: इसके लिए किसी तरह का कोई प्रशिक्षण भी कहीं दिया जाता है क्या?
1: जी, मशरूम का सभी किसान भाई जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो हम उनको यही सलाह देना चाहेंगे कि मशरूम की खेती करने से पहले इसका अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि काफी तकनीकी इसके अंदर होती है, उसको समझ के ही आगे इसको आप बढ़ सकते हैं। तो इसका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, हमारे जो हर जिला में पूरे भारतवर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा DMR सोलन हिमाचल प्रदेश में जो 12 महीने मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, और हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी संस्थान विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी नई दिल्ली में भी, यहां भी 12 महीने मशरूम उत्पादन पर संरक्षित खेती और सीजनल खेती दोनों पे इसका आयोजन चलता रहता है। तो हम सलाह देंगे
2: कि आप केवीके में भी है, होगा
1: हर कृषि विज्ञान केंद्र में,
2: उजवा में, अगर दिल्ली की बात करें,
1: दिल्ली की बात करें तो कृषि विज्ञान उजवा में भी मशरूम की ट्रेनिंग होती है, वहां भी होती है। तो जो भी किसान भाई जहां से बिलोंग करते हैं उनके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क कर लें तो वहां पर उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा। जो
2: जी अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि संरक्षित खेती के अंदर नुकसान की कम उम्मीद रहती है, तो कितना खर्चा आ जाता है इसमें और किस प्रकार से ये लाभकारी है?
1: अगर संरक्षित खेती में जा रहे हैं तो एक कमरा जैसे कि हमने बताया आइडियल 16x40 का अगर कमरा पर पैनल पे काम करते हैं बनाते हैं तो लगभग मिनिमम 8 लाख से लेके 15 लाख 16 लाख तक का इसका बजट होता है एक कमरे का। और इसमें जो
0: कॉलर जुड़ना चाहते हैं,
1: जी
0: एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं।
3: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: जी मैं हेतु उपाध्याय बोल रहा हूं
0: जी।
3: मैं बांसवाड़ा से हूँ,
0: तो
3: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी जी बताइए।
3: तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मशरूम उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है?
0: डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि मशरूम उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है।
1: आपको बताना चाहें, मशरूम की खेती में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका जो रॉ मटेरियल, जो उसका मीडिया होता है, वो कंपोस्ट होता है या सबस्ट्रेट होता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो गेहूं का भूसा है, ज्वार का भूसा, बाजरा, मक्का, गन्ना, सरसों की तूड़ी, आप किसी भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मशरूम मिट्टी में इसकी खेती नहीं होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन करा के फिर हम उसके कंपोस्ट के ऊपर मशरूम की खेती करते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल था कि मिट्टी, तो मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्टेज आता है जब आप कंपोस्ट में बिजाई मिला बिजाई कर देते हैं और उसका 10 से 15 दिन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाता है, उस समय केसिंग सॉइल की जरूरत पड़ती है, जिसको केसिंग मिट्टी बोलते हैं। लेकिन वह मिट्टी नहीं है, वह एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें गोबर की खाद और कोकोपीट और चावल के छिलके की राख मिला के बना जाता है। तो एक टर्म दिया गया है केसिंग मिट्टी है वो,
2: यानी मिट्टी में नहीं बल्कि कंपोस्ट में उगाई जाती है।
1: जी जी
2: जी। तो और वो तैयार मिलती है, कई लोगों ने उसको तैयार करने का काम भी शुरू कर रखा है।
1: जी, जो हमारे संरक्षित खेती कर रहे हैं जो किसान भाई, उनके पास पास्टराइज चैम्बर लगे होते हैं और इसके जो कंपोस्टिंग होती है वो पास्टराइज चैम्बर में करते हैं, तो वहां से वो ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र जहां पे पास्टराइज चैम्बर उपलब्ध है वहां से भी मिल जाता है। हर जगह नहीं उपलब्ध है, कहीं कहीं पे है पास्टराइज चैम्बर, वहां से ले सकते हैं। बाकी आप वो देख लें, आसपास में जो भी ऐसी प्लांट जहां पे संरक्षित खेती हो

0: है, तो वहां से केसिंग मिट्टी भी मिल जाएगी रेडीमेड और कंपोस्ट भी मिल
1: और
0: जाएगा।
1: इसका स्पान भी इसी तरह से लेना पड़ेगा।
0: स्पान मशरूम स्पान लेबोरेटरी जो कि वैज्ञानिक तरीके से बना जाता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी दे रही है और प्राइवेट एजेंसी भी दे रही है,
1: यानी बीज जो है उसका।
0: हाँ, जिसको हम बीज बोलते हैं, तो वहां से उपलब्ध करा ले सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई विशेष समय नहीं रहता ऐसा वर्ष का हम बोलें कि जब आप बोलें कि मशरूम की खेती कर सकते हैं?
0: नहीं, अगर जब संरक्षित शब्द यूज हो गया, इसका मतलब आप कंट्रोल कंडीशन में जा रहे हो और आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष सीजन या समय की
2: उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं।
1: अच्छा, खर्च की बात कर रहे थे हम जो कमरा तैयार करेंगे, लेकिन इतना खर्च देख के कई किसान भाई समझेंगे बहुत खर्च आता है, तो सरकार से कुछ सब्सिडी हाँ। सरकार से सब्सिडी भी होगी?
0: जी, इसके गवर्नमेंट जो है इसमें अनुदान दे रही है, अनुदान क्या सब्सिडी दे रही है, अलग अलग जैसे MIDH है वहां से ले सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वहां से ले सकते हैं, 40-50% तक गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, और वो भी बैंक से लिंक है, वो वहां से संपर्क करके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, वहां से देख लें क्या क्या उनके टर्म्स कंडीशन है, उसको फिलअप करके वहां फॉर्म सबमिट करें तो उसको वहां से अब ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इस तरह से वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो स्पैन है या कंपोस्ट है वो भी उनको मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर के लिए भी उनको खर्चा मिल जाएगा, तो काम शुरू कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप अब हम ये जानना चाहेंगे कि शायद एक फोन है,
2: एक और कॉलर निरंकार जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका कॉल हम पहले ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछें।
3: मैं रमेश अरोड़ा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी रमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना।
3: और मेरा ये प्रश्न है कि ये जो दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, कौन से एटमॉस्फेयर में मतलब कि इसको खेती की जा सकती है सही?
2: अच्छा डॉक्टर साहब, इनका सवाल वही है जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कोई ऐसा विशेष समय रहता है क्या साल का जब हम इसकी खेती कर सके, और उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया।
0: जी बता सकते हैं कि दोबारा बता देता हूँ, अगर बटर मशरूम की खेती करने जा रहे हैं और संरक्षित नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी प्लान लगा के नहीं करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक कर सकते हैं। जैसे ही आपका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है और उस समय बटर मशरूम खेती नहीं कर पाते हैं, तो ऑयस्टर मशरूम जिसके लिए 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की जरूरत पड़ती है, मतलब है कि मई जून जुलाई 3 महीना छोड़ के बाकी आप 9 महीना मशरूम खेती कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है, इस कंडीशन में 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप मिल्की मशरूम खेती कर सकते हैं और बंद कमरे में खेती कर सकते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था करके आप बहुत इजिली इसकी खेती कर सकते हो।
2: मतलब कुल मिला के अगर आप बंद कमरे में ऐसा माहौल बना दें जिसमें कि नमी ज्यादा हो और तापमान को आप नियंत्रित रखें, थोड़ा कम रखें, तो आप साल भर ही हम कह सकते हैं कि तीनों जिन वेराइटीज का आपने नाम लिया, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, इन तीनों की खेती आप कर सकते हैं,
0: बहुत आराम से कर सकते हैं,
2: और लाभ ही लाभ है। और खर्च की बात निरंकार जी आप कर ही रहे थे।
1: हाँ, और एक अभी बात ये आती है, कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारे किसान भाई ने तैयार करवा लिया, कमरा लगा भी दी है, तो क्या अंदर भी किसी प्रकार की बीमारी आने का खतरा रहता है?
0: अगर बीमारी दो प्रकार से आती है, कुछ गलतियां हमसे होती है उसकी तरफ बीमारी आ जाती है, कुछ ऐसे एनवायरमेंट फैक्टर बनते हैं उसकी वजह से आ जाती है, तो अगर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, जानकारी होगी और साफ सफाई अगर अपने कमरे में रखेंगे तो बीमारी होने के बहुत कम चांसेस है, कंट्रोल कंडीशन में तो बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आ भी गए तो उसके सिम्टम्स को पहचान के तुरंत उसके इलाज करेंगे तो 24-48 आवर्स के अंदर बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। मेन कारण है उसको पहचानना, बीमारी को अगर आप पहचान गए तो उसका तुरंत इलाज हो जाता है।
1: तो कई बार खोलना पड़ता है, बार बार जाते हैं, उससे कंटामिनेट होने का डर
0: नहीं है। खोलना चाहिए, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो आदमी काम कर रहा है उसके अंदर ग्रोइंग रूम के अंदर वही एंट्री करें, बाहर अननेसेसरी किसी ऐसे पर्सन को ना जाने दें, क्योंकि कोई भी इंसान जाएगा तो बाहर वो अपना हाथ ट्रीटमेंट करके जाएगा नहीं, तो जहां टच करेगा वहां कोई ना कोई फंगस या बैक्टीरिया वो अपने हाथ के थ्रू या किसी के थ्रू छोड़ के आ जाएगा, जो 2-3 दिन बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, इसमें भी आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्तर उसमें बनाना होता है, तो ये तो हमारे लिए भी खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे तो क्या नुकसान नहीं करेगी?
0: नहीं, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके आपके द्वारा मशरूम का नुकसान हो सकता है, मशरूम के द्वारा हमारा नुकसान होने बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हमने वहाँ कंपोस्ट डाला हुआ है, तो कंपोस्ट अपने मेटे को नेचर है, टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है तो CO2 अपने आप या अमोनिया गैस बनाता है कंपोस्ट, उसको हमें रिलीज करना होता है, अगर वो हम बाहर नहीं निकालेंगे तो वह मशरूम के उसकी जो कैप है उसकी साइज है वह उसके ऊपर असर पड़ता है या प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है या उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, उसकी कैप छोटी हो जाएगी या

0: स्ट्राइप लंबी हो जाएगी, तो CO2 का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मशरूम की खेती या मशरूम जो काफी सेंसिटिव क्रॉप है, तो अगर जितना उसकी जरूरत है उतने उसको देना, उससे अगर ज्यादा देंगे तो उसके लिए हानिकारक।
1: तो वो देते कैसे हैं, वो कंपोस्ट से अपने आप आती है या कुछ?
0: कंपोस्ट से अमोनिया गैस और CO2 अपने आप रिलीज होता है, निकलता है। हम खिड़की दरवाजे खोल के या ऐसा बम्पर हम लगाते हैं या ब्लोअर के थ्रू फ्रेश एयर देते हैं और या उसको निकालते हैं, उसमें दोनों तरफ होता है, इनके लिए भी होता है, आउट के लिए सिस्टम ऐसा लगाते हैं, दोनों चीज की व्यवस्था करके रखते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसे हम उसकी व्यवस्था करते हैं। बाकी CO2 की इंडिकेटर मशीन आती है, उसको जब सेंसर लगा देते हैं तो बाहर हमको कमरे के बाहर दिखाई देगा कि हमारे कमरे में कितना CO2 है। अगर कंपोस्ट आपने डाला है, बीज डाला है, तो उसमें 10,000 PPM के आसपास CO2 होता है, तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो हम उसको मेंटेन करेंगे, ब्लोअर के थ्रू फ्रेश एयर देंगे, थोड़ा बहुत मेंटेन करेंगे, तो उसी भी उसकी विजिटेटिव ग्रोथ आसानी से हो पाएगी। जैसे 15 दिन ग्रोथ हो जाती है और जब केसिंग सॉयल में फंगस रन कर जाता है और पिनिंग के टाइम आता है, तो हम जो है 600 से लेकर 1,000 PPM तक मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही CO2 आप देते हो, टेम्परेचर देते हो, पिनिंग स्टार्ट हो जाती है।
1: अच्छा, मशरूम के उत्पादन में महिलाओं की और स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका हो सकती है?
0: सब लोग जो है SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले या महिलाएं के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि यह इंडोर खेती है, कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो महिलाएं अगर करना चाहती हैं, थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके आसानी से कर सकती हैं, इसमें ऐसी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क या मेहनत का काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा सिस्टम को समझ के बहुत आसानी से कर सकते हैं।
1: रोजगार की क्या संभावनाएं हैं युवाओं के लिए?
0: बहुत अच्छा अवसर है रोजगार का। एक मशरूम यूनिट पे अगर आप 4 कमरे का बनाते हैं, तो इसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार बहुत आसानी से मिल जाता है। रोजगार कई प्रकार से मिलता है, मशरूम का प्रोडक्शन होगा, वह मशरूम मार्केट में जाएगी, मार्केट से कितने लोगों को रोजगार चलना है, तो ये बहुत काफी लंबी लिस्ट होती है। तो बहुत सारा अवसर है इसके अंदर रोजगार के, अगर लोग आए तो एक यूनिट से कम से कम 10 से 12 लोगों को रोजगार आसानी
2: मतलब
0: से मिल जाता
2: है। जो पूरी चेन बनेगी ग्रोथ से लेकर मार्केट तक पहुंचने, कंज्यूमर तक पहुंचने तक, उसके बीच में जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे उन सबको रोजगार मिलेगा। हाँ,
1: और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट ले जाएंगे उससे पहले बात आती है हार्वेस्टिंग की। हाँ, उसको तोड़ते वक्त भी कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर होती है, एकदम उखाड़ेंगे तो शायद काफी
2: इसमें। निरंकार जी, मैं भी एक सवाल आपके साथ जोड़ना चाहूंगी कि हार्वेस्टिंग के साथ साथ स्टोरेज किस तरह से करें हम इसका, और इसकी शेल्फ लाइफ भी हम जानते हैं कि ज्यादा नहीं होती है आमतौर पर, तो कैसे इसको रखें हम?
0: जैसे कि बटन मशरूम की अगर बात करें, मार्केट में एक साइज की डिमांड होती है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर डाया की अगर जो मशरूम है मार्केट में, उसी की डिमांड है, उसी साइज के मशरूम की हमको हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि अगर, जैसे कि आपने बोला, डायरेक्ट मशरूम अगर खींचेंगे तो कम्पोस्ट के साथ बाहर आ जाएगा, तो उससे जो छोटे मशरूम या छोटे छोटे उसके बगल में जो मशरूम्स होंगे वो अभी आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। जो ये सेलेक्ट करिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो डाया का हो गया है, 3 अंगुली से ऊपर से कैप को पकड़, हल्का से नीचे पंच करिए और लेफ्ट साइड में हल्का सा जब उसको घुमा देंगे तो मशरूम जड़ से बाहर आ जाती है। बाहर ला के उस मशरूम को उसको हम क्लीनिंग करते हैं या ग्रेडिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे। जो 3 सेंटीमीटर से ऊपर का है उसको अलग कर लेंगे, और 3 सेंटीमीटर और 2.5 के बीच में जो उसको अलग कर लेंगे, या ऐसी जो मशरूम है जिसका कैप खुल गया है उसको अलग कर लेंगे। अगर जिसका कैप खुल गया, अगर उसको मार्केट ले जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू 0 है, ना के बराबर।
1: गंदा नहीं होने देंगे और कटी फटी को अलग कर देंगे, कटी हुई को नहीं रखेंगे।
0: जी, चूंकि मशरूम में 90% मॉइस्चर होता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग के बाद उसका स्टोरेज की जो समस्या है, 90% मॉइस्चर होता है, तो जब उसको पैकिंग करें, पैकिंग करते समय हर पैकेट के अंदर 2 से 3 छेद कर दें। अगर नहीं छेद करेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी और उसका कलर जो है खराब हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू और कम हो जाएगी।
1: तो क्या उससे नमी उड़ेगी?
2: काला पड़ने लगता है ना,
0: काला पड़ जाएगा उसका,
1: छेद जो बताया,
0: छेद होगा तो उससे जो नमी बाहर निकलती रहेगी, तो वो जल्दी खराब नहीं होता,
2: स्टोरेज में आसानी होगी।
1: अच्छा, मार्केटिंग में किन बातों का और ध्यान रखने की?
0: मार्केट में जितनी डिमांड है उसी हिसाब से मशरूम की खेती करें। अगर आपने मार्केट के ऊपर भले सर्वे नहीं किया है, तो आप पता चला मशरूम आपने उगा लिया और मार्केट में ले गए, मशरूम आपके मार्केट में बिकी नहीं, तो सबसे पहला आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए, जिस वैरायटी की डिमांड है आप उसी वैरायटी की खेती करें, दूसरी वैरायटी ऐसी ना करें कि आप उगा लिए और मार्केट में उसकी खपत नहीं है, तो सबसे पहले सावधानी है। दूसरा, क्वालिटी का बहुत मायने रखता है, अगर आप जिस क्वालिटी की मार्केट में डिमांड है उसी क्वालिटी की, उसी साइज की मशरूम की तोड़ाई करें, वही आप मार्केट में ले जाएं। कोशिश करिए मशरूम तोड़ने के बाद जल्दी से जल्दी आप मार्केट में ले जाएं, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर या कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा मशरूम, तो या डिस्कलर हो जाएगा, तो जिसके बाद मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, तो जितनी आपकी लागत लगी है उतना भी निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सब चीजों के थोड़ा सा छोटा छोटा ध्यान देंगे तो इसमें नुकसान होने के बहुत कम चांसेस।
2: डॉक्टर साहब, स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, जैसे मार्केट में पहुंचने से पहले अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो कैसे करें उसको, और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
0: मशरूम, बटन मशरूम चूंकि फ्रेश मशरूम में ही मार्केट में डिमांड है, इसको स्टोर करेंगे तो इसके लिए फिर आपको दूसरा सिस्टम अपनाना पड़ेगा, कैनिंग यूनिट में जाना पड़ेगा, डिब्बा बंद मशरूम जो मार्केट में मिलता है फिर उस पर जाना पड़ेगा, फिर उसको अगर डिब्बा बंद मशरूम बना लिए तो फिर आप 9 महीने 10 महीने तक फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो, फिर उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए बटन मशरूम को आपको फ्रेश में ही डिमांड है, ड्राई में डिमांड नहीं है, तो स्टोरेज के लिए हम सलाह नहीं देंगे, इसको स्टोरेज करिए, इसको हार्वेस्ट करिए, हार्वेस्ट करके पैकिंग करिए, पैकिंग करके आप तुरंत इसको मार्केट पहुंचाइए। अगर आपको स्टोरेज करना है तो फिर आप दूसरे सिस्टम में जाइए, कैनिंग यूनिट में जाइए, फिर उसके बाद ही आप इसको स्टोर करने के बारे में सोचिए, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आप अब हम ये चाहेंगे संक्षेप में हमारे किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस फसल के उत्पादन के लिए?
0: किसान भाइयों को हम यही सलाह देंगे, क्योंकि बिना जानकारी के आप अगर मशरूम खेती करेंगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं चलती हैं। जब आप खेती करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आती हैं, जब आप प्रशिक्षण कर लेते हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप मशरूम की खेती करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो प्रशिक्षण करना अनिवार्य है।
2: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। अभी आप सुन रहे थे संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन विषय पर बातचीत और जानकारी, और आपके फोन कॉल्स का जवाब भी डॉक्टर साहब दे रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, सहायक निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। और अब चूंकि कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो रहा है तो गोल्ड स्टूडियो से मैं पूजा और मेरे साथी निरंकार आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और इन्हीं शब्दों के साथ हम गोल्ड स्टूडियो से आपसे विदा लेते हैं, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।
1: आप सभी को नमस्कार, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण, रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये

0: संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आयोग

0: सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi, Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai, iska jyada se jyada laabh uthayein. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: Mr. Modi highlighted, the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा और कार्यक्रम आप जानते हैं मन भावन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मन को भाता है वही ख्यालों में भी आता है और जुबां पर भी आता है, और ऐसा ही कोई एक गीत जो आपके मन को बड़ा भाता है और आपके ख्यालों में आपका कोई खास है तो हम तक पहुंचाइए। कैसे भला? fmgoldair@gmail.com एक बार फिर से सुन लीजिए वो पता जहां आपको अपनी फरमाइश पहुंचानी है, fmgoldair@gmail.com। इस पते पर अपनी फरमाइश आप किसी अपने को सुना सकते हैं, नहीं जी जा रहा है सिर्फ खुद के लिए कोई गीत सुनने का आपका मन कर रहा है तो भी आप सुना सकते हैं अपने को खुद को गीत। बस आपको करना यह है कि आपको जी हम तक अपनी मेल पहुंचानी है, और अगर कोई खास दिन है आज तो भी हमें बताइए, साझा कीजिए, हम भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अब हम शुरू करते हैं सिलसिला जी किसका भला, आपके संदेशों का, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले से ही संदेशा भेजना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता मालूम है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार हैं, और इन्होंने गीत की फरमाइश की है। जी अब थोड़ा सा आप ठहरिए, उसके बाद मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती हूं आपकी पसंद का गीत। ऊपरकोट बुलंदशहर से हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन हैं, शाहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं और पूरा का पूरा बासी परिवार है जो हमें यहाँ पर सुन रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कार्यक्रम का समय होते ही आप सब जुड़ जाते हैं हमसे। ऐसे ही एक और संदेश आया है, सनावद मध्य प्रदेश से आया है, मास्टर अशोक वर्मा है इनके साथ, बहुत सारे और इनके परिवारजन हैं, अर्चना है इनके साथ, अनुज हैं, आयुषी हैं, रमेश चंद्र वर्मा हैं, शेख मूसा भाईजान हैं और भाई राजकुमार जी हैं। और अगला संदेशा जो है वो अब लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं। ये किसका है? अनिल मोहन जी और उषा मोहन हैं, इन्होंने हमें पहाड़गंज मुल्तानी डांडा

से हमें ये संदेशा भेजा। इसी तरह आप भी अपने संदेशे हम तक जरूर पहुंचाइए। अच्छा लगता है कि आप अब गर्मी की बात करें कि अच्छा लगता है आप गर्मी में भी हमारा साथ दे रहे हैं। अब गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ख्याल रखना है अपना। और गर्मी के बारे में मैं जिक्र करती रहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अभी आजकल बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके बाद गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं और मनीष पवार हैं। मुझे लग रहा है मैंने नाम बहुत सारे ले लिए हैं और अब बारी है एक गीत की। और देखिए, गीत से पहले भी आपके मैसेजेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप में से किसी एक की फरमाइश हम सब की फरमाइश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
4: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
3: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
4: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल

वेलकम बैक जी, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और कार्यक्रम मन भावन है जिसमें आप अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं। आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी मैं सीमा वर्मा, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पता तो मैंने आपको खैर बताना है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ सर पे टोपी हो या आपके पास छतरी हो तो बेहतर होगा। और अगर बहुत कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर चाहे आप ना भी निकलें घर से तो वो बेहतर होगा। बहरहाल, अगर आपको अपना संदेशा हम तक पहुंचाना है, आप एफएम गोल्ड सुनते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। अब जी, एक बार फिर आपके संदेशों पर मेरी नज़र है। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार हैं, शेख शाहगीर हैं, शेख वजीर हैं और सोहिल शेख हैं, तो ये इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं किसी में भी आप शामिल कर लें, लेकिन काफ़ी लोग अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़ हैं, मन्नत हैं इनके साथ, भरत हैं और कमल साहनी जी हैं, और इन्होंने कहाँ से ये हमारे पास भेजा है जी, जालंधर पंजाब से आपने हमें ये अपना जो मैसेज है ये भेजा है। और अगला संदेशा अगर मैं लेती हूँ तो नवापारा से मुकेश गुप्ता हैं, श्रद्धा गुप्ता हैं, आदिति, दीपक, श्रीमती अंकु, राघव गुप्ता, और पिपरिया से हैं कमलकांत जी हैं, दीपा हैं और रिमझिम हैं इनके साथ। किशन वंजानी जी, आप अपना एक जो मैसेज आपने एक बार किया ना उसको बार बार आप फॉरवर्ड करते हैं तो वो बहुत सारे नीचे आपके फॉरवर्डेड मैसेज हमें नज़र आते हैं तो हम नाम ही ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हमने आपका नाम पढ़ लिया है। किशन वंजानी है, आपके साथ नीलम है, स्वाति हैं, किशु हैं, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपने हमें ये लिखा है जी अपना पत्र, डिजिटल पत्र, और आपने गीत की फरमाइश की है। मेरी कोशिश है, मैं ज़रूर सुनवाऊंगी। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु, ये आपने होली चौक उत्तम नगर से हमें संदेशा भेजा। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ऊपर से नीचे जब हम नाम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सुविधा हो जाती है, नाम आप एक एक के नीचे एक लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हमारे पास गाँव लोहगढ़ से हमारे पास ये संदेशा आया है। किसका है? स्वर्ण सिंह गिल जी हैं, दलजीत हैं इनके साथ, राजदीप हैं, गुरनूर हैं और गुरलाल सिंह जी हैं, और एक और नाम है जो मैं अब ले रही हूँ, अविराज सिंह जी हैं। तो अब नाम हो गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब भी तो मैंने शुरू किया? चलिए, राजकुमार जी, प्रमोद कुमार जी और पुष्पिंदर कुमार जी, आपने हमें कहाँ से ये लिखा है, कहाँ से आपने समझ नहीं आ रहा, पर लिखा है कि कोई भी आप गीत सुनवा दें तो हम कोई भी गीत आपको सुनवा देते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, आपने हमें जमशेदपुर से ये संदेशा भेजा है, और अब लग रहा है, मुझे ही फील हो रहा है कि ज़्यादा नाम हो गए हैं तो गीतों की खूबसूरत और दिलकश दखलंदाजी होती रहे तो फिर मज़ा आता है।

लता जी के गाए इस गीत के बाद मेरी नजर आपके संदेशों पर है। एक बार फिर जान लें fmgoldaardelhi@gmail.com और 3:45 और 45 सेकंड हो गए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई समय अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और खाम गांव से ये हमारे पास अनंता वाड़े हैं, रामेश्वर हैं इनके साथ, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। नबी हसन अब्बासी साहब हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हसन अब्बासी हैं, रसीद वारसी हैं, अनम अब्बासी हैं और यशफ अब्बासी हैं। और आपने भी एक गीत की फरमाइश की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, आपने भी अपना संदेशा हमें भेजा है। इसके साथ साथ शबनम का एक और संदेशा आया हमारे पास यहाँ पे। और एक ये संदेशा है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारा SMS अब कहाँ गायब कर देती हैं। तो फैज़ अहमद साहब, अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल कर ही लिया है कि गायब कहाँ कर देती हैं, तो फिर मैं भी एक अलग अंदाज में कह दूं कि गिली गिली गिली गिली छू आपका दिखे। संदेशा मुझ तक पहुंच गया, मैं देख लिया है। फैज़ अहमद और साबिर जी, आपने हमें हुबली कर्नाटक से हमें ये संदेशा भेजा है। और अब बारी है एक गीत सुनने की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा। दोपहरी है आज शनिवार की और वक्त अब ज़्यादा आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक नाम जो हैं वो लेने भी ज़रूरी हैं, तो कुछ नाम हम पढ़ देते हैं, उनकी फरमाइशें भी आप तक पहुंचा देते हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खान साहब हैं, हसीना बानो हैं, एलिजिया नायाब हैं और लड्डू जी हैं। वहीं मोताला महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो विजय सुरलकर हैं, रत्नमाला हैं और कुमकुम है। असम की बात अगर हम करें तो एच आर पंड्या जी हैं, हिरेन हैं, नरेन हैं, वीरेन हैं और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद यूनस खत्री जी और मोहम्मद सादिक खत्री, आपने क्या लिखा है, इंतज़ार कीजिए कीजिए इंतज़ार, अभी तो कार्यक्रम है। अब ऐसे आप नहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, फिलहाल तो कार्यक्रम है और मैंने आपका जो ख़त है ये ले लिया, डिजिटल ख़त आपका, और आपको मैंने नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह जी, आपने दोबारा दोबारा मैसेज कर दिया। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मैसेज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वहीं चंडीगढ़ से हमारे पास सतीश अनेजा और बिमला अनेजा हैं, उनका भी हमारे पास ये संदेश आया है और अब आप सबकी फरमाइश में से किसी एक खास की फरमाइश लेते हैं। में फिल्म आई धनवान, और जिस किसी की भी ये फरमाइश है, मुझे भी ये गीत सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों में सुना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जिसका अब जो समय है वो बिल्कुल संपन्न होता है, समाप्त होता है। चलते चलते एक संदेशा जो कहता है, आपके प्रोग्राम में मेल शामिल होना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल प्रतीत होता है, ऐसे तो ना कहें भारत भूषण जी, ऐसे तो ना कहें। अंजू श्रीवास्तव जी और दिव्येंदु भूषण हैं, इनके साथ संस्कृति हैं और पौरुष हैं। हमारी तो कोशिश रहती है पूरी, लेकिन हर बार कोई ना कोई तो छूट जाता है। तो आपके हम अपने हैं, एफएम गोल्ड आपका अपना है, तो यूं आप नाराज ना हो। आपसे मन भावन प्रोग्राम रोज मुखातिब होता है, रोज मिलने आता है, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जरूर आपका जो खत है वो शामिल किया जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, अब कुछ ही देर में हम मिलकर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय

0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He noted that the nation has placed its trust in its karmyogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karmyogi prarambh jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai iska zyada se zyada labh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation. In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh today said that the Rozgar Mela has resulted in increased appointments in a transparent and time-bound manner. Speaking at the Rozgar Mela in New Delhi, Dr. Singh noted that the initiative has strictly adhered to timelines and thereby enhancing confidence among the youth and ensuring a more merit-based selection process. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary today announced that 1,00,000 teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, he directed officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities.

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आप मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ होंगे और हम होंगे 80 और 90 के खूबसूरत रेट्रो गीतों के साथ। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत 2 बूंद पानी फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो 6:10 पर सदाबहार गीत आपके साथ रहेंगे, होंगी आपके साथ नईम अख्तर। और अगर हम उन कार्यक्रमों की बात करें जहां हम फिल्मी गीतों को सुन सकते हैं तो शाम 7:25 पर सांझ ढले कार्यक्रम ना सुनना भूलिएगा, नईम आपके साथ रहेंगी। और 8:10 से 8:30 तक मधुरिमा कार्यक्रम भी आप जरूर सुनिएगा, जिसमें हम गीत आपकी नजर करते हैं लेकिन उनके शास्त्रीय अंग की भी हम बात इसमें करते हैं। रात के कार्यक्रमों की बात करें तो 10:30 हर सिंगार कार्यक्रम आप जरूर सुन सकते हैं, साथ आपके रहेंगी माधुरी। और रात 11:10 से आप सुन सकते हैं

माधुरी के साथ गीत मेरे मनमीत। तो ये तो एक हमने झलकी आपको बताई कि आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साथियों आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और अब वक्त हो चला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार का, जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था। चलते चलते बस यही कहेंगे कि गर्मी ने अच्छे खासे अपने पैर पसार लिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, घर से बाहर जब आप निकलें तो पानी की बोतल और छतरी या टोपी या चुनरी कुछ भी लेकर जरूर निकलें, ताकि लू से आप बचे रहें। और अब आइए वक्त हो चला है एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार का, सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: the Shastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs has invited online applications for 404 vacancies of Constable General Duty under Sports Quota for the year 2026. The posts are in pay level 3 as per the 7 CPC. Candidates belonging to 18 to 23 years of age, possessing matriculation qualification and the prescribed sports achievements are eligible to apply. The application fee is 100 rupees, while SC/ST ex-servicemen and female candidates are exempted from the payment. Applications must be submitted within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. Detailed sports disciplines and eligibility conditions are available on the recruitment portal. Kindly refer to the website at www.recruitment.ssb.gov.in, or you could also go on to www.ssb.gov.in. The National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, a public sector undertaking under the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, has invited applications for one post of a manager project in E6 grade on direct recruitment basis. The post carries a pay scale of 90,000 to 2,40,000 rupees. Eligible candidates may apply within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For detailed qualifications, eligibility criteria and application procedures, kindly refer to the website, that is at www.nstfdc.tribal.gov.in. The National Institute of Labour Economics Research and Development has invited applications for one post of a consultant, finance and accounts on purely contractual basis. The position offers consolidated remuneration of 80,000 rupees per month for candidates up to 45 years of age, with 8 to 15 years of post-qualification experience. The initial contract period is for 1 year, extendable annually up to maximum of 5 years based on performance and institutional requirements. Interested candidates may apply within 30 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website, that is at www.nilerd.ac.in. I repeat, www.nilerd.ac.in.
1: Jaipur Special Economic Zone under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has extended the last date for applications for the post of Preventive Officer Group B on deputation basis in Level 7 as per the 7 CPC. The vacancy falls under the jurisdiction of Development Commissioner NSEZ, Noida. Eligible candidates may apply through proper channel within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website, that is at www.jaipursays.gov.in. Indian Institute of Management, Ranchi, has invited online applications for contractual appointments to the post of a Corporate Relation Manager, Assistant Manager, Corporate Relations Officer, Senior Associate, Corporate Relations Officer again, and Clinical Psychologist. Candidates with qualifications in MBA, psychology or related fields along with relevant professional experience may apply. The last date for submission of online applications is 25th May 2026. Detailed eligibility criteria, age limits, salary structure and the application links are available on the Institute's website. Do refer to www.iimranchi.ac.in.
2: www.iimranchi.ac.in. I repeat, it is www.iimranchi.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
0: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल BOP डिवीजन MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रूपये से 70,000 रूपये मासिक। जहां तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026।
2: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहाँ आप भेज सकते हैं 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुँच जाने चाहिए।
0: सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026।
2: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम, इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन, पदों की संख्या 2 होगी। YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण, पदों की संख्या यहाँ पर भी 2 होगी। YP डिजिटल मार्केटिंग e-commerce इत्यादि, 1 पद यहाँ रिक्त है। YP कंपनी सचिव, 1 स्थान यहाँ रिक्त है। YP सामग्री प्रबंधन, 1 स्थान रिक्त है। YP मार्केट रिसर्च डेटा

0: व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण एक स्थान रिक्त है, YP सिविल इंजीनियर एक स्थान रिक्त, YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक स्थान रिक्त है, YP MSME बिजनेस आउटरीच दो स्थान रिक्त है, YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक दो स्थान रिक्त है, YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ एक स्थान रिक्त है। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में दो पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हज़्रत दस्तूला है आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें एंड ऑफकोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। All of that in the next roughly half an hour, but first let's start with the headlines, Karishma.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।
1: बिहार गवर्नमेंट टू रिक्रूट 1 लाख टीचर्स इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की।
1: यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली टुडे।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडी बुग्गियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया।
1: एंड इन आईपीएल, लखनऊ सुपर जॉयंट्स टू टेक ऑन पंजाब किंग्स इन लखनऊ दिस इवनिंग। And Karishma, as always, we open our show with a very special segment, Dateline India. And of course, since a very important day today because so many people got the appointment letters. So the topic today we have, the first topic rather, is Rozgar Mela. Aur agar waqt hoga to hum log dusra topic bhi bahut interesting hai, usse introduce karenge. But first, talking about Rozgar Mela.
0: और लाखों भारतीय घरों में एक सपना बसता है, एक ऐसा सपना जिसकी शुरुआत अक्सर एक छोटी सी स्टडी टेबल पे एक मध्यम सी रोशनी वाले लैम्प के नीचे होती है और बगल वाले कमरे में माता पिता चुपचाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक युवा लड़का जो अपने पिता की दुकान में हाथ बटाते हुए रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर एक बेटी जो घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती है।
1: Well, that's true, and so we have seen so many anxious parents waiting outside exam centers, you know, ke chahe dhoop ho, loo ho, aandhi ho, jo bhi ho, wo kis ummeed se apne bachon ke liye wait karte hain, is ummeed mein that, you know, one day we'll get that appointment letter or email that says that congratulations, you have been selected. Well, what changes in that moment? Is it only a job or an entire family's future? Today, across India, thousands of such dreams turned into reality.
0: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया कि सरकारी नौकरियां केवल रोजगार के अवसर ही नहीं हैं, वे एक जिम्मेदारी हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को और मजबूत करने का एक अवसर है।
1: That's right, Karishma. And in his address, Prime Minister Modi said that the newly recruited youth are actually the karma yogis of our country. And now it is their duty to honor the trust that the country has placed in them through their dedication, honesty and everyday service. And isn't that what truly builds a nation, Karishma?
0: Bilkul sahi, aur Pradhanmantri ne ek aisi baat ka bhi zikr kiya jo vaishvik star pe Bharat ki chhavi ko badal rahi hai. Aaj puri duniya Bharat ki vikas yatra mein uske saath kadam se kadam milakar chalne ko utsuk hai. Duniya bhar ke desh Bharat ke saath saajhedari kar rahe hain jisse bhartiya yuvaon ke liye avsaron, rozgar aur vaishvik anubhav के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: And Karishma, there was a time when many believed that opportunities existed only outside India. But today the world itself is looking towards India as a trusted supply chain partner, an innovation hub and a rising economic force.
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को एक कुशल लोक सेवक बनने में क्या चीज मदद करती है, ये समझना भी जरूरी है। इसका जवाब सिर्फ नियुक्ति पत्रों में नहीं है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में छिपा हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए गए लोगों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और नागरिकों की ज्यादा असरदार तरीके से सेवा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
1: That's right, Karishma. Today, the scale of this mission is truly remarkable. Under the 19th Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters were distributed across 47 locations in the country. These newly selected candidates will join various departments and ministries. Behind every appointment letter lies a deeply personal story. Maybe somewhere in Rajasthan, a father proudly framed his son's first government appointment letter.
0: बिल्कुल। और इसी के साथ श्रोताओं, ये भी समझिए कि किस तरीके से हो सकता है कि केरलम में अपनी पोती के चुने जाने की खबर सुनकर किसी दादी ने पड़ोसियों को मिठाई बांटी हो, या फिर हो सकता है कि पंजाब में किसी युवा रंगरूट ने चुपचाप अपने संघर्ष के वर्षों को निहारा हो और अंत में धीरे से कहा हो कि ये सब सार्थक रहा।
1: That's right. और सुन के ही कितनी खुशी हो रही है, isn't it? Well, Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Jitendra Singh, said that the Rozgar Mela has helped ensure transparent and time-bound recruitment. He highlighted that strict timelines and merit-based selection processes have increased confidence among the youth, and confidence matters. Because when young people trust the system, they dream bigger. They prepare harder. And they believe that effort can truly change destiny.
0: डॉक्टर सिंह ने कर्मचारी चयन आयोग में किए गए बड़े सुधारों के बारे में भी बात की। परीक्षाओं के चक्र को काफी हद तक कम कर दिया गया है। परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए तेज प्रणालियां शुरू की गई हैं। ये बदलाव सुनने में भले ही प्रशासनिक सुधार लगे, लेकिन किसी ऐसे छात्र के लिए जो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, या किसी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जो अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज महसूस करता है, ये बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।
1: जी हाँ करिश्मा, और क्यों ना अब सुना जाए, सुनी जाए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। लेट्स हियर सम ऑफ द बेनिफिशरीज हु आर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस।
3: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
4: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work but a service to the nation.
5: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
1: Very inspiring indeed, and perhaps that's the beauty of these stories, that so many different states coming, people coming from different languages, different backgrounds, but one shared feeling of pride to serve the nation. Across the country, Rozgar Melas reflected this spirit, and in West Bengal, appointment letters were distributed in Kolkata, Kharagpur and Siliguri.
0: और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। और केरलम में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रोजगार मेला को युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलने का एक मिशन बताया। और सच भी तो यही है, क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग नहीं है?
1: बिल्कुल है। एंड यस, बिकॉज एवरी अपॉइंटमेंट लेटर हैंडेड ओवर टुडे वाज नॉट मेयरली अ डॉक्यूमेंट, इट वाज अ प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट, अ प्रॉमिस ऑफ अपॉर्चुनिटी and a promise that India's future is being shaped by the hands of its own youth. And now, Karishma, हम लोग ने एक दूसरे टॉपिक का भी जिक्र किया था, तो क्यों ना जल्दी से उसको इसका भी जिक्र कर ही लिया जाए. Today is International Turtle Day. And isn't it amazing, Karishma, how our turtles seem to carry a sense of calm wherever they go. Slow, patient and silent. They travel through water and land as though they are untouched by the rush of the modern world around.
0: बिल्कुल. और श्रोताओं, हर साल 23 मई को दुनिया विश्व कछुआ दिवस मनाती है. यह दिन उन असाधारण जीवों का उत्सव मनाने का है और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं.
1: जी हाँ करिश्मा, वो लाखों वर्षों से मौजूद भी हैं और इनफैक्ट उनका खुद का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड समवेयर आई हैड रेड दैट अ मेजर रीजन ऑफ टर्टल्स हैविंग यू नो लिविंग वेरी लॉन्ग लाइव्स इज बिकॉज Their breaths are really slow. तो जो हम लोग आजकल एक्सरसाइज में लोग कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, यू नो इनहेल एंड एक्सहेल डीपली. सो दैट इज वन मेजर रीजन के आप अगर पढ़ेंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हाउ मेनी सेकेंड्स, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेथ ऑफ अ टर्टल. सो दैट इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर देयर यू कैन से इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन. एंड वेल, इंटरनेशनल टर्टल डे वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000, नॉट मेयरली एज अ सेलिब्रेशन बट एज अ रिमाइंडर दैट सम ऑफ नेचर most beautiful creations survive quietly but disappear quietly too if we fail to notice them.
0: बिल्कुल. और सायरा, जो आप जिक्र कर रही थी वही बात हम आगे बढ़ाएंगे कि कछुए हमें एक बहुत ही गहरा और सार्थक सबक भी सिखाते हैं, वह है जुझारूपन. वे हमें सिखाते हैं कि धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है और शांत होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है.
1: अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, बड़े शहरों में खासतौर से बड़े शहरों में आजकल की दुनिया ही इतनी जल्दबाजी की हो गई है कि लोगों को यही लगता है कि अगर कोई शांत है तो वो स्लो है. और वी हैव ग्लोरिफाइड यू कैन से ओवर वर्किंग विच इज वेरी बैड. इट्स अ बैड प्रेसिडेंट बिकॉज यू नो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ स्लो लाइफ इज वेल बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अ लाइफ यू कैन से फुल ऑफ क्वालिटी टाइम. एंड वी कैन प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम टर्टल्स. वेल, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ टेस्टुडेन्स. नॉट exactly reptiles, we can say they are amphibians, and they can be found in freshwater rivers, ponds, wetlands and even deep oceans. Some spend most of their lives swimming through vast seas while others prefer life on land. That brings us to a question that many people often ask, are turtles and tortoises the same?
0: खैर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी कछुए टर्टल होते हैं लेकिन सभी टर्टल कछुए नहीं होते. कुछ कछुए पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं जबकि कई टर्टल कुछ हद तक या ज्यादातर पानी में रहते हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि टर्टल ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिनमें एक्टोथर्म भी कहा जाता है. इंसानों की तरह अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करने के बजाय वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म और ठंडी जगहों के बीच आते जाते रहते हैं और धीमे धीमे अपने मेटाबॉलिज्म की

0: जैसे कुछ टर्टल बिना खाए या पानी पिए भी, हैरानी की बात है कि काफी लंबे समय तक वो जिंदा भी रहते हैं।
1: That's right. And well, sea turtles especially are among the greatest travelers of the natural world. Species like the olive ridley, the green turtle, hawksbill, leatherback, and loggerhead, they cross enormous oceans during their lifetime. Well, that's really astonishing, isn't it?
0: बिल्कुल, और भारत के पास इस मामले में गर्व करने की हर वजह है। हमारा देश कछुओं की अद्भुत विविधता का घर है। असल में भारत में ताजे पानी के कछुओं के लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इनके लिए महत्वपूर्ण आवास बन गए हैं।
1: That's right. And in fact, even the beaches of Odisha, we have read that the olive ridley turtle वो वहां पे नेस्टिंग करते हैं। And it is home to 5 species of sea turtles, including the olive ridley, green turtle, the loggerhead. But sadly, these beautiful creatures are also facing growing dangers, especially we see, in fact, जितनी भी मरीन लाइफ है, हम सब लोग परेशान हैं। जो ह्यूमन वेस्ट, जो खासतौर से प्लास्टिक वेस्ट हम लोग पोर कर रहे हैं इन आर वाटर बॉडीज, आई थिंक दैट इज रियली पोजिंग अ डेंजर टू टर्टल्स इटसेल्फ। एंड दे आर फ्लोटिंग इन रिवर्स एंड ओशंस, दे आर श्रिंकिंग हैबिटेट्स, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड थ्रेटन देयर सर्वाइवल एवरी सिंगल डे एज वेल।
0: बिल्कुल, और इसलिए श्रोताओं, हम सभी को समझना जरूरी है कि समुद्र में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का थैला हमें शायद बेजान और नुकसान रहित लगे, लेकिन एक कछुए के लिए यह खाने जैसा दिख सकता है और इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही किसी जीव की जान ले सकती है। गैर कानूनी तस्करी भी एक और गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहां अक्सर कछुओं का शिकार उनके मांस, पालतू जानवर बनाने या फिर पारंपरिक दवाओं के लिए किया जाता है।
1: And that raises an important question for all of us. Can a species that survived dinosaurs truly disappear because of human carelessness? Well, maybe yes, maybe no, but we have to be very, very protective about them. And thankfully, conservation efforts across India are giving hope. Uttar Pradesh has emerged as a leader in turtle conservation with dedicated centers in Kukrail, in Lucknow, Sarnath, in Varanasi, चंबल इन अटावा एंड इवन अ 30 किलोमीटर टर्टल सैंक्चुरी इन प्रयागराज। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को पता होगा इस चीज के बारे में।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही श्रोताओं, वन विभाग कछुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है, विशेष रूप से पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला नदी के किनारे पर एक नया कछुआ संरक्षण और अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है। ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण का अर्थ केवल वन्य जीवों की रक्षा करना नहीं बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखना और हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित रखना भी है।
1: So perhaps this World Turtle Day, the next time we stand by a river bank or gaze at the ocean or spot a turtle, maybe just on a television screen, we should remember that beneath that gentle and unhurried movement lives a story millions and millions of years old.
0: बिल्कुल, और शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कछुओं को अपने अस्तित्व के लिए हमारी जरूरत है या नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत सचमुच प्रकृति के उन अजीबों की रक्षा करे बिना ही फल फूल सकती है जो इस ग्रह को सबसे पहले इतना सुंदर बनाते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
1: वेल करिश्मा, तो वो वक्त आ गया है जब हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलते हैं, तो अपना सफर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सिक्किम। Well, Sikkim is set to get its second international trade gateway after the Nathula Pass in West Sikkim. Let's hear more from our correspondent.
2: Plans underway to develop a multimodal corridor and integrated checkpost at Chewa Wangjiang in West Sikkim along the India-Nepal border. The project gained momentum after Chief Minister of Sikkim, Mr. Prem Singh Tamangole, visited Chewa Wangjiang in 2024 and announced plans to develop a trade and connectivity corridor with Nepal. Recently, the Standing Committee of the State Board for Wildlife under the Department of Forest held a meeting chaired by Minister of Forest, Government of Sikkim, Pinso Namgyal Lepcha, regarding this project. According to Chief Conservator of Forest, Mr. Uday Gurung, the committee has given in-principle approval for the proposed multimodal corridor and integrated checkpost. The project aims to boost cross-border trade टूरिज्म

0: and regional economic integration between India and Nepal. The proposed facility will include cargo handling services, warehousing, banking, healthcare, parking areas, and other essential services under one roof. Popular religious destination Patibhara Devi Temple in Nepal currently takes around 12 hours to reach via Darjeeling in West Bengal. However, travel time could reduce to nearly 5 hours once the new corridor becomes operational. Government of Sikkim has already constructed an 18-kilometer road connecting Uttare to Cheohangjiang, paving the way for future trade and movement between the two neighboring countries. With Manush Pratim Sharma, this is Bhavinak Chatterjee from Akashvani News Gang Talk for Parikrama.
1: और सिक्किम के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एक ओर चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा में भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
2: चमोली जिले की ऊंची हिमालय की चोटी के बीच स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वाह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र जो बोले सो निहाल, सस्त अकाल के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बनकर मत्था टेका और गुरु घर में अरदास की। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से शुरू होता है। यहां से श्रद्धालु घांगरिया से होते हुए कठिन पैदल यात्रा कर गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और श्रद्धालु की सुविधा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य, आवास और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। उधर चारधाम यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में सबसे अधिक लगभग 7,91,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6.5 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कहीं गुरुवाणी की मधुर स्वर गूंज रही है तो कहीं मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के बीच उत्तराखंड एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत तस्वीर बनकर उभर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
3: And from up north in Dehradun, we now go down south to Thiruvananthapuram. HLL Life Care Limited, it's a Government of India enterprise under the Ministry of Health and Family Welfare, recently launched a new range of compostable sanitary napkins in Thiruvananthapuram. The product was launched by the Union Health Secretary, marking a major step towards promoting menstrual hygiene and environmental sustainability. Let's hear more from our correspondent.
4: The newly introduced sanitary napkins are made using compostable materials aimed at reducing plastic waste and encouraging eco-friendly disposable practices. The initiative comes at a time when concerns are growing over the environmental impact of conventional sanitary products in India. HLL officials said the new range combines comfort, hygiene, affordability and sustainability, making it accessible to women in both urban and rural communities. The company added that innovation-driven healthcare solutions remain central to its mission, particularly in the areas of women's health and public well-being. The rollout is part of this public sector organization's broader efforts to strengthen menstrual health awareness and expand access to quality hygiene products through healthcare institutions, public distribution systems and outreach programs. Public health experts say sustainable menstrual product can help reduce environmental burden while promoting safer hygiene practices among women and adolescents. HLL Life Care Limited is known for manufacturing healthcare products including contraceptives, pharmaceuticals and medical devices. The organization also contributing significantly to affordable and accessible healthcare in India. Smithy M. Palluruthi, Akash Vani News, Thiruvananthapuram.
1: और श्रोताओं, चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला

0: पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: इट्स नाउ टाइम फॉर आजादी का सफर।
2: आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था।
3: मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाईकॉम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था।
2: प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे।
3: पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में दो बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया।
2: उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया।
3: त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया।
2: वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे।
3: मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं।
2: उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनम पिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था।
3: हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए।
2: उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन।
0: और इसके साथ ही आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका वसुंधरा कोमकली की जयंती है। वसुंधरा कोमकली का जन्म आज ही के दिन जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा को अपनी विशिष्ट शैली में आगे बढ़ाया। वसुंधरा कोमकली ने ख्याल गायन, निगुड़ भजन और लोक धुनों को बेहद भावपूर्ण अंदाज में

प्रस्तुत किया और वे लंबे समय तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की नियमित कलाकार भी रही थी तथा देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

0: एंड वेल नाउ वी आर हेडिंग टू यू कैन से रैप अप द शो करिश्मा. उम्मीद है कि आप हमारे लिसनर्स को पसंद आया होगा आज का शो. सो विद दैट दीजिए करिश्मा एंड सायरा को इजाजत.
1: नमस्कार
0: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष

0: नियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Prime Minister Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Prime Minister Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Secretary Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Mr. Modi reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. The Prime Minister requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said that he looked forward to their continued exchanges. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it is now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that the government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. India is the only major economy in the world to have held retail fuel prices essentially unchanged through the first 76 days of the Strait of Hormuz disruption. According to sources, India continues to absorb the global oil shock amid the Russia-Ukraine war and the closure of the Strait of Hormuz. Sources said the government cut the central excise on petrol and diesel 4 times, absorbing approximately 30,000 crore rupees of revenue at the exchequer in the most recent cut.

जैसे कि आपने अभी सुना कि गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे। जिंदगी की बात करें तो जिंदगी अपने आप में एक सफर ही है, और इस सफर को अगर हम गाते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं सफर में, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, उनसे हम पार पा सकते हैं। स्वागत है जी आपका बहुत बहुत आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर, और 5:11:40 हो गए। शुरू करते हैं हम गाते गुनगुनाते, और गाते गुनगुनाते में आज जाहिर सी बात है 80s और 90s के गीत आप सुनते ही हैं। मैं अपनी पसंद के कुछ गीत लेकर आई हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपके दिल को भाएंगे। तो देखते हैं जी आपको हमारी पसंद अपनी पसंद बनाने में कितनी देर लगती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, याद दिला दें आपको कि आप हैं FM गोल्ड 100.1 के साथ। आज शनिवार की शाम गाते गुनगुनाते में आपके साथ में सीमा वर्मा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत को सुनने के बाद जो मुझे एहसास हुआ, मुझे लगता है आपको भी वैसा ही कुछ फीलिंग आई होगी। ये गीत अपने टाइम में काफी फेमस हुआ, और जब बहुत सालों के बाद आप कोई ऐसा गीत सुनते हैं जो अपने जमाने में जबरदस्त फेमस हुआ हो, काफी मशहूर हुआ हो, तो अच्छा लगता है और लगता है कि कहीं सुना हुआ है। तो ये गीत उसमें से एक था। अब जिस गीत की हम बात करने वाले हैं उसकी सबसे पहले मैं फिल्म बता दूं आपको। ये फिल्म है जी बहार आने तक, जो 1990 में आई। अब हो सकता है आप इस नाम से रिलेट ना कर रहे हो, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने इस फिल्म के गीत पर अपनी नजर डाली तो मुझे बहुत कुछ याद आ गया, क्योंकि 1990 ये गाना आप समझ लीजिए कि स्टेज शोज हो, शादी ब्याह हो, कोई पार्टी हो, इस गाने ने जबरदस्त धूम मचाई थी। और साथियों, समय समय की बात होती है, उस समय का जो संगीत था, उस समय की जो पसंद थी, उस समय की जो जेनरेशन थी, उनके लिए ये गाना बहुत जबरदस्त पार्टी सॉन्ग था। आइए इसको सुनते हैं और एक बार फिर यादों में खो जाते हैं।

चलिए इस बहुत ही फेमस गीत के बाद एक बहुत ही फेमस फिल्म की बात करते हैं। उसके सभी गीत बहुत अच्छे। मैं अभी कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा गीत आप तक पहुंचाऊं, लेकिन इस फिल्म का एक गीत है जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस गीत में जो श्रीदेवी के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस, कमाल के, जिसे कहते हैं कमाल के। अब आपको अगर विश्वास करना है मेरे ऊपर तो ये गाना एक बार आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन पर, तब आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। बात कर रही हूँ मैं लम्हे फिल्म की, जो जब आई तब बहुतों को समझ नहीं आई, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी फीलिंग आई कि ऐसे थोड़ी होता है ना। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनसे कुछ समय बाद मोहब्बत होती है, कुछ समय बाद वो पसंद आती हैं, तो ये फिल्म कुछ ऐसी फिल्म रही। गीत इस फिल्म के सभी बहुत बहुत ही शानदार रहे, और अगर अवार्ड्स की बात करें तो इसे एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ इस फिल्म को, और इसके साथ साथ 5 फिल्म फेयर पुरस्कार साथियों प्राप्त हुए, बहुत बड़ी बात है। यश चोपड़ा जी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिलता है, फिर उसके बाद श्रीदेवी जी बहुत सुपर्ब डुपर्ब उनकी एक्टिंग, वो तो मिलता ही मिलता है, और सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार मिलता है, फिर इस फिल्म को संवाद लेखन पुरस्कार मिलता है, उसके बाद अभिनेता सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार अनुपम खेर जी को मिलता है। तो इस फिल्म के बारे में आप जानते ही हैं, ऐसा कोई होगा नहीं जो ये कह दे कि लम्हे नहीं देखी है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये जिस गीत की मैंने अभी बात की है, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गाना आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और हो सकता है आपका फेवरेट भी हो। श्रीदेवी जी के एक्सप्रेशंस और लता जी के गाते हुए एक्सप्रेशंस क्या मेल खाते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस

0: मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है, और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

5:36 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और जी, गाते गुनगुनाते हमारा सफर यहाँ तक तो आ ही गया है। अब कुछ और देर साथ रहिए, आपके साथ आज शनिवार की जानदार शानदार शाम सीमा।

गाते गुनगुनाते हम ये सफर जो है वो चला रहे हैं, जारी रख रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का जो समय है वो चाहे कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एफएम गोल्ड का जो आपके साथ रास्ता है वो आगे बढ़ता चला जाएगा।

वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि आप 100.1 के साथ हैं। मेरा नाम सीमा वर्मा है जी, और गर्मी चरम पर है, बहुत हो गया हमने। आपको याद है कुछ समय पहले हम ये कह रहे थे कि क्या मौसम हो जा रहा है शाम को, वाह क्या बात है, लेकिन अब वो समय गया और जबरदस्त गर्मी तो है ही। और ये ना समझे आपके दोपहर जो है वो अब खत्म हो गई है, शाम हो गई है, तो शाम में थोड़ी राहत मिलेगी, अच्छी खासी गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, मैं तो यही कहूँगी। और मेरा काम इस समय आप तक खूबसूरत गीत पहुँचाना है, ताकि इन गीतों को सुनते हुए आपको राहत महसूस हो, अच्छा लगे, आप मुस्कुराएं, और आपका जो ये समय है ये बहुत प्यारे ढंग से आगे बढ़ता चला जाए। एक शेर आपकी नज़र करती हूँ कि लाजमी है तेरा मुझ पे गुरूर करना, लाजमी है तेरा मुझ पे गुरूर करना, क्योंकि हम जिसे चाहें वो मामूली तो हो नहीं सकता।

0: वैसे एक तरह से बात सच भी है कि पल दो पल की बात थोड़ी है, ये तो सदियों का साथ है। एफएम गोल्ड के साथ आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत विशेष है। आप इसी तरह एफएम गोल्ड के साथ रहिए, क्योंकि आप हैं वहाँ, हम हैं यहाँ, तो एफएम गोल्ड की चमक हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। अब वक्त मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे रहा है, और आपको पता है जितनी एक्साइटमेंट, जितनी खुशी हमारी होती है ना जब हमारी मुलाकात होने वाली होती है, उतना ही दिल में ऐसा थोड़ा सा खटका सा आता है कि अब समय जो है मुलाकात का वो समाप्त हो रहा है, संपन्न हो रहा है, लेकिन अगली मुलाकात का इंतज़ार तो रहता है, और इसीलिए वो जो खुशी है वो दिल में बरकरार रहती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए, और ये जो गर्मी है इसमें आपने खुद को बचा कर रखना है। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलिए, और ना ज़रूरी हो तो फिर घर में बैठिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत सुनिए एफएम गोल्ड पर। आपको एक फुट टैपिंग नंबर के हवाले किए जा रही हूँ। सीमा वर्मा को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। नमस्कार।
1: पसंद करेंगे आप रॉम्बा?
2: नो,
1: सांबा?
2: नो,
1: रॉम्बा?
2: नो,
1: सांबा?
2: नो,
1: टेकिला?
2: नो,
1: टैंगो?
2: नो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत

आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 6:11:01 हुए हैं और आप हैं इस वक्त उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सदाबहार गीत आपके लिए। आज सदाबहार गीत लेकर आई हूं मैं नईम अख्तर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नईम को दीजिए इजाजत और संस्कृत में समाचार सुनिए।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललित मोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये 100,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वें आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः 150,000+ युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे 47 विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्ण देशात् चयनिताः एते नूतन कर्मचारिणः रेल मन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये, उच्चशिक्षा विभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रशासनिक नियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीय कर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वम् अस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिक कार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
3: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
2: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकास यात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतन वृत्त्यावसाराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः 47-20,000 पर्यन्तं भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढ़ संकल्पेन कार्यं करोति।
3: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
2: प्रधानमंत्री नवनियुक्तान पदाधिकारिणः आईजीओटी इति कर्मयोगी मञ्चस्य सम्यक् लाभं ग्रहीतुं प्रोत्साहितवान्। सः उक्तवान् यत् एतेन ते स्वकर्तव्यानि सरलतया अवगन्तुं समर्था भविष्यन्ति। श्रीमोदी विश्वासः प्रकटितवान् यत् एते नवनियुक्ताः पदाधिकारिणः राष्ट्रस्य प्रगतौ योगदानं दास्यन्ति, तथा च तेषां कार्याणि निर्णयाश्च विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं साकारयितुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। राजस्थानस्य जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर चेत्यादिषु नगरेषु आजीविका मेलकम् आयोजितम्, यत्र एकादश शतदधिकेभ्य युवकेभ्य नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राज्यस्तरीय आजीविका मेलके सहभागित्वं कृतवान्। जयपुरे आयोजिते कार्यक्रमे श्रीवैष्णवः सभां सम्बोधयन् अवदत् यत् रेलविभागे षष्टिसहस्राधिक एकलक्षपदेषु नियुक्तिप्रक्रिया प्रचलति, यस्मिन् चत्वारि कोट्यधिकाः अभ्यर्थिनः सहभागं कुर्वन्ति। पंजाबराज्यस्य अद्य कपूरथला पटियाला चेत्येतयोः द्वयोः स्थलेषु ऊनविंशतितमं आजीविका मेलकम् आयोजितम्, यत्र एकाशीत्यधिकद्विशत नवलाभार्थिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितानि। कपूरथला स्थिते आरसीएफ संस्थाने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक वात इंधन मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां कुर्वन् उक्तवान् यत् आजीविका मेलकम् एकं सुदृढं राष्ट्रिय संस्थानरूपेण परिवर्तितम् अस्ति, यत् पारदर्शितां तथा योग्यता आधारितां समयबद्धतां नियुक्तिं सुनिश्चितं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य उद्घोषितवान् यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। शिक्षा विभागस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशने मुख्यमंत्रिणा अधिकारिणः निर्दिष्टः यत् प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं 20,000 शिक्षकाणां नियुक्तिः सुनिश्चिता भवेत्। सः अवदत् यत् नियुक्तिप्रक्रियां सुगमां कर्तुं शिक्षकनियुक्तेः अधिसूचना इदानीं प्रतिवर्षं जुलाई मासे एव प्रसारयिष्यते। अवधेयं यत् शिक्षामन्त्री मिथिलेश तिवारी अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः अनया घोषणया शिक्षकनियुक्तिपरीक्षायाः चतुर्थचरणं प्रति अनिश्चिततायाः स्थितिः समाप्ता अभवत्। सः सूचितवान् यत् शिक्षा विभागः शीघ्रमेव रिक्तानां शिक्षकपदानां मूल्यांकनं विधाय अग्रे नियुक्त्यर्थं नूतनं याचनापत्रं प्रेषयिष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवसपर्यन्तं वर्धिता। पूर्वम् एषा तिथिः अद्य यावत् आसीत्। सीबीएसई इत्यनेन उक्तं यत् गतदिनेभ्यः जालपुटे अभूतपूर्व परिचालन भारस्य तथा अनधिकृत हस्तक्षेपस्य अनेक प्रयत्नानां कारणेन जालपुटस्य कार्ये व्यवधानम् उत्पन्नम्, अतः एषः निर्णयः स्वीकृतः। सीबीएसई इत्यनेन सूचितं यत् छात्राः स्वस्य उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्य अंकानां सत्यापनस्य अथवा पुनर्मूल्यांकनस्य अग्रिमचरणाय आवेदनं कर्तुं द्विदिनात्मकं समयं प्राप्स्यन्ति। सहैव अभ्यर्थिनः विस्तारित समयसीमायाः सम्यक् उपयोगं कृत्वा प्रक्रियां सम्पूर्णां कुर्वन्तु इति। अमेरिका देशस्य विदेशमन्त्री मार्को रूबियो अद्य प्रातः चतुर्दिवसात्मके भारत यात्रा प्रसंगे कोलकाता नगरं सम्प्राप्तवान्। द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं सहैव वाणिज्य रक्षा ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी हिन्द प्रशान्त व्यूहरचना इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य विस्तारार्थम् एषा तस्य प्रथमा भारतयात्रा अत्यन्तं महत्वपूर्णा वर्तते। भारते नियुक्तः अमेरिकी राजदूतः सर्जियो गोरः कोलकाता विमानपत्तने रूबियो महोदयस्य स्वागतं कृतवान्। विमानपत्तनात् आगमानन्तरं सः सद्य एव कोलकाता नगरस्थं सेंट टेरेसायाः मिशनरीज ऑफ चैरिटी इत्यस्य मुख्यकार्यालयं मदर हाउस तथा बाल आश्रम च दृष्टवान्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुन्दीबुग्यो प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रस्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। संघटनस्य महानिदेशक ट्रेडोस अधानोम घेब्रेसस अवदत् यत् अस्य संक्रमणस्य संकटं सम्प्रति राष्ट्रस्तरे अतिवाधिकं क्षेत्रस्तरे अधिकं वैश्विक स्तरे च न्यूनम् इति मूल्यांकितम् अस्ति। सः स्पष्टीकृतवान् यत् अधुना यावत् द्वयशीति प्रकरणेषु 7 जनाः मृताः, परन्तु वास्तविक प्रकोपः एतस्मात् बृहत्तरः भवितुं शक्नोति। यतः प्रायः 50+ संदिग्ध प्रकरणानि 77+ संदिग्ध मृत्युवः च पंजीकृताः सन्ति। आईपीएल 20-20 क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धेयं 7:30 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember, listeners, that we do not address stock or company specific queries. You can call us with your queries on 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers if you're calling from either a landline or even a mobile. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों, शेयर बाजार की हलचल के साथ साथ हम आपके फोन कॉल को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप हमें फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु किसी भी विशेष कंपनी या स्टॉक से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आप हमें हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमित, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव।
0: थैंक यू अमित। Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Indian equities wrap up the week with gains and global crude oil prices tumbled sharply over the week.
1: आर्थिक सुर्खियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों में नवचयनित युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि देश युवाओं को वैश्विक अनुभव, रोजगार और अवसर दिलाने के लिए विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह मजबूती का रुझान और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट।

0: And before we begin with our top story, there is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार मेले के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरी देशवासियों के जीवन को आसान बनाने का एक मजबूत माध्यम है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को अपने कर्मयोगी युवाओं पर भरोसा है और युवाओं की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रतिबद्धता तथा दैनिक कार्यों से भरोसा कायम करने का प्रयास करें। श्री मोदी ने कहा कि हमारा देश विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 जगहों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए चयनित उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालय

0: कार्यालयों और विभागों में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले जयपुर से एक श्रोता नवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
1: हाँ नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, मेरा प्रश्न जो है वो बढ़ते हुए एफआईआई के आउटफ्लोस को लेकर है। और पिछले दो साल से हम सब लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, और इस वक्त जो एफआईआई का जो ओवरऑल जो लेवल है वो ऑल टाइम लो है, और हम सब लोग जानते हैं कि एफआईआई का ये जो आउटफ्लो है इसका कारण क्या है, लेकिन भारत सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय की ओर से इसके ऊपर ना तो कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर जो टैक्सेशन की रेट है वो ऑल सबसे ज्यादा है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, और इन्हीं एफआईआई के आउटफ्लो के कारण हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में जो है भारत का जो अब वेटेज है बहुत नीचे आ चुका है। और हालांकि इसको बराबर जो सपोर्ट मिला हुआ है वो रिटेल इन्वेस्टर्स और एसआईपी के इन्फ्लो से है, लेकिन ये
0: जहां तक
1: रहेगा
0: मैं समझता हूँ, जहां तक आप पूछना चाह रहे हैं कि एफआईआई का आउटफ्लो के कारण क्या है और सरकार क्या इसमें कुछ कर सकती है।
2: देखिए नवनीत, एफआईआई को जो आउटफ्लोज है ये बहुत लोगों के मन में ये अंदेशा है कि ये क्या क्या है। देखिए पहली बात तो जिस व्यक्ति ने 100 रुपए लगाया है कोविड के टाइम या कोविड के बाद, अगर आप बताइए नवनीत, अगर आपने कहीं 100 रुपए लगाया और कल को 150 उसका वैल्यू हो जाता है तो क्या आप प्रॉफिट बुक करके नहीं निकलना चाहेंगे? क्या भारत सरकार कोई ऐसा नियम बना सकती है कि अगर आपने मुनाफा कमा लिया है पर आपको यहां इतने दिन तक रुकना पड़ेगा, आप अपना पैसा, देखिए वो यहां पर स्वतंत्र हैं, अपना पैसा जब चाहें लगा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। और ये सच है कि हमारी जो पीई थी वो पीछे थोड़ी हाई थी, हमारी मार्केट ऐसे बोलते थे वो लोग थोड़ी महंगी है, कभी चाइना की महंगी हो जाती है, आजकल चाइना वियतनाम कोरिया की मार्केट सस्ती है, तो यहां से वो लगा रहे हैं। और इसमें एक अच्छी बात जो मैं जरूरी बात बताना चाहता था नवनीत आपको, पहले तो टैक्स का रेट हमारा ज्यादा नहीं है, हम 12.5% हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट है, थोड़ा बहुत विदेशियों के लिए फर्क होता है। मैं आपको जरूरी बात बताना चाह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये कि हमारा पहले एफआईआई का वेटेज नवनीत जी 25% के करीब था भारत में, और मुझे लगता है हमारी मार्केट धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही है, इनकी मात्रा कम हो रही है, और भारतीय जो आपने बताया रिटेल निवेशकों की मात्रा अब ये घट के 15-16% तक आ चुका है, और जैसे जैसे इनका घटेगा आप देखिए कि जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा है यहां पर नवनीत, आपको मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा, हम 26,377 सबसे हाई था आज तक मार्केट का निफ्टी की बात करें, आज भी हम ये युद्ध की वजह से हम 23,500-24,000 पे, अगर युद्ध ना होता तो शायद हम उस ऑल टाइम हाई को पार कर चुके होते। तो देखिए जिस हिसाब से इन्होंने माल बेचा 2,00,000 करोड़ का तो इसी साल बेच दिया है, जिस हिसाब से इन्होंने यहां बेचा है नवनीत उस हिसाब से तो हमें गिर के 10-15,000 निफ्टी पे आ जाना चाहिए था, पर देखिए किस प्रकार से जो हमारे देसी बॉयस हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्होंने किस प्रकार से संभाला, तो मुझे लग रहा है हमारी मार्केट मैच्योर हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, ये आए तो इनका स्वागत है पर ये जाए तो हम इनको खुशी से ही विदा करें। भारत सरकार ऐसे नियम नहीं बना, अगर ऐसे नियम भारत सरकार बनाएगी फिर तो ये रेगुलेटेड मार्केट हो जाएगा, मार्केट स्वाभाविक तौर पर नहीं चल पाएगा।
0: वैश्विक तौर पर भी कभी भी किसी भी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए इस तरह से आउटफ्लो करना के लिए प्रतिबंध बहुत सीमित है।
2: नहीं, प्रतिबंध लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखिए आपने मुनाफा कमाया नवनीत तो आपको मैं कहूं नहीं अभी आप नहीं इसको ले जा सकते, तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है नवनीत को बहुत चिंता की बात नहीं है। अच्छा है हमने नवनीत के सवाल को बहुत खोलकर जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के मन में आजकल ये बात है, क्योंकि कुछ हद तक रुपए का कमजोर होना का कारणों में से एक ये कारण है। तो नवनीत आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमें अपने पैसे पर, अपनी डोमेस्टिक मार्केट पर हमें पूरा विश्वास है और हम खुद इसको संभालेंगे, अब हम विदेशियों के सहारे नहीं रहेंगे, आए तो स्वागत है जाएं तो हमें कोई नाराजगी।
0: 85% अभी भी घरेलू संस्थागत और घरेलू निवेशक ने इसको
2: बिल्कुल लगवाया। बिल्कुल।
3: नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। सिद्धार्थ इज ऑनलाइन विद अस। सिद्धार्थ वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
0: सिद्धार्थ अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना प्रश्न पूछिए।
3: लुक्स लाइक that particular caller has not is not with us, so let's take the next call again coming in from Delhi. Amit Jha is with us from Delhi. Amit, welcome to Market Mantra, please ask your question.
4: नमस्कार सर
3: जी। नमस्ते, अपना सवाल पूछें।
4: आप सवाल ही पूछ रहा हूँ सर। नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार अमित
4: सर। हाँ पिछले बार आपने डिस्कस किया था आईटी कंपनी के बारे में, सर सुन ली हमारी बात, आईटी कंपनी ने इस हफ्ते बढ़िया चली है सर
2: जी।
4: और दूसरा सर प्रश्न ये है कि जो अभी 5 देशों की यात्रा पे गए थे हमारे प्रधानमंत्री सर
2: जी,
4: तो उनसे क्या भारत के दृष्टिकोण से हमें क्या हासिल होगा या हमारे दृष्टिकोण से क्या क्या मजबूत पक्ष है? ग्रीन, हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी पे बात हुई थी, ये ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे क्या क्या है सर बताइए।
2: देखिए हमें प्रधानमंत्री जी ने जितने भी 5 देशों की यात्रा करी, यूएई से शुरू हुई थी, उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे

0: वे वहां नॉर्डिक सम्मेलन में भी वो गए, इटली भी लौटते में आए, तो प्रधानमंत्री जी तो सोते भी नहीं है, वो प्लेन में सो जाते हैं और अपना जो आराम करना होता है, और जहां जहां भी कभी भी वो खाली हाथ नहीं आते हैं, मतलब वो ऐसी जगह जाते ही नहीं है जहां पर उनको लगे कि कोई करार, कोई पैक्ट, कोई डील, भारत में निवेश, इस प्रकार की चीजें। ब्लू इकोनॉमी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्लू इकोनॉमी के बारे में भी, क्योंकि नॉर्डिक का बहुत बड़ा रीजन, जो नॉर्डिक नेशंस इनको बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो नेशन आइसलैंड है, तो यहां पर बहुत बड़ी ब्लू इकोनॉमी का समुद्र यहां लगता है, उससे भारत के करार हुए हैं, एनर्जी में हुए हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हुए हैं, डिफेंस क्षेत्र में हुए हैं, खाने, फूड सिक्योरिटी पर बात हुई है बहुत। और धीरे धीरे होता क्या है कि ऐसे टूर के परिणाम, ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी आज वापस आए और अगले दिन आपको सारा कुछ टेबल पर दिख गया। ये करार लॉन्ग टर्म होते हैं, आने वाले महीनों में, आने वाले क्वार्टर्स में आपको इनका असर दिखाई देगा। हमें इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। मुझे लगा प्रधानमंत्री जी से ज्यादा कर्मठ मैंने प्रधानमंत्री देखा नहीं, क्योंकि प्लेन में सो जाते हैं, वो आराम भी नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं जिस देश में जितना समय बिता रहे हैं उसको पूरी तरह से देश के हित में इस्तेमाल किया जाए।
1: जी, जयपुर से अगले श्रोता के तौर पर जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जी जितेंद्र,
2: मैं एक और सवाल पूछना था, लेकिन आपका जवाब सुन रहा था, तो ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री जाते कहीं भी खाली हाथ वापस नहीं आते हैं, तो बात ठीक है, लेकिन विदेशी निवेशक तो हमारे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो कहीं उनको लगता होगा कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है तो निकाल रहे होंगे, एक तरफ बैक थोड़ा, एक तरफ पैसे निकल रहे हैं, तो ये विरोधाभास है, पहला प्रश्न ये था। और दूसरा है कि कौन सा सेक्टर अभी सस्ता है?
0: अच्छा, पहले मैं जितेंद्र, आपका पहला विरोधाभास, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, वो मैं दूर कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो मैं जिस निवेश की बात कर रहा था वो लेकर आते हैं, यहां हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में फैक्ट्रीज लगती हैं, भारत में ऑफिसेज खुलते हैं, भारत में बैक एंड ऑफिसेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं। ये जो आप निकालने की बात कर रहे हैं, ये शेयर मार्केट में जो एफआईआई वाले हैं, इनको तो इनको कहीं हमें जाके बुलाना नहीं पड़ता, ये तो दुनिया भर की मार्केट पे जहां बैठे हैं वहीं से नजर रखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एफडीआई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी यहां की शेयर मार्केट के लिए डायरेक्ट बात नहीं करते। हाँ, प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस को, उनकी बातें सुनकर, देश की तरक्की के बारे में सुनकर विदेशी संस्थागत निवेशक आके निवेश करना चाहते हैं, वो वेलकम है, पर यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है। एफआईआई और एफडीआई के बीच में आपको फर्क इसमें समझना होगा। सेक्टर आपने पूछा, मुझे लगता है डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले, जो ये चार पांच सेक्टर, वैसे तो और भी हैं पर बहुत ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इन सेक्टर्स पे आप नजर जितेंद्र रख सकते हैं। पर शर्त एक है, अगर आप शर्त के लिए मानेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वो शर्त यह है कि आप थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए निवेश करें, और जो शुरू में अनुभा ने डिस्क्लेमर पढ़ा था उसको भी दिमाग में रखें।
3: एंड सिद्धार्थ हैज जॉइंड अस अगेन नाउ। सिद्धार्थ, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली।
4: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, लवली हियरिंग योर वॉइस फ्रॉम द अदर साइड।
0: गुड इवनिंग सिद्धार्थ,
4: माय क्वेश्चन टू यू वुड बी टुडे इज, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द यूएस मार्केट फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स, एंड एट व्हाट रेट आर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन द यूएस मार्केट टैक्स इन इंडिया, बिकॉज आई एम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट इज द अपराइजिंग सेक्टर इन योर थॉट इन इंडियन मार्केट इन द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर?
0: ओके Siddharth, the answer to your second question I just gave for the caller who was, I probably, you were not listening at that time. There was Jitender from Jaipur who called. Let me answer the second part again because it's fresh in my mind. FMCG, renewable energy, defense, electric vehicles, electric batteries, these are the sectors you can keep in mind. Your first question was related to taxation of, see, I must tell you that in different states in the United States, there is a Fed tax and there is a state tax. There is double tax system. They both combine together. But what is more important, Jitender, is that there is an Indo-US double tax avoidance agreement. It's called DTAA. So even if you pay tax in the US, I would suggest, since you are an Indian resident, because you are a regular caller and you're calling from Delhi, I hope you are a resident of India. So you can claim the tax which you have lost in America against your Indian tax. This is what a double tax avoidance treaty is all about, that you set off the tax which you paid in the US on the basis of a TRC which you get, or a W-5 form which you collect from there, or a W-2 form, that which is the tax deducted at source. And that form you produce use while filing the returns in India. So rest assured, you do not have to pay, Jitender, double tax at both the places on the capital gains which you made. I'm very happy to know that you are making money and you are earning something by investing in US market, because there aren't too many people who do this at this point of time.
3: The next caller we have is from Mumbai, Ratnakar. But before we take your call, Ratnakar, I'll request Amit to

0: give us this next news.
1: जी सेंसेक्स के बारे में नजर डालते हैं। साप्ताहिक तौर पे क्या रहा? कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पश्चिमी एशिया में तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयासों के चलते घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह बढ़त दर्ज हुई। साप्ताहिक तौर पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की बढ़त से 177 अंक बढ़कर 75,415 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की मजबूती से 75 अंक बढ़कर 23,719 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में लगभग 1.4% की बढ़त रही, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की तेजी रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया साप्ताहिक तौर पर कुल 27 पैसे की मजबूती से 95.70 रूपये पर दर्ज हुआ। सप्ताह के दौरान सूचकांकों में बढ़त के बावजूद विदेशी निवेश के गिरने, मुद्रास्फीति पर सारी चिंताओं और चौथी तिमाही में कंपनियों के मिले जुले नतीजों से निवेशक सतर्कतापूर्ण कारोबार करते नजर आए। मुंबई से रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रत्नाकर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा डेफिनेटली फर्स्ट सवाल है वो 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए, वो हम जो सोचते हैं वो कॉमन मैन के लिए ये बहुत महंगा पड़ता है, उसका जीवन पर उसका असर होता है, तो ये तीसरी बार 10 दिन में क्यों बढ़े और वो ऐसा कितना ये दिन चलता रहेगा, एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि एक मशहूर अर्थशास्त्री ने जो बोला है कि डॉलर के मुताबिक जो अपना रुपया 100 तक आने दो तो उसका मीनिंग क्या है, 100 तक आने दो इसका मीनिंग क्या है। और दूसरे आपके ही माध्यम से ये समझ में आया था कि कच्चे क्रूड के दाम गिर रहे हैं, ये तीनों का क्या संबंध है?
3: चलिए रत्नाकर जी, पहले आपने पेट्रोल डीजल का बोला कि पिछले 10 दिन, देखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको अंडर रिकवरी हो रही है, एक वैश्विक संकट है इस समय और पूरी दुनिया में, मेरे पास सारे देशों में जहां जहां पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है मेरे पास बाकायदा इसकी लिस्ट है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, लगभग सब देशों में। बल्कि आपको हैरानी होगी रत्नाकर कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उनके अपने देश में, मेरे पास आंकड़ा है, हमारे वहां एसोसिएट्स भी हैं मेरे वहां पर, उन्होंने मुझे बताया कि $3 था प्रति गैलन, वो लोग गैलन में नापते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, वो गैस बोलते हैं, $3 प्रति गैलन गैस थी, आज वो बढ़ के $5.5-$6 प्रति गैलन तक पहुंच गई। ये मैं उसका बता रहा हूं आपको जिनके यहां सबसे ज्यादा ऑयल आता है और किसी पे वो निर्भर नहीं है, उनके अपने यहां का ऑयल अपने यहां ही खपाते हैं, तो इसलिए ये एक मैं समझता हूं असाधारण परिस्थिति है। कब बढ़ाए जाएंगे आगे ये तो निर्भर करेगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे, उससे भी ज्यादा निर्भर करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, उससे भी ज्यादा निर्भर करेगा ईरान और यूएस के जो आपस में लड़ाई का माहौल बन रहा है क्या वो फिर शुरू हो जाएगी, ये सब इस पर निर्भर करेगा। दूसरा आपने पूछा कि एक मशहूर अर्थशास्त्री ने बोला कि 100 जाने, तो देखिये हमारी अर्थव्यवस्था इम्पोर्ट ओरिएंटेड है, हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में ही जो ट्रेड डेफिसिट था वो $28 बिलियन का था, खाली अप्रैल की बात कर रहा हूं, हमें बहुत सारा सामान बाहर से मंगाना पड़ता है और पेट्रोल क्रूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, सोना हमने $72 का बिल आया, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं, तो जब इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है तो रुपए गिरने से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चाइना और जापान ने जानबूझ के पीछे अपनी करेंसी को कुछ समय पहले डिवैल्यूएट किया था क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, शायद उन अर्थशास्त्री के दिमाग में यह होगा कि हम अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी धीरे धीरे बन रहे हैं तो ऐसे में रुपए गिरने का फायदा एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा होता है, बल्कि खाली उन्हीं को होता है। तो हो सकता है, देखिए मैं मजेदार बात बताऊं अमित और अनुभा की परमिशन लेके, 1897 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इकोनॉमिस्ट थी, उनका नाम था मिसेस बारबरा वूटन, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बोली कि व्हेन 6 इकोनॉमिस्ट सिट टुगेदर देयर आर 7 ओपिनियंस। तो इसलिए अर्थशास्त्री टू अर्थशास्त्री रत्नाकर जी, कई बार ओपिनियन भिन्न हो सकती है, हमें सबकी ओपिनियन को हम रिस्पेक्ट करते हैं।
1: जी नजर डाल लेते हैं, अगर बात तेल की कीमतों की हो रही तो नजर डालते हैं तेल की कीमतों के बारे में ही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है, पिछले 10 दिन में तेल के मूल्य में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया। 15 मई को 3 रूपये प्रति लीटर, 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में तीसरी बार संशोधन है। हाल ही के दिनों में कीमतों में लगभग 5 रूपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। महाराष्ट्र से अमित हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।

0: अमित अपने रेडियो की आवाज प्लीज बंद करें।
1: आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है।
2: हेलो
0: जी, हमें अपनी आवाज सुनाई दे रही थी।
2: हाँ सर,
0: हम आपकी सुनने के लिए बैठे, बताइए।
3: हाँ सर, अभी मोदी तो बोल रहे कि सोना साल भर खरीदी ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें
0: जी,
3: क्या अभी इस मौका आएगा हमें सोना खरीदी करने का?
0: देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील है तो उस अपील के पीछे कारण है। कारण है जो सातों अपील उन्होंने करी उसमें जो कॉमन थ्रेड था, सूत्र था, वो था विदेशी मुद्रा को बचाना। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा मिलकर हर व्यक्ति सहयोग करे तो इस समय हमारे लिए विदेशी मुद्रा भंडार जो अब 688 बिलियन डॉलर पे आ गया, युद्ध अभी थोड़े दिन पहले 730 के आसपास था। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च हो, देखिए जब पैसा कम रह जाता है जेब में, यहां विदेशी मुद्रा भंडार की, तो आप घर में भी बात करते हैं थोड़ा थोड़ा कम खर्च हो जिससे ज्यादा दिन तक चल जाए, वो हमारा गुजारा चले। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की अपील को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए और लोग बात मानते भी हैं। आप आज ये सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब आपने सुना, आपने इस पर चिंतन किया। प्रधानमंत्री जी की छोटी छोटी बातें जो है वो लोग मानते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। तो इस समय जो समस्या है देश के सामने, विश्व के सामने, वो इस प्रकार की है कि हमें थोड़ा, अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रूगल, थोड़ा सा हमें कंजूसी करनी चाहिए। और बचत तो मुझे लगता है अनुभव राजेश के आपके अपने, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी अच्छी है, पर आपको सोना कहीं पूजा वूजा में रखना है तो बात अलग है। पर मुझे लगता है कि
4: एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट गोल्ड इज समथिंग यू नो, इफ इट्स रियली एसेंशियल, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट यू रिक्वायर इन अ डे टू डे बेसिस,
0: ऐसा नहीं उसके बिना हमारे गुजारा नहीं।
4: बिल्कुल,
0: हालांकि शादी ब्याह में कुछ जगह मुझे पता लगा बहुत लोग इसको बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल के बिना गुजारा नहीं है, पर सोने के बिना गुजारा हो जाएगा, कुछ ऐसा समझ सकते हैं।
4: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम महाराष्ट्र। के के शुक्ला इज ऑन लाइन विद अस। मिस्टर शुक्ला, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन।
5: धन्यवाद, नमस्कार।
4: नमस्ते, सवाल पूछे।
5: मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो कोहली जी बोले कि चाइना और ईरान और ये सब अपना करेंसी का वैल्यू कम करते हैं
0: जी,
5: तो उससे उनको क्या फायदा होता है?
0: अच्छा, चलिए शुक्ला जी, बहुत अच्छा सवाल है। चाइना और जापान मैंने बोला, ईरान की तो करेंसी की वैसे ही हालत खराब है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शुक्ला जी इकोनॉमी होती है वो अपनी अगर करेंसी को डीवैल्यू करती है तो आप समझिए, अभी जब हमारा भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर है तो इससे किसको फायदा हो रहा है? जो लोग यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं आपको पेमेंट डॉलर में आती है, तो हमारे पास वो डॉलर को जब हम यहां आके कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा कि जब आप डीवैल्यूएट करते हैं तो आप अपनी करेंसी को जानबूझकर कमजोर करते हैं। चाइना जापान ने किया, युआन और येन में ये हुआ। तो कमजोर करने से क्या हुआ कि डॉलर के अगेंस्ट जब डॉलर की पेमेंट चाइना में और जापान में आने लगी तो उनके ज्यादा पैसा येन में और युआन में मिलने लगा। मैं उम्मीद करता हूं शुक्ला जी आपको समझ आया होगा कि ये कैसे सारा खेल चलता है। करेंसी का कमजोर होने का सबसे ज्यादा फायदा केवल और केवल एक्सपोर्टर्स को होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं।
1: जितने निर्यातक होते हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होता है और उनकी चीजें चूंकि विदेशी बाजार में सस्ती होती हैं तो उनकी मांग बढ़ जाती है, जिससे हमारे देश का निर्यात या किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है। महाराष्ट्र से गुरुनाथ हमारे साथ मौजूद है। जी गुरुनाथ, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
6: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बोलिए।
6: हाँ सर, शरद सर को भी
0: नमस्कार। गुरुनाथ जी पूछिए।
6: सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो रिजर्व आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को, जो सरकार को जो लाभांश दिया जाता है
0: जी, डिविडेंड,
6: सर ये कितने साल में दिया जाता है? क्या सरकार डिमांड के बाद ही रिजर्व बैंक देती है कि अपने आप ऑफर करके देती है, ये बताइए। और दूसरा सवाल मिला है ये कि सर ये जो एआई के वजह से
0: जी
6: जो लोगों की नौकरियां आजकल, मतलब जब वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या तो बनी ही रहती है
0: जी,
6: तो क्या भविष्य में हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी में तो हो ही रहा है, हमारे यहाँ की कंपनियां भी मतलब ऐसे जॉब कॉस्ट कटिंग कर सकती है? और क्या इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इसमें, मतलब गवर्नमेंट क्या डिसीजन इसमें इंटरफेयर कर सकती है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है?
0: देखिए, चलिए गुरुनाथ जी आपके सवाल समझ आ गए। आपने पूछा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब डिविडेंड देता है सरकार को, अभी 287,000 करोड़ की डिविडेंड की बात हुई, तो वो आरबीआई को जो मुनाफा होता है उसमें से देता है, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ा और केवल शेयर होल्डर है। तो वो अपने आप ही जब वो प्रॉफिट निकालते हैं तो स्वतः अपने आधार पर आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। दूसरा आपने पूछा एआई की नौकरी आगे जाएंगी, देखिए जो रेपिटेटिव जॉब्स होंगी एआई वहां पर खतरा बना हुआ है पूरे विश्व के लिए। भारत सरकार इसमें जो एआई के प्रोग्राम चलाती है, मुझे लगता है युवा को आज क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपना रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर ध्यान देना चाहिए, वरना आने वाले कुछ सालों में जो युवा अपने रीस्किलिंग

0: स्किलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, कौशल विकास पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी थोड़ी सी नौकरी अगर रेपिटेटिव जॉब है, आप रोज एक ही काम करते हैं, वो एआई जरूर वहां पर खतरा आगे बन के आ सकता है। पर इसको रोक पाना ज्यादा जरूरी बात है, क्या सरकार इसको रोक पाएगी? मुझे लगता है एक सीमा के बाद टेक्नोलॉजी को रोक पाना बहुत कठिन हो जाता है।
1: Before we take the next call, let's quickly have a look at how the US markets behaved yesterday. Wall Street ended on a positive note yesterday, supported by optimism over Iran-USP stocks and a strong earnings season. The Dow Jones Industrial Average climbed nearly 0.6% to close at a record high of 50,580. The S&P 500 advanced almost 0.4% to close at 7,473. And the Nasdaq Composite Index added 0.2% to close at 26,344. For the week, the Dow surged 2.1%, the S&P 500 rose nearly 0.9%, and the Nasdaq gained almost 0.5%. Meanwhile, in the United States, Kevin Warsh has taken oath of office as chairman of the U.S. Federal Reserve Board of Governors, succeeding Jerome Powell, who had held the position since 2018. And let's take the next call coming in from Delhi. Sanjeev is online with us. Sanjeev, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
2: संजीव, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना प्रश्न पूछिए।
3: शरद जी नमस्कार, के साथ सवाल यह है कि 84 डेज से ये जो ईरान की वॉर ब्रोकन है
0: जी।
3: हमें शील्ड मिली हुई है पीएम साहब की तरफ से पेट्रोल हाइक के ऊपर, जो कि बहुत मिनिमम सा हुआ है
0: जी।
3: गवर्नमेंट चिंता है और अपने से ज्यादा देश की चिंता है कि ये कितनी देर तक मैनेज कर लगे, जो कि हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20-25 रुपए रेट का इजाफा होना चाहिए टू मेंटेन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ माई कंट्री, और कितनी देर ये कैसे हमें शील्ड दे रहे हैं?
0: पहले तो संजीव जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा,
2: पूरे बिल्कुल
0: संजीव जी देशभक्त हैं और इस समस्या को समझते हैं। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और 76वें दिन ये कीमत बढ़ाई गई और अभी भी अंडर रिकवरी है, तो गवर्नमेंट ने कुशनिंग की हुई है। और कब तक है ये सब संजीव, निर्भर करेगा कि क्रूड ऑयल कहां तक जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कब तक बंद रहता है, ईरान और ये जो येस एंड नो का गेम चल रहा है ईरान और यूएस के बीच, कभी हां कभी ना, कभी समझौता हो जाएगा। बहुत ही अनिश्चित परिस्थिति संजीव जी, अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो बहुत अनिश्चित परिस्थिति है। एनीबडीज गैस के कब होगा, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री हर घंटे कीमतों पर नजर रखे हुए, तो मुझे लगता है इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक होगा। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी शांत हो और जल्दी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ जाए
1: जी। And since we are talking about oil prices, let's see how crude oil prices behave during the week. Global crude oil prices declined sharply over the week on optimism that traffic through the Strait of Hormuz would return to normal in the near term if a peace deal is reached. Oil prices rose over 3% during yesterday's session, but paired gains by the close. Brent crude July futures settled over 0.9% at $103.54 per barrel, while West Texas Intermediate July futures added nearly 0.3% to end at $96.60 per barrel. On a weekly basis, Brent declined 5.5%, while WTI fell by 8.4%. And let's take the call coming from Keshav from Delhi. Keshav, we are running out of time. Very briefly, please ask your question.
4: Hello, Namaskar ji.
0: Namaskar.
4: Sir, main ye puchna chahta hu, agar sarkar ne ye apna petrol aur dusri cheezon mein rate badhaye hain aur ye fir ghata bhi dete hain, और जो मार्केट में जो दूसरे दुकानदार है अपना रेट बढ़ा देते हैं पर वो घटाते नहीं, दुकानदारों को भी तो घटाना चाहिए, इसके लिए क्या?
0: बिल्कुल केशव, घटाना चाहिए। और आपको अगर ऐसा कोई जानबूझ के शरारत करता मिलता है तो उसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप शिकायत कर सकते हैं। अभी संक्षेप में तो यही बता पाऊंगा, अगली बार करिएगा इसको और खोल के जरा बात करेंगे कौन वो दुकानदार है जो ऐसे करता है।
2: और सरकार ने बहुत सारे इस तरह के उपाय किए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम से कम हो या सीमित हो, और इस पर सरकार की खासतौर पर नजर भी काफी बेहतर रहती है। शरद, फिलहाल कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: It was my pleasure, thank you.
2: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
1: Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Indian equities wrap up the week with gains. And global crude oil prices tumbled sharply over the week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. And do remember, it's going to be another call-in program. So do remember to join us at 6:30 tomorrow. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल, सख्त और समयबद्ध

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये युवा अब विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में शामिल होंगे और आज हमारी चर्चा का विषय यही है, 19वां रोजगार मेला, रोजगार सृजन से राष्ट्र निर्माण। इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार अनुभव जी।
0: शेखर जी, रोजगार मेला के अब तक के 18 एडिशंस के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है?
1: रोजगार मेला अपने आप में सरकार की एक बड़ी इनिशिएटिव है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक प्राथमिकता दी गई है। आपने जैसे कहा कि 12 लाख लोगों को नौकरियां दी गई है। ये 19वां मेला था, 47 जगह पर आज आयोजित हुआ है, जिसमें रोजगार मेले में जो एक प्रोसेस रहती है कि जहां जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो और उनको एम्प्लॉय करने के लिए जो लोग जाते हैं, खास करके सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, उन दोनों को ये करके किया जाता है। और इसका एज लिमिट जो है 18 से 35 तक है। और सबसे विशेष एस्पेक्ट इस मेला में ये है कि 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास जो लोग पास कर रहे हैं, 19 से लेकर जो ITI डिप्लोमा लिए हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, ये सबको कवर करता है। तो एक यूनिक एक्सरसाइज रहा है जिसमें बहुत लोग फायदा उनको मिला है। और लगातार एक बात आती रहती है कि बेरोजगारी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे रेलवेज है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, आपकी हायर एजुकेशन है, आज के मेले में भी ये लोग सब भाग लिए। सरकारी नौकरी को लेकर हमेशा एक अट्रैक्शन रहती है कि ये सबसे सिक्योर है, लेकिन आज के मेले में जो बातें सामने प्रधानमंत्री ने रखी है कि जिनको ये नौकरियां मिली है उनका भूमिका क्या है,
0: जी,
1: वो आगे जाके क्या करेंगे, ये सब बारे में प्रधानमंत्री ने आज सबको बताया है।
0: जी, ये जो आपने आखिरी बात कही इस पे भी जरूर चर्चा करूंगी मैं आपके साथ शिखर जी, पर अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं, ये राष्ट्र की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार बन रहे हैं। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: शिखर जी, रोजगार मेला जैसी पहल जो है वो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित करती है और कैसे प्रोत्साहित करती है?
1: आज प्रधानमंत्री का आह्वान यही है कि जो लोग सरकारी नौकरी पे जा रहे हैं वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ले रहे हैं। वो कमिटमेंट क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक माध्यम है जिससे आप देश की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अपने आप को कर्मयोगी के रूप में काम निभाना है। और ये जो आज की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, जो जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं वो भी अपनी शिक्षा बंद नहीं कर सकते
0: जी,
1: लगातार उनकी लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो भी एक चुनौती दे रहे हैं कि उसको आप कैसे अडेप्ट करेंगे, सिस्टम में कैसे करेंगे, और लोगों की बढ़ती हुई जो मांगे हैं उसको कैसे आप दूर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का यही था कि आज के युवा, उन पर पूरा भरोसा है कि वो ये कर पाएंगे। और साथ में हमेशा ये याद रखेंगे, सरकारी जॉब जो है एक माध्यम है लोक सेवा के लिए, ये बात इनको कभी भूलना नहीं चाहिए।
0: सफल उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी हाल में ही संपन्न हुई 5 देशों की यात्रा के आर्थिक और कूटनीतिक परिणामों के बारे में भी विस्तार में बताया और उन्होंने कहा कि इन साझेदारियों का उद्देश्य ये है कि भारत के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव प्राप्त हो।
2: साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं।
0: शिखर जी, प्रधानमंत्री की बातों से ये स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रतिभाशाली युवा आबादी के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का लाभ उठा रहा है, बहुत अच्छी तरह उठा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी जो भारत जिस विकास यात्रा पे चल पड़े हैं, उसके सामने एक विजन है, वो है विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ रहे, समझौता हो रहे, नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर, इस तरह कई चीजें हो रही है। हाल में जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्डिक कंट्रीज, वहां जाके इन्होंने कई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ भारत और इन देशों के साथ। इसका फायदा क्या है, क्योंकि बड़ी बात आती है इस पर, इसको आलोचना भी विपक्ष पार्टियों से की गई।
0: जी बिल्कुल,
1: कि एक तरफ आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश जाने का लक्ष्य यही है कि पांच कंट्रीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट पार्टनरशिप होगी, इसका सारा मकसद यही है, ताकि भारत अवसर पैदा करे अपने नौजवानों के लिए, साथ में अन्य देश है वो भी भारत के विकसित यात्रा में भाग लेने चाहते हैं, एक पार्टनर बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें समझना चाहिए कि जब भी इस तरह की डायलॉग्स होते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, भारत को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अन्य अन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल इनोवेशन है, और सबसे बड़ी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात, क्योंकि आजकल समुद्र ही सबसे ज्यादा अवसर देता है,
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें मैरीटाइम जो कोऑपरेशन होती है, वो ब्लू टेक्नोलॉजी हो, फिशिंग हो, शिपिंग हो, ये सारे चीजों के साथ बातचीत हुई है और समझौते भी हुए, जिसका फायदा हमारे युवाओं को जाएगा, क्योंकि नए नए अवसर खोलेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, उस टेक्नोलॉजी से भी आगे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी और सुधरेगी और लोगों को फायदा होगा।
0: शिखर जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से अपनी आर्थिक साझेदारियों को बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और उसका विविधीकरण भी कर रहा है। क्या आप सहमत होंगे कि इससे न केवल भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और जो उद्यमी युवा पेशेवर हैं, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, बल्कि ये ब्रेन ड्रेन को रोकने और उसे पलटने में भी मदद करेगा?
1: बिल्कुल, देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात होती थी आपके 60s, 70s, 80s में, ये बातें आती थी कि हमारे IIT से, हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप कॉलेजेस है, वहां से लोग पढ़कर निकलकर बस विदेश जा रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज भी लोग विदेश जाते हैं, लेकिन जाके वहां शिक्षा और अधिक एडवांस शिक्षा प्राप्त करके फिर भारत आना चाहते हैं। जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो सब खोल रहे हैं और उसपे हमारे युवा जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं भारत में कितने यूनिकॉर्न्स आ चुके हैं, मतलब जिसकी वैल्यूएशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और प्रधानमंत्री की अभी जो यात्रा है, आप देख लीजिए किस किस क्षेत्र में क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा है। केवल नेदरलैंड्स को ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, पानी, सिंचाई, कृषि क्षेत्र में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नेदरलैंड्स के साथ हुआ, जो आज प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन स्वीडन के साथ हुआ है, और फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी और जो मैरीटाइम कोऑपरेशन की हमने बात की, वो नॉर्वे के साथ हुआ है। इसके अलावा PM यहां जाने से पहले UAE गए थे, वहां स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे हुआ है, और कई डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल, साइंस, टेक्नोलॉजी इटली के साथ हुआ है। ये जिस तरह पार्टनरशिप्स बनते जा रहे हैं, ये सारे पार्टनरशिप्स में हमारे युवा अच्छे शिक्षा प्राप्त करके उसमें अपने आप को केवल जॉब सीकर्स नहीं बनना चाहते,
0: बिल्कुल
1: जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं। ये बड़ी चेंज आई है।
0: शिखर जी, अपने भाषण में आज प्रधानमंत्री ने देश की जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा है, जो लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसमें उन्होंने नारी शक्ति की भूमिका भी जो बढ़ रही है लगातार, उसके बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, और जब वो ये सुनते तो न सिर्फ मन गर्व से भर जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है और बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए, महिला मर्द के साथ कंधा मिला के अपने जगह प्राप्त कर ली है। ऐसा कोई एक क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी रजिस्टर नहीं की हो, अपनी मार्क ऑफ टैलेंट को, अपना लीडरशिप को, अपना इनोवेटिव स्किल्स को। एक क्षेत्र नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्नोलॉजी क्षेत्र।

0: में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे लीडरशिप की काम इतना जबरदस्त हो रहा है जिससे लग रहा है कि पूरी जो पोटेंशियल है हमारी महिलाओं की जो स्ट्रेंथ है
1: जी
0: उसको भारत इस समय अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। और उसका ज्यादातर कारण है सरकार ने जिस तरह प्राथमिकता दी है महिला शिक्षा, महिला आगे बढ़ने का जितना एवेन्यूज और उसको एनकरेज करने के लिए जो स्कीम्स और प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से जो विकसित भारत यात्रा में महिलाओं को मतलब हर दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है।
1: सफल उम्मीदवारों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके परिवारों और समाज के योगदान का भी उल्लेख किया।
2: आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहाँ पहुँचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुँचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुँचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है।
1: प्रधानमंत्री द्वारा परिवारों और समाज को दिया गया ये जो एक संदेश, एक सकारात्मक ऊर्जा है जो न केवल युवाओं को बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने के लिए बेहद जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: प्रधानमंत्री ने एक पॉइंट इस कनेक्शन में जो बताया, देखिए आजकल ज्यादातर युवा जो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिनकी लीडरशिप हम देख रहे हैं
1: जी,
0: वो छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: यानी टियर टू टियर थ्री वहां से आगे आ रहे हैं। जो स्टार्टअप के आप देखेंगे प्रोफाइल, ये सारे यही जगह से हमारे युवा आ रहे हैं जो अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक चैलेंज लेकर कि भाई हमें इनोवेटिव कुछ करना है और एक प्रकार से एक आंदोलन बन गया है
1: जी,
0: नेशनल इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिये ये सारे नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, सरकार कई सुविधाएं दे रही है आपको, कई स्कीम्स है, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इतनी कई स्कीम्स है जिसका फायदा लेकर आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहे हैं। इससे ये दिखाता है कि कोई भी संस्था हो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसकी बल उस लोगों के साथ है जो लोग उस संस्थाओं को चलाते हैं, जो संस्थाओं को नेतृत्व देते हैं।
1: शिखर जी, अब तक जो रोजगार मेला है वो एक सरकारी पहल रही है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना है, ऐसे आयोजनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में आपकी क्या राय है?
0: ज्यादातर इन रोजगार मेला में सरकारी संस्था या सरकार से जुड़ा हुआ पब्लिक सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी समय आ गया है
1: जी,
0: ये जो हमारी यंग टैलेंट है, युवा टैलेंट है, उसको उनको भी टैप करना है क्योंकि सरकार ने बहुत दिया है निजी क्षेत्र के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए बहुत कुछ किया है। और यही समय है, सही समय, बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि निधि क्षेत्र में क्या है कि कुछ ना कुछ विश्व में कोई चैलेंज आ जाता है तो फिर उससे वो डर जाते हैं कैसे करेंगे, लेकिन भारत सक्षम है, भारत की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आगे बढ़ाने के लिए सरकार एकदम लीडरशिप लेके आगे जा रही है। ऐसे समय में निधि क्षेत्र को भी अपना भागीदारी निभाना है, जैसे सरकार कर रही है वैसे सरकार के साथ हाथ मिला के अपना जो करना है वो करना है, पी जाके अवसर आगे आएगा।
1: हम जब बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी की रोजगार सृजन में, तो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं पिछले कुछ सालों में, वो किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन में?
0: आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, मान लीजिए शिप बिल्डिंग क्षेत्र ले लीजिए, शिप रिपेयर ले लीजिए, इसके लिए देखिए सरकार ने कह दिया कि 75,000 करोड़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको इसको हाथ में लेकर फिर उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब 50,000 करोड़ की आप बात करते हैं तो उसमें तो मेन इंडस्ट्रीज होंगे, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगे, उसके बाकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होंगे। इस तरह कई भी एक स्कीम ले लीजिए, उस स्कीम में आप देखेंगे उसके डाउन स्ट्रीम भी होती है, एक मेन प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट से जुड़ा बाकी प्रोजेक्ट है जिसपे अगर निजी क्षेत्र उसमें आना चाहते हैं। देखिए वैसे ही कई क्षेत्र अब खुला गया, आपको डिफेंस खुला गया, डिफेंस में इतनी स्कोप बढ़ गया, आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनी हैं वो अभी पार्टनरशिप पे आगे आ रहे हैं और आजकल हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक, मिसाइल्स, आपके सिस्टम्स, आपके वेपनरी सिस्टम, ये सारे अभी ज्वाइंट प्रोडक्शन में चल रहा है
1: जी।
0: आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी आत्मनिर्भरता किस तरह इसकी और हम कैसे बढ़ रहे हैं।
1: शिखर जी, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे साथ ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुर्खियों में कार्यक्रम का ये अंक हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:26 हुए हैं और आप हैं अभी इस वक्त उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सांझ ढले। सांझ ढले नाम बिल्कुल एप्ट है, एकदम सही वक्त पर सही कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का नाम सांझ ढले रखा गया है। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है, सिर्फ ये जो हमको फिजिकली सांझ ढलती हुई दिखाई देती है इस वक्त को ध्यान में रखते हुए सांझ ढले नहीं, बल्कि इसलिए भी इस कार्यक्रम का नाम सांझ ढले रखा गया है क्योंकि इस कार्यक्रम में जो फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाते हैं वो उस दौर के फिल्मी नगमे हैं जिनकी सांझ अब ढल चुकी है। जी हाँ, जो बहुत पुराने नगमे हैं और एक हद तक जो हमारी नई पीढ़ी है हो सकता है कि उन्होंने शायद कुछ नगमे सुने भी ना हो और अगर सुने भी होंगे तो कम सुने होंगे, तो ऑलमोस्ट भुला दिए गए गीत हम उनको कह सकते हैं कि उस तरह के गीत हैं जो बहुत मधुर हैं, अपने वक्त में बहुत बहुत हर दिल अजीज रहे हैं। आज भी जिन श्रोताओं को वो गीत याद हैं या जो उन गीतों को जानते हैं आज भी उनका मजा लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जिन्होंने वो गीत नहीं सुन रखे, उनके लिए क्या, उनके लिए है आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज के सांझ ढले कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। और अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताइए आंखों का जिंदगी में क्या महत्व है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें आएंगी आपके जहन में। आप आंखों के बारे में बात करेंगे कि आंखें जो हैं वो ये अहमियत रखती हैं, आंखें जो हैं वो अहमियत रखती हैं, तो आप अपनी अपनी सोच सोचिए कि कौन कौन सी महत्व की बातें, कौन कौन सी अहमियत आप आंखें पर बताएंगे। हम बताते हैं आंखें की अहमियत हिंदी फिल्मों में। सन 2002 में एक फिल्म आई थी जो फिल्म विपुल अमृत लाल शाह ने निर्देशित की थी। इसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, सुष्मिता सेन, परेश रावल और आदित्य पंचोली ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अब आप कहेंगे कहां 2002 की फिल्म की आप बात कर रही हैं, कहां आप कह रही हैं कि भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। रुकिए, हमने आपको 2002 की आंखें की बात बताई। 1993 की भी एक आंखें फिल्म आई थी, ये फिल्म डेविड धवन ने निर्देशित की थी, अनीस बज्मी इसके लेखक थे और गोविंदा इसमें डबल रोल में यानी दोहरी भूमिका में थे, साथ ही चंकी पांडे, रागेश्वरी वगैरह भी इस फिल्म में थे। आप कहेंगे ये भी नई नहीं, ये भी तो पुरानी नहीं है, इसमें भी कुछ भुलाया जा सकने वाला गीतों का कोई मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उससे भी पहले आंखें, मैंने हिंदी फिल्मों में आंखें की अहमियत कही ना आपसे, 1968 में एक आंखें फिल्म आई थी, रामानंद सागर ने इसे निर्देशित किया था और इस फिल्म में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, कुमकुम, सुजीत कुमार वगैरह थे। संगीत इस फिल्म का रवि ने दिया था और साहिल लुधियानवी ने इसके बोल लिखे थे। लेकिन जिस आंखें की बात हम कर रहे हैं वो आंखें इन तीन आंखों से भी पहले बनी हुई एक फिल्म थी। 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आंखें और हमारी जानकारी के मुताबिक जो अभी तक की हिंदी फिल्म जगत की पहली आंखें हैं। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, इसे देवेंद्र गोयल ने निर्देशित किया था और मुख्य भूमिकाओं में भारत भूषण और नलिनी जयवंत थे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस दौर में इस फिल्म को 1950 में ये फिल्म आई थी, 10वीं सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली ये फिल्म थी। तो ये है बहुत सारी आंखों का जिक्र और क्योंकि ये हमने आपको बताई

1950 की आंखें, जिसमें एक गीत बहुत फेमस हुआ था अपने वक्त में और आज भी जो सिनेमा के गीतों के प्रेमी हैं उन्हें आज भी ये गीत बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सुनते हैं 1950 की आंखें का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 7:34:45 कार्यक्रम वही सांझ ढले और सांझ ढले में अभी आंखें फिल्म के ऊपर बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया तो एक और गीत सुनवाते हैं जिसमें आंखें लव

का जिक्र तो आ रहा है, आंखें लफ्ज के बारे में बात भी हो रही है, लेकिन फिल्म का नाम आंखें से कहीं मिलता जुलता नहीं है। ये फिल्म थी बाबुल। इस नाम से दो फिल्में आई हैं, एक सन 2006 में जिसमें मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी और जॉन अब्राहम थे, और जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो फिल्म आई थी 1950 में। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी ये और एक म्यूजिकल ड्रामा था। इस फिल्म के निर्देशक थे एस यू सनी, संगीत नौशाद ने दिया था और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, नरगिस और मुनव्वर सुल्ताना। फिल्म उस वक्त में बहुत बड़ी हिट तो हुई ही थी, लेकिन इस फिल्म का ये गीत उससे भी बड़ा हिट था, आज भी सुना जाता है, पसंद किया जाता है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
4: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
3: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
4: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सांझ ढले में हम बात कर रहे हैं 1950 की कुछ फिल्मों के ऐसे गीतों की जो सदाबहार हो गए, आज भी पसंद किए जाते हैं, लेकिन वक्त के बीतने के साथ साथ नई पीढ़ियां आईं तो उनके कानों तक ये गीत नहीं पहुंच पाए और उन तक ये गीत पहुंचाने का काम करता है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। 1950 में ही एक फिल्म आई थी बावरे नैन, केदारनाथ शर्मा उसके निर्देशक थे और उसमें मुख्य भूमिकाओं में राज कपूर और गीता बाली के साथ साथ विजयलक्ष्मी, मंजू, शारदा जैकब्स रॉय, प्रकाश शिराज और कुक्कू भी थे। जी हाँ, वही कुक्कू, आपको सही याद आ रहा है, हेलेन की गुरु। तो ये वो फिल्म थी जिस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उस फिल्म के कई गीत हिट हुए थे उस जमाने में, एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ऐसा कि जो गीत सुनकर आपको भी कुछ यादें ताजा हो जाएंगी। और खासतौर से इस फिल्म के गीत को चुनने के पीछे एक खास वजह यह थी कि अगर हम कार्यक्रम के शुरू से ही आंखों के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए आंखों का जिक्र किसी और नाम से आगे बढ़ाते हैं। फिल्म बावरे नैन, नैन माने आंखें।

0: आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज हुई वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रूपये प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल 92.49 रूपये प्रति लीटर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा के एडी ब्लॉक और पीतमपुरा के एपी ब्लॉक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में बेहतर सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, पैदल मार्ग, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय और बेहतर सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य निवासियों के लिए दैनिक जीवन को स्वच्छ, सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर क्षेत्र में दृश्यमान, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कीर्तिनगर में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टार्टअप्स की विशाल प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कई नई पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदर्शित स्टार्टअप का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के सहयोग से मूल्यांकन भी किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन कर उसे दिल्ली में लागू कर रहे हैं।
4: पॉल्यूशन ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते हमने बहुत सारी चीजें दिल्ली में लगाई है। जब तक वो मौसम आएगा जब दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है, उस समय तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर लें।
3: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदर्शनी में लगाए गए उत्पाद डस्ट कलेक्टर के उपयोग की जानकारी दी।
5: ये फियरलेस डस्ट कलेक्टर जो हैं, इनका टेक्नोलॉजी ये एक तरफ से हवा सक करके दूसरी तरफ से क्लीन हवा लगभग 1 घंटे में 3,00,000 लीटर हवा को क्लीन करते हैं। अभी इसकी ट्रायल चल रही है। अगर IIT तय करेगा कि मापदंड पे खरा उतरता है और इसके लगने से दिल्ली में हवा में बेहतरी किया जा सकता है, तो फिर इनको पूरी दिल्ली के अंदर कैसे कैसे लगाना उसकी भी एक प्रक्रिया में तय किया जाएगा।
3: प्रदर्शनी में लोगों ने पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण से निपटने के लिए नए विचार प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित हाईटेक केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था से दलालों की भूमिका को खत्म करना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और नागरिकों को अनावश्यक देरी से मुक्ति दिलाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार देश की सबसे बेहतर व्यवस्था बनाएगी। इस योजना को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार को भी ऐसे ही रजिस्ट्रार कार्यालय विकसित करने चाहिए जहां लोगों को अर्थपूर्ण सेवाएं मिले और सरकार का राजस्व भी बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन आधुनिक कार्यालयों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया से स्थापित व अनुभवी कंपनियों का चयन किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इससे मौजूदा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों पर भीड़ कम होने से सरकारी अधिकारी मुख्य प्रशासनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नए कार्यालयों के परिचालन से वहां दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही राजस्व की चोरी, संपत्तियों के गलत मूल्यांकन, लंबित दस्तावेजों की ट्रैकिंग में कठिनाई और फर्जी दस्तावेजों के जोखिम का खतरा खत्म हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
6: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुनक नहर पर छठ पर्व को लेकर निर्माण और सौंदर्यकरण कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि छठ महापर्व के दौरान सुविधाओं की कमी से जूझने वाला यह स्थान अब एक स्वच्छ, रोशनी से भरपूर और आधुनिक स्थान में परिवर्तित हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए गरिमा, आस्था और सांस्कृतिक सम्मान को दर्शाता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबगढ़ कॉलोनी में लगभग 4 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक रिपोर्ट।
7: सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं के विकास पर केंद्रित किया जा रहा है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव और सड़कों पर गड्ढों की समस्या को दूर करने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है, साथ ही बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास कार्यों को गति मिल रही है। श्री सिंह ने कहा कि गांव कला, संस्कृति और परंपराओं की एक महत्वपूर्ण पहचान है, इसलिए इनके विकास और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन कवर को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
6: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में व्यापक धूल मुक्त सड़क अभियान और विशेष स्वच्छता अभियान तेज कर दिया है। इन अभियानों के तहत शहरी स्वच्छता में सुधार और धूल प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर, जेटिंग मशीनों और स्वच्छता कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। इसके तहत करोलबाग जोन में निगम द्वारा इस महीने की 15 तारीख से 15 दिवसीय डस्ट फ्री रोड्स अभियान शुरू किया गया है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के कल जारी आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अति संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित यह परिसर रक्षा अवसंरचना को मजबूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने की स्थिति में कानून के अनुसार परिसर को कब्जे में ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें।
8: 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।

0: युवा रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से आग्रह किया कि वे जन शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के प्रति समर्पित मानसिकता अपनाएं
1: और हिम्मत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें, लोगों की सुविधाएं बढ़ाएं, नई सोच है, नए आइडियाज है, उस बदलाव के साथ जुड़े, अधिकारियों से, सीनियर से लगातार नए नए आइडियाज के साथ चर्चा करें, अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, देश को भी आगे लेके जाएं।
0: राजधानी में रोजगार पाने वाले युवाओं ने नियुक्ति पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए हैं।
2: मेरा चयन जूनियर इंजीनियर सिविल वर्क्स में दिल्ली डिवीजन के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी, हमें मोटिवेट किया कि हमें अपना सत्य निष्ठा से कार्य करना है।
3: मेरा सिलेक्शन एनआईटी दिल्ली में तकनीकी सहायक के पद पर हुआ है और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं एनआईटी दिल्ली के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा जो चयन हुआ है भारतीय रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया है और जो मुझे सम्मानित किया गया है आज, वो मुझे बेहद खुशी हो रही है।
5: मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो रेलवे के अंडर हुई है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए और आज प्रधानमंत्री मोदी जी से नियुक्ति पत्र पाकर के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इतनी मेहनत जब लास्ट में आकर के सक्सेसफुल होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी में कल सड़कों पर भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और उत्सव का अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेगा, जो राजधानी के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसी कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1 लाख से अधिक वनवासी समाज के लोग पहली बार अपनी विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेंगे और ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंचेंगे। इस शोभा यात्रा को चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इसके मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने आज यातायात संबंधित परामर्श जारी किया है। परामर्श में बताया गया कि कल लाल किले पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम और वहां जाने वाली कई शोभा यात्राओं के कारण मध्य और उत्तरी दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकी नाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकी नाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी। राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। हालांकि दिन में कड़ी धूप और लू के चलते गर्मी का कहर जारी रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कल का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने बवाना विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रूपये से अधिक की विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। राजधानी की सड़कों पर कल देश के विभिन्न राज्यों की लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत और नृत्य का ऐतिहासिक संगम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली में दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। श्री रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान बनाए रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
6: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त के रूप में 527 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बीमारियों की निगरानी में सुधार करने और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए राज्य को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:10:55 100.1 MHz पर यह है आकाशवाणी FM गोल्ड और आप और हम फिर से एक बार एक साथ जुड़ चुके हैं कुछ और नए गीत लेकर, कुछ और नई जानकारी के साथ। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है मधुरिमा, मेरा नाम है नईम अख्तर और आपका नाम है FM गोल्ड के श्रोता। और आप सब जानते ही हैं कि मधुरिमा का क्या हमारा तरीका रहता है। मधुरिमा के अंदर हम सुनवाते हैं आपको कुछ ऐसे गीत जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ हिट नगमे होते हैं जो पसंद किए जाते हैं। तो चलिए आज एक ऐसे ही कालजयी नगमे से आज के मधुरिमा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जो राग भीम पलासी पर आधारित है। राग भीम पलासी काफी ठाट से निकलता है, इसके आरोह में ऋषभ और धैवत नहीं लगता है और अवरोह में सब स्वर लगते हैं। अब क्योंकि ऋषभ और धैवत नहीं लग रहा है आरोह में, यानी कि 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में 7 के साथ सारे स्वर लग रहे हैं, तो इसकी जाति जो है वो औड़व संपूर्ण मानी जाती है। इसमें गंधार और निषाद कोमल लगते हैं, वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षड्ज माने जाते हैं। इस राग को गाने बजाने का समय जो है दिन का 3रा प्रहर है। और जिस गीत का हमने जिक्र किया था कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत राग भीम पलासी से पर आधारित एक गीत से करने जा रहे हैं, वो गीत ये है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:52 कार्यक्रम मधुरिमा। मधुरिमा में हम आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ फिल्मी नगमे सुनवा रहे हैं। राग यमन पर आधारित एक गीत ऐसा सुनाएंगे आपको अभी, जिसमें हमारे उन सभी सुनने वालों को डबल बुनांसर मिल जाएगा जो उस गीत को पसंद करते होंगे, और जिनको ज्यादा पसंद नहीं भी होगा अगर तो भी उनको मजा जरूर आएगा। खैर, राग यमन की हम बात कर रहे हैं जिसे राग कल्याण भी कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग का एक ऐसा बेहद लोकप्रिय और संध्याकालीन राग है जो कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, और इसे सीखने में संगीत का आधार मजबूत होता है। इसमें मध्यम, तीव्र और शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इस राग का थाट कल्याण है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और इसकी जाति जो है वो संपूर्ण संपूर्ण है, यानी आरोह में भी और अवरोह में भी दोनों में ही सात सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका जो वादी स्वर है वो गंधार है, संवादी स्वर निषाद है, गायन समय जो है वो रात्रि का प्रथम प्रहर है। रात्रि का प्रथम प्रहर आप समझते हैं ना, शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, यानी कि ये जो वक्त है जिस वक्त हम अभी आप और हम इस कार्यक्रम से एफएम गोल्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम भी रात्रि के प्रथम प्रहर में आप तक पहुंचाया जा रहा है, और ये राग यमन के लिए बिल्कुल सही वक्त है। राग यमन गंभीर प्रकृति का एक बहुत ही मधुर राग माना जाता है, और इसे अक्सर श्रृंगार रस से परिपूर्ण माना जाता है। तो चलिए क्यों ना आप तक उस गीत को पहुंचा दिया जाए जिस गीत के लिए हमने आपको कहा था कि सुनेंगे, तो हमारी तरफ से आपके लिए ये डबल बोनांसा है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:26:10। बस आखिरी 4 मिनट हमारे पास है मधुरिमा कार्यक्रम के, तो आपको जल्दी से बता दें राग पीलू के बारे में, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही मीठा और चंचल प्रकृति का राग है। इसका मुख्य रूप से ठुमरी, दादरा, टप्पा, गजल और भजनों में प्रयोग किया जाता है। काफी थाट के इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद है और इसके वर्जित स्वर आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित है। साथ ही इसका गायन समय जो है वो दिन का तीसरा प्रहर है। तो चलिए चलते चलते नईम आपसे इजाजत चाहती है और चलते चलते आपको राग पीलू पर आधारित ये गीत सुनवाना चाहती है।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन

और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी। सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी। और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उप विजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और गुलोव को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुनथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में रही हैं। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासिन ने 48 गेंदों में 113 रन की जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासिन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2, तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये

0: ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
1: I don't know, to be very honest, like I said, I just take one match at a time, but I don't know why. But I do feel confident when I'm playing against them, and I think end of the day, fortune favors the brave, and I just try to do my thing, and it works on my way.
0: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी, वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर वन में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की, लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर वन में अपनी जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टॉप टू की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन चौथे स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन सी ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि चौथे स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
3: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि तीन टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ्स में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम चौथे स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीतें, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीतें, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीते और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
2: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फॉर्च्यून जो है अपने हाथों में है और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप चार में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के आठवें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
4: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉकओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है, जहां पांच खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फोरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा, गिरी और वाचियर लाग्रेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त छठे स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉकओवर मिलेगा, जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारोव पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: आर प्रज्ञानंदा ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में यह प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं।
5: जी।
2: तो महवेश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
5: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिलाओं के शॉर्ट पुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
2: महवेश, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
5: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
2: महवेश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
5: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहां तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है, तो अगले दो दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमेंस से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर वे उप विजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भांबरी ने और जिसको अपने नाम किया है। 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे यूएस ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधु ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सौडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चू गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वैलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोताओं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमरीका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया।

0: आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की

0: एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय

0: स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
3: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
2: In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कम्प्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, एल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिन्दुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। TBI, TIH, इन तीनों का मैंडेट

0: अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT कुछ NIT कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं ले, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
2: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है प्लास्टिक्स है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है, तो इसलिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कॉन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और अब हम जानेंगे

0: आदिवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं। और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम आसानता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है।

0: इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अल्गी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
2: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। KR रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और

0: आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर। आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरांबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूलमंत्र को चर्चार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी तस्त्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो।

0: भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय,
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण

0: समाधान की अपनी अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियो शेनियो कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एजान खलमा खानों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Embassy Support Annex building in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica. He said his visit will further reaffirm bilateral ties and build upon them. Secretary Rubio expressed confidence that Indian and U.S. are going to have even more exciting and new announcements to make about strengthening of the relationship between the two countries. Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term. Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir industrial estate in Shirdi, Maharashtra. The project, developed by Nibe Limited, will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. The entire production technology and raw materials used in the project are indigenous. Speaking on the occasion, Defence Minister Rajnath Singh said India was once known as an importer of defence equipment, but in the coming years the country would emerge as a major exporter of defence products. Mr. Singh emphasized that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
1: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड सेवरल अदर डिग्निटरीज अटेंडेड द इवेंट। The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest projects. It said the premises, located in a highly sensitive and strategic area of Delhi, is critically required for the strengthening and securing of defence infrastructure and other vital public security purposes. It further stated that possession shall be taken in accordance with law in the event of non-compliance. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinched silver medals in the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today. And with that, we end this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास की स्पॉट एनएक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

0: to solidifying this important relationship.
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने के वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निबे ग्रुप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस परियोजना से अहिल्यानगर जिला रक्षा विनिर्माण केंद्र बन गया है। इस दौरान निबे ग्रुप और इसराइल की एक कंपनी के बीच समुद्री विमानों और ऑप्टिकल उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्याउन काउंटी की ल्यूशेन कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की मांग की है। साथ ही कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खनन हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने लापता सभी लोगों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस ने इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर के फ्रांस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने कहा कि यह कदम गाजा जा रहे समुद्र बेड़े पर सवार कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है। श्री बेरोट ने यूरोपीय संघ से बेन ग्वीर पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है। इसराइल के सुरक्षा मंत्री का पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो सामने आने के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कंबोडिया में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 श्रमिकों की मौत हो गई और 93 अन्य घायल हो गए। पहली घटना कंबोडिया के काबोंग छनांग प्रांत में हुई, जहां एक भारी मालवाहक ट्रक श्रमिकों को कारखाने ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया। इस दुर्घटना में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। दक्षिण पूर्वी प्रांत स्वे रिंग में एक अन्य दुर्घटना में कारखाने के श्रमिकों को ले जा रही एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेन के सूमी शहर के बाहरी इलाके में रूस के ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के रूस नियंत्रित इलाके के स्टारोब्लिक्स में एक कॉलेज के छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई में हुआ। स्टारोब्लिक्स में 11 लोग मारे गए थे। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा रात भर रूस पर किए गए ड्रोन हमलों में एक रूसी तेल टर्मिनल में आग लग गई, इसमें 2 लोग घायल हो गए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल व्यापार निवेश सीईपीए वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस दौरे का मुख्य केंद्र बिंदु भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वार्ताओं का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। इस दौर के दौरान वार्ताओं का एक और दौर सोमवार से शुक्रवार तक ओटावा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता सार्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्य करती हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गोबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गोबार्ड ने कहा कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद यह फैसला लिया गया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गोबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रशासन को उनकी कमी खलेगी। सुश्री गोबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उप निदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम भार वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा खनोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर सिंगार लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आपके साथ। श्रृंगार में आभूषणों का बड़ा महत्व है। आभूषण कह लीजिए, गहने कह लीजिए, ये प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम रहे हैं सदियों से। प्रेम का ऐसा ही एक प्रतीक है कानों में लटकने वाला झुमका, जो खूबसूरती में तो चार चांद लगाता ही है। ये उन लम्हों को भी बयां कर जाता है जब हर आहट दिल को छू जाती है।

लता जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म परख से, और झुमका तो मिल गया, अब आगे की क्या बात है? बात यह है कि कानों में झुमके जब अपनी मध्यम से झनकार छोड़ते हैं तो जिसके कानों में ये होते हैं ना, उसका अंदाज ही बदला बदला नजर आता है, और ये झुमके दिल की हर लहर की खबर दूसरे तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि झुमका इतना रोमांटिक हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय सिनेमा ने तो इसे खूब इस्तेमाल किया है अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग सीन में, और हम भी ऐसे ही गीत आपके लिए लाए हैं। अगला गीत है आपके लिए फिल्म दोराहा से, आशा जी की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अमानुष फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और बात हो रही है आज हर सिंगार में झुमके की। झुमका सिर्फ गहना ही नहीं, ये प्रेम का प्रतीक है। और देखिए शेर में क्या खूब कहा है कि चांद है जो आसमां में, वो तो है उसकी जबी, और तारे हैं ये सारे उसके झुमके की तरह। और चलिए वो गीत भी सुन लेते हैं हम जो झुमके के लिए बहुत ही जाना जाता है। जी हाँ, आप समझ गए ना, फिल्म मेरा साया से। ये गीत आप सभी के लिए आशा जी की आवाज में।
1: झुमका गिरा

भई हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि झुमके की बात हो रही है, झुमका बरेली के बाजार में कब गिरने वाला है। तो भाई लीजिए, गिर भी गया झुमका बाजार में। और अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत ही आकर्षक गहना है और इसका जो है सांस्कृतिक अर्थ भी है। संस्कृति में अगर देखें तो झुमकों का एक अलग ही महत्व है। बहुत तरह के झुमके मिलते हैं और जब भी झुमके श्रृंगार का हिस्सा बनते हैं, चेहरे की जो चमक है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। और मोहब्बत में तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोटर ना बंगला, झुमका ना हार मांगू। और क्या मोहब्बत में मांगा जाता है, ये इस गीत के माध्यम से मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से बयां हो पाएगा।

0: ये गीत सुना आपने फिल्म किस्मत से शमशाद बेगम आशा जी और साथियों की आवाज में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: दिन वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
3: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
4: मेरा दिल।
3: क्या?

0: सी झटके हट तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: हर सिंगर का ये सफर यहीं तक।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
3: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
3: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
2: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पुनिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
5: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और आज की रात गीत मेरे मनमीत लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत मेरे मन मीत का, और इसमें हम सुनवाते हैं आपको गोल्डन एरा के गाने बिना रुके।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत मेरे मनमीत का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी आप सभी के साथ। और गीत मेरे मनमीत में हम और आप सुनते हैं गोल्डन एरा के गीत, और वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इसी के साथ दीजिए माधुरी को इजाजत गीत मेरे मनमीत से। आप बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24 लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं, 4 पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता हैं। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांसकी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूवान काउंटी की लियूशेनयू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के अंतर्गत 5वें उप कार्य समूह भूमि की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि यह बैठक भारतीय सेना और रूसी थल सेना के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi. Mr. Modi said in a social media post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jay Shankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. Defence Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Naib Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative.
2: Self-reliant India और Make in India के लिए private sector की energy का उपयोग आवश्यक है। इसलिए policy related reforms, FDI को, foreign direct investment को liberalize किया गया, strategic partnership model को लागू किया गया, positive indigenization list लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी list, more than 5,000 items की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
1: द सेंटर हैज आस्क्ड जिमखाना क्लब इन न्यू दिल्ली टू हैंड ओवर इट्स प्रमाइसेस बाय 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, साइटिंग दैट द लैंड वाज अक्वायर्ड for strengthening defense infrastructure. An order issued by the Land and Development Officer under the Housing and Urban Affairs Ministry stated

रंगोल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी एक और कहानी गुमराह। जी हाँ, मुझे भी याद आ रही है ऐसी एक कहानी जिसे याद करके कभी दिल तो कभी आंखें भर जाती हैं। निशा उस दिन कॉलेज से लौटकर चेंज ही करने जा रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। कौन हो सकता है इस समय? माँ तो अभी अभी सब्जी लेने गई हैं। यही सोचते सोचते निशा ने दरवाजा खोला। सामने माँ खड़ी थी, लहूलुहान, अस्त व्यस्त, बदहवास, घबराई हुई। क्या हुआ माँ? माँ को इस हालत में देखकर निशा घबरा गई। बेटा, वो अभी मैं जा ही रही थी कि अचानक पीछे से दो लड़के बाइक पर सवार होकर आए और मेरी चेन खींचकर भाग गए। बोलते बोलते माँ रो पड़ी। कोई नहीं माँ, आप तो ठीक हो ना? निशा ने माँ को सहारा दिया, लेकिन वो घबराई हुई थी। बोली, बेटा वो चेन तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये कहकर माँ फबक पड़ी। माँ के कपड़े मिट्टी में सने थे, गिरने से घुटने छिल गए थे, गले में खरोंचे आई थी जिससे खून बह रहा था। निशा माँ को लेकर पहले डॉक्टर के पास और फिर पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखा आई। वो सोच रही थी कैसे भटके हुए ये लड़के हैं, जरा भी संवेदना नहीं। माँ जैसी महिलाओं से इस तरह की क्रूरता। उसे एक पुराना गीत याद आने लगा था।

अगले दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कुछ लड़कों को पकड़ा था उन्होंने। निशा की माँ को शिनाख्त के लिए बुलाया था। निशा माँ को लेकर पुलिस स्टेशन गई। कुछ लड़कों को उनके सामने लाया गया। उनमें से एक को देखकर माँ बोली, हाँ हाँ यही है वो इंस्पेक्टर साहब। निशा जो अभी तक कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थी, माँ की आवाज सुनकर नजर उठाई तो देखा कि वो लड़का लगातार निशा को ही देखे जा रहा था। निशा को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी से लगी। निशा ने याद करने की कोशिश की, कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। फिर हाँ, अचानक ख्याल आया, अरे ये तो उसका क्लासमेट है, प्रेम। निशा के होश उड़ गए। सामने प्रेम खड़ा था। उसे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। प्रेम आज एक अपराधी, एक चेन स्नैचर के रूप में उसके सामने खड़ा था।

आज सालों बाद प्रेम को देखकर निशा की आंखों में कॉलेज के पहले दिन से लेकर अभी तक की एक एक घटना किसी चलचित्र की भांति घूमने लगी। दिल्ली में वो उसके कॉलेज का पहला दिन था। मेरठ में अपने घर के नजदीक के स्कूल से 12वीं पास आउट करने के बाद उसने दिल्ली के एक कॉलेज से LLB करने की सोची और फिर आ गई दिल्ली। साथ में माँ ने भी बेटी की पढ़ाई को तरजीह दी और कुछ दिनों के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन में आकर किराए पर रहने लगी। निशा के लिए ये एक अनजान जगह थी, न कोई सहेली, न कोई मित्र और न ही किसी से कोई जान पहचान। घर में उसकी माँ के सिवा उसका कोई और ना था। पिता आर्मी में थे और जब निशा छोटी थी तभी एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। बचपन से माँ ने उसे अकेले ही पाला था, जिसका निशा को पल पल एहसास था। और अब वो कानून की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि एक ऊंचा मकाम हासिल कर अपनी माँ को वो सारी सुख दे सके जो उन्हें नहीं मिला। निशा का लक्ष्य उसका करियर था।

0: एक लड़का अक्सर निशा का पीछा करता हुआ दिखाई देता। निशा उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने सामने से आकर निशा को प्रपोज कर दिया। निशा रुको। निशा रुक गई। जी बोलिए। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर निशा सन्न रह गई। लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? जान जाओगी धीरे धीरे, वो लड़का लापरवाही से बोला। वैसे प्रेम नाम है मेरा, याद रखना, प्रेम जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। ये कहता हुआ प्रेम चला गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी भी लड़की का पीछा करना, उसे परेशान करना, उस लड़की को कितना मानसिक तनाव देता है। उसे नहीं पता था कि स्टॉकिंग एक अपराध है। प्रेम की बातें सुनकर निशा बहुत डर गई। घर आकर उसने माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे समझाया और निडरता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। निशा वास्तव में इधर उधर की बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन जितना जितना वो प्रेम से दूर भागती थी, प्रेम कहीं ना कहीं उसका पीछा करता हुआ दिखाई दे ही जाता था। प्रेम लगातार निशा का पीछा कर रहा था और निशा सहमी हुई थी।
1: अरे वही तो है।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं, तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा।

साथियों, आप सुन रहे हैं कहानी गुमराह। इस कहानी में निशा, जो कि एक कॉलेज गर्ल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता से कर रही है। एक दिन उसकी माँ कुछ चेन स्नेचर का शिकार हो जाती हैं और पुलिस स्टेशन में माँ बेटी उन स्नेचर्स के शिनाख्त के लिए जाती हैं। तो निशा याद करती है कि उनमें से एक लड़का उसका पहले का क्लासमेट है, जो उसका पीछा किया करता था। अब आगे की कहानी। निशा को पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सोचता था और प्रेम को निशा के सिवा। लेकिन निशा इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी कि प्रेम के दिल में दरअसल क्या चल रहा है और वो किस हद तक जा सकता है। और फिर जब वैभव से जान पहचान हुई तो निशा को ध्यान ही नहीं रहा कि प्रेम जैसा कोई इस कॉलेज में है भी। वैभव जहां पढ़ने में बहुत तेज था, तो वहीं एक संपन्न घराने से भी ताल्लुक रखता था। दोनों के विचार और करियर का लक्ष्य भी एक ही था, इसलिए निशा और वैभव में दोस्ती होते देर न लगी।

उधर प्रेम को निशा का वैभव से बात करना नागवार लग रहा था। उसे लगने लगा कि निशा वैभव की दौलत देखकर उसकी ओर खींच रही है। उसके अंदर हीन भावना पनपने लगी और वो वैभव से चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि निशा ने दौलत की खातिर उसका प्यार ठुकरा कर वैभव से दोस्ती की है। एक तरफा प्यार में तड़पते प्रेम को दिल का टूटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो निशा को अमीर बन के दिखाएगा, ढेर सारी दौलत कमा कर दिखाएगा। अब वो भटकने लगा, उसके कदम आवारा होने लगे। वो उस रास्ते पर बढ़ने लगा जहां कोई रिश्ता नहीं जाता, सारे रिश्ते छोड़ जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है।

प्रेम बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहता था, सो वो कुछ आवारा और अपराधी टाइप के लड़कों के संपर्क में आ गया। धीरे धीरे चोरी, रहजनी, स्नैचिंग उसका पेशा बनता चला गया। उसने दौलत तो हासिल की, मगर उसका जमीर मर गया। उसने खुद अपने ही हाथों अपनी संवेदना और इंसानियत का गला घोट दिया। निशा से प्रेम के दावे करने वाला प्रेम आज निशा का ही अपराधी बन

निशा जी, आप घर जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर निशा की तंद्रा भंग हुई और वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी। उसने माँ को कैब में बिठाकर घर जाने को कहा और कुछ काम का बहाना कर वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। हजारों प्रश्न आंखों में लिए वो प्रेम के सामने खड़ी थी और प्रेम के रंग बिरंगे सपनों का महल एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा। जोशो जुनों में उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया था उसकी असलियत सामने आ गई थी। मगर इंसान इतनी आसानी से खुद को गुनहगार कहां मानता है। अक्सर वो अपना गुनाह छिपाने के लिए अपना दोष दूसरों पर मढ़ देता है और यही प्रेम ने भी किया। उसे लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार निशा है। ना वो वैभव की ओर आकर्षित होती और ना ही वो इस हाल में होता। उसका कमजोर मन निशा को ही दोष दिए जा रहा था।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी और आज की कहानी गुमराह आपको सुना रही है कुसुमलता। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है इसको हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldair@gmail.com। आपकी ईमेल का हमें इंतजार रहेगा और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आप रोज सुनते हैं, मैं फिर बता देती हूँ, 9868868653 9868868653। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ fmgoldair@gmail.com। तो आइए इस कहानी को जारी रखते हैं। सुना रही हैं आपकी कुसुमलता।

निशा को सामने देख प्रेम मानो फट पड़ा। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो निशा, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम मुझे छोड़कर उस वैभव के पास चली गई। मैंने तुम्हारे लिए दौलत कमाने का ये रास्ता अपनाया। अगर मैं दोषी हूं तो तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। कान खोल कर सुन लो, सजा मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलनी चाहिए। और इस तरह से प्रेम सारा दोष निशा पर मढ़ी जा रहा था।

निशा जो अब तक चुप थी, प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बोली, प्रेम हम कॉलेज में प्यार करने के लिए आते हैं या अपना करियर बनाने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने। मुझे तो उसी वक्त तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए थी जब तुमने मुझे रास्ते में रोककर परेशान किया था। रही बात प्रेम की, तो तुम किसी से क्या प्रेम करोगे प्रेम, जब जन्म देने वाले माँ बाप से ही तुम प्रेम नहीं कर पाए।

उनकी उम्मीदों पर ही खरे नहीं उतरे। आखिर जिसने तुम्हें जन्म दिया उनके प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी थी। उन्होंने बड़े अरमानों से तुम्हें कॉलेज भेजा और तुम यहाँ अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देने के बजाय प्रेम का बहाना कर आवारा गर्दी करने लगे। तुम कहते हो तुम दौलत कमाने के लिए मेरी वजह से गलत रास्ते पर गए। क्या दौलत सिर्फ गलत रास्ते पर ही चलकर कमाई जा सकती है? सही रास्ते पर चलकर भी तो खुद की काबिलियत को निखारा जा सकता है। और हर इंसान को भगवान इतनी तो समझ देता है प्रेम कि वो अच्छे और बुरे रास्ते की पहचान कर सके।

निशा की बातें अब भी प्रेम की समझ में नहीं आ रही थी। वो बोला, निशा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार की कद्र ना की। प्रेम निशा को ही दोष दिए जा रहा था। निशा एक व्यंगात्मक हंसी हंसकर बोली, प्यार की बात तुम करते हो प्रेम, तुम प्यार के बारे में जानते भी हो? प्यार त्याग सिखाता है, दूसरों का भला करना सिखाता है, लूटना नहीं। तुम खुदगर्ज और स्वार्थी इंसान हो प्रेम, प्यार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। जिस दिन तुम्हें वाकई प्रेम करना आ जाएगा ना प्रेम, उस दिन तुम मेरा तो क्या किसी का भी अहित ना कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हें प्यार करना आ गया तो।

ये कहकर निशा पलटी तो देखा कि सामने प्रेम की मां खड़ी थी। उन्होंने निशा और प्रेम की सारी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो बिना कहे ही अपने बेटे की करतूतों की माफी मांग रही थी। प्रेम ने मां को देखा तो उसकी भी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, बस मुझे इस पुलिस स्टेशन से बाहर ले चलो। प्रेम की मां निशा की ओर देखने लगी और याचना भरे लहजे में बोली, माफ कर दो बेटी, मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि ये अब ऐसा कभी नहीं करेगा। काश कि आपने जिम्मेदारी ली होती आंटी, काश कि सच में आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाया होता तो प्रेम यहां नहीं होता। इनफैक्ट अगर सभी माएं बचपन से ही अपने बेटों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं, उन्हें अच्छे से संस्कार दें, लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, उनकी भावनाओं उनकी इच्छाओं का मान रखना सिखाएं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि कोई भी लड़का कम से कम इस तरह के अपराध तो नहीं करेगा। आंटी, हम अपने घरों में लड़कियों को तो हमेशा से सिखाते रहे हैं ना कि बेटा सही से कपड़े पहनो, देर रात तक घर से बाहर मत रहो, बड़ों का सम्मान करो। आखिर ये सब हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, आखिर क्यों नहीं सिखाते? तुम ठीक कहती हो बेटी, अगर हम अपने लड़कों का भला चाहते हैं तो अब उन्हें ही सिखाने की बारी है। लेकिन अभी अभी प्रेम को माफ कर दो प्लीज। ठीक है आंटी, आपके लिए, क्योंकि आप भी मेरी माँ की तरह एक माँ हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को पीड़ा पहुंचे, इसलिए मैं इतना कर सकती हूँ कि प्रेम की बेल हो जाए। बस अब प्रेम से कहना कि वो सही रास्ते पर चले।

साथियों, तो ये थी आज की कहानी गुमराह। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का निर्देशन और प्रस्तुतिकरण किया रश्मि कुकरेती ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: इस दौरान भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने नई दिल्ली में साकुर साइंस प्रोग्राम 2026 में भाग लेने वाले छात्रों के एक दल को रवाना किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56 छात्र, जिनमें 24

0: लड़के और 32 लड़कियां शामिल हैं। चार पर्यवेक्षकों के साथ इस महीने की 30 तारीख तक जापान यात्रा पर रहेंगे। भारत इस कार्यक्रम में घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा ले रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये सभी छात्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करता है। भारत अप्रैल 2016 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। चीन के शांशकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट क्युआन काउंटी के लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। रूस ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के समीक्षा सम्मेलन में अंतिम दस्तावेज को मंजूरी नहीं मिल सकी, क्योंकि कुछ मुद्दों पर अमेरिका के कड़े रुख के कारण सहमति नहीं बन पाई। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राजदूत डो होंग वियत के प्रयासों और अन्य जिम्मेदार देशों के समर्थन से कई समझौते किए गए तथा सहमति के करीब एक मसौदा अंतिम दस्तावेज के लिए तैयार किया गया। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 196 रन बनाए, जिस लक्ष्य को पंजाब ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Secretary of State Marco Rubio discussed sustained progress in the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to the regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi yesterday. Mr. Modi said in a social media about that post that India and the U.S. will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, inaugurating the U.S. Embassy support and its building in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for PAC Silica.
2: We've expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garh Mela through video conferencing. In the 19th edition of the Rose Garh Mela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra yesterday. The project developed by Navy Limited will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. Speaking on the occasion, the Defence Minister said that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defence manufacturing through the Make in India initiative. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said, the new model registrar offices will provide facilities such as digital assistance counter.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं बिना कहे। उसमें अपनापन भी है, शरारत भी और एक एहसास भी जो दिल को तुम्हारे पास खींच लाता है बार बार। शायद मोहब्बत का एहसास ऐसा ही होता होगा जब किसी के ना होने के बावजूद दिन खूबसूरत लगने लगे और उसकी मुस्कुराहट जब भी याद आए दुनिया खिल जाए। बहुत खूब कहा है किसी ने कि वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरे इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं।

रात की खामोशी में एक चेहरा ऐसा भी होता है जो याद बनकर दिल में समा जाता है, और फिर उनकी एक मुस्कान ऐसा असर करती है जैसे चेहरे पर बिजली गिर पड़ी हो, और ये दिल बस मुस्कुराता रह जाता है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा किसी ने कि हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, हुस्न को दिल में छुपा कर देखो, ध्यान की शमा जला कर देखो, फाख्ता चुप है बड़ी देर से क्यों, सरों की शाख हिला कर देखो, दिल में बेताब हैं क्या क्या मंजर, दिल में बेताब हैं क्या क्या मंजर, कभी इस शहर में आकर देखो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और आपके साथ मैं सुरभि। बहुत खूब कहा किसी ने कि करता उसे बेकरार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर। आंखों में कटी पहाड़ सी रात, आंखों में कटी पहाड़ सी रात, सो जा दिले बेकरार कुछ देर। ऐ शहरे तरफ को जाने वालो, ऐ शहरे तरफ को जाने वालो, करना मेरा इंतजार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर।
1: हर चेहरा यहाँ चांद

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी रात सुरमई प्रोग्राम में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, आप कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में आज चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खौनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होगी या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है कलाकार

कभी यूं मिले कोई मसलेहत, कोई खौफ दिल में जरा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो। वो फिराक हो या विसाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बनके खिलेगा क्या जो चिराग बनके जला ना हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों पे ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया है, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, कुछ कागज के फूल लिए कांच के बाजू आए। उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, उन फकीरों को गजल अपनी सुनाते रहियो, जिनकी आवाज में दरगाहों की खुशबू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी खुशबू, कोई खुशबू मैं लगाऊं तो तेरी खुशबू आए।

रात सुरमई प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूं, मेरी चाहत इबादत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, वो चेहरा चांद है आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ मुद्दत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

और सौदागर फिल्म के इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए एक तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान खोनी पालवा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर लाल रोहिंगड़ी को पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वे 23 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लिया गया। अमेरिका के सांसदों और आवर्जन अधिकारी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप प्रशासन की नई ग्रीन कार्ड नीति की कड़ी आलोचना की है। इस नीति के अंतर्गत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने गृह देश से ही आवेदन करना होगा। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि वे अमरीकी नागरिकता और आवर्जन सेवा USCIS के इस निर्णय के खिलाफ हर संभव कदम उठाएंगे और इसे वापस लेने की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट H-1B वीजा पर काम कर रहे विदेशी कर्मचारियों पर भी लागू होती है या नहीं। फिलहाल USCIS ने कहा है कि देश के भीतर रह रहे लोगों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने

लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स की ओर से श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतकीय पारी खेली, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का इस रात और सुबह के बीच के खूबसूरत सफर पर। ये शांति और सन्नाटा, जब आधी दुनिया मीठी नींद सो रही है और आधी दुनिया अपनी आंखों में नए ख्वाब लेकर जाग रही है। जी हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं आपके साथ इस शांत से सन्नाटे में, आपकी तन्हाई को सुरों से सजाने के लिए। समय हुआ है 3:11 और 41 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हमराही कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

इस गहरे और खूबसूरत सन्नाटे में जब रेडियो पर कोई युगल गीत बजता है, यानी दो आवाजों की जब जुगलबंदी गूंजती है, तो लगता है जैसे दिल को किसी का इसी तरह से खूबसूरत सा साथ मिल गया है। जी हाँ, हम हैं आपके साथ हमराही कार्यक्रम में और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। फिल्म महल का ये गीत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

0: होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 3:28 और 6 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी ही दोस्त रूपा के साथ। साथियों, कहते हैं कि अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन असली सफर का मजा तो तब आता है जब कोई हमराही साथ हो, चाहे वो जिंदगी का सफर हो या फिर सुरों का। और ये खूबसूरत रिश्ता बंधा होता है एक रिश्ते की प्यारी सी डोर के साथ।
1: की डोरी

कुछ कह रही हैं। दिल की धड़कनें अब काबू में कहां रह रही है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है। जरा धीरे से मुस्कुराकर कह दो उसे जो कहना है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हमारी और आपकी सांसें बह रही हैं।

अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं, अब तो ये जिंदगी तेरे बिना एक पल भी चलती नहीं। तेरा साथ इतना सुहाना लगे जैसे रेशम की डोरी नहीं। कभी कभी साथ इतना अच्छा लगता है कि दिल चाहता है कि कोई भी पल आपस में जुदाई का सबब ना बने, लेकिन वक्त के हाथों सभी मजबूर हैं। कभी ना कभी तो जुदाई का सबब आता ही है। फिलहाल आप हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:40 और 39 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से ये गीत किशोर कुमार साहब और लता जी की आवाजों में।

वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, वक्त की रेत हाथों से इस कदर फिसल जाती है, कुछ यादें उम्र भर के लिए दिल में ठहर जाती हैं। क्या पता कल ये रात, ये समा, ये साथ हो या ना हो, चलो आज इस पल को जी लें, क्या पता फिर ऐसी सुबह आती है या नहीं आती है। लेकिन जनाब, हम तो बिल्कुल वादे के पक्के हैं, जब समय होता है आपसे मुलाकात का तो बस झटपट से चले आते हैं आकाशवाणी के पास और जो राहें मिलवाती हैं हमें आपसे। फिलहाल समय हुआ है 3:46:14। सुनते हैं एक और मधुर सा युगल गीत जिसे हमने शामिल किया है आया सावन झूम के फिल्म से, लता जी और रफी साहब के स्वर में।

हमराही के सफर पर आप हैं रूपा के साथ, और फिलहाल जो गीत आपको सुना रहे हैं वो है जॉनी मेरा राम फिल्म से किशोर साहब और आशा जी की आवाजों में आज की आखिरी पेशकश।

0: अरुणिमा के सफर पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल रूपा को विदा दीजिए हमराही की कार्यक्रम से। आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजेरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान खोनी पलावा क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में कथित रूप से अवैध ढंग से रह रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में 13 पुरुष, 7 महिलाएं, 3 नाबालिग लड़के और 1 नाबालिग लड़की शामिल है। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन म्यूजो जिलराई पावल MZP ने मुख्यमंत्री लाल दुहोमा पर राजनीतिक धोखे और पक्षपात का आरोप लगाते हुए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की विवादित पुनर्नियुक्ति को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने 23 अप्रैल को आदेश जारी कर आर लाल रोडिंगी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी। वे 30 अप्रैल को वाणिज्य और उद्योग तथा भू विज्ञान और खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रही थी और 1 मई से उन्हें पुनः सेवा में लाया गया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट क्यूआन काउंटी के लियूसेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार तथा दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

नमस्कार प्रणाम, आप हैं अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह की 4:11:23। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। नमस्कार।

तैयार रहें हर पल हर क्षण, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है और आशा है उसी से ही आपके जीवन का सफर और भी आसान हो सकता है। तो इस आशा की किरण को अपने हाथों से फिसलने ना दीजिए, अपने दिल को काबू में रखिए और जोश को और भी ज्यादा बनाकर रखिए, क्योंकि ये जिंदगी अगर अंधेरों से भरी हुई है तो लाखों तारे भी हमारे पास हैं जो हमारे गमों को, गम की काली रातों को दूर करने में सहायता करेंगे। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रूपा है आपके साथ, अरुणिमा लेकर।

अरुणिमा यानी वो सुबह की लालिमा जो दिन हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और आशा का सवेरा लेकर आती है।

एक अंधेरा लाख सितारे। जी हाँ, अंधेरा महज कुछ पल का, कुछ क्षण का होता है। जब उस गम को हटाकर लाखों सितारे यानी हमारी जिंदगी को रोशन करने के लिए अगर हम देखें तो एक छोटी सी खुशी भी बहुत महत्व रखती है। एक छोटी सी बात जो हमारे दिल को एक नया जोश दे, एक नई हिम्मत दे। हम सभी के पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जिसका इस्तेमाल करना हम सब भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सकारात्मक सोच की, विचारों की। बातें होंगी और भी बहुत सारी, पर इस गीत के बाद।

घबराना कैसा, जी हाँ, दिल को थोड़ा करना कैसा। गर्दिश में चाहे कितने भी तारे हों, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत से ही काम लेना होगा। किसी ने खूब कहा है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा संसार होता है। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन विजेता जो बनता है ना, वो सिर्फ सकारात्मक सोच और विचारों को अपने दिल में घर करने के लिए रुकने की इजाजत देता है और गम की सोच को हमेशा परे करता है। जब मरना ही है सभी ने, तो जीने को जो खुशी है, जीने की जो उम्मीद है, आशा है, हम उसको क्यों धूमिल होने लगे। अगर हम उसे ही धूमिल करने लगेंगे तो जीने की आशा हमारे दिल में क्या रहेगी। तो जनाब, हमेशा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। माना कि रास्ते पर चलते हुए कुछ कठिनाइयां आ ही जाती हैं, यही तो जीवन है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो कैसा जीवन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा के सफर पर आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। बातें कर रहे हैं हम सकारात्मक सोच की और विचारों की। जी हां, सकारात्मक सोच ऐसी सोच जो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और इसी सोच को हमें हमेशा से दिल में बनाए रखना है। कभी भी अपने दिल को इतना कमजोर ना बनाएं कि हर दुख की घड़ी में हम घबरा जाएं। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो आपके अपनों को सही राह दिखाने में कामयाब रहता है और उनका हौसला बढ़ाने में आगे ही आगे चलने का सबब देता है।

0: कितनी वफाए कितनी छुपाए कितनी छुपाए कह देना
1: अपनी कहानी कितनी छुपाए कितनी सुनाए कह देना
0: अपनी वफाए कितनी।

भाई हम तो इतना ही कहेंगे, हर दिन अगर चुनौती लेकर आता है उसके साथ साथ अपने साथ सकारात्मकता भी लेकर आता है। बस हमें उस लम्हे को थामना है, देखना है कि उस मुश्किल में, उस परेशानी में ही तो उसका हल छुपा है। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। इसी कोशिश का नाम है जिंदगी। जी हाँ, ऐसी जिंदगी जिसे हम चाहें तो उसे विभिन्न रंगों से भर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो कुछ नहीं। गोया कि यूं माना जा सकता है कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले के हाथ में तो है ही, पर हमारे हाथ में भी थोड़ा कुछ तो है। जीते रहिए इसी उम्मीद के साथ। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और किसी ने खूब कहा है, वो जीवन ही क्या जीवन जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो। अगर जीना है तो सबके लिए जीकर देखो, फिर आपको इस जीने का अंदाज ही बदला हुआ लगेगा।

अरुणिमा सुन रहे हैं आप आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की अरुणिमा के साथ मैं हूं रूपा धवन, आप ही की अपनी दोस्त। तो जनाब, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं सकारात्मक सोच की और विचारों की, तो यकीन मानिए जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास

की परिस्थितियां भी अच्छी होने लगती हैं। वैसे मुश्किलों का जिंदगी में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके मुस्कुरा लेना और मुस्कुराकर जीना ही असली जिंदगी है, खासकर तब जब आपके हर पल में आपके अपने साथ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खुशी के लम्हों को थामने के लिए हमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। जी हाँ, जब तक खुशियां हमारे पास पहुंचती हैं, हम कहते हैं ओह कितने समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई। तो कुछ ऐसी ही देरी का इजहार करता है ये गीत, जिसे आपको सुना रहे हैं दुनियादारी फिल्म से अमित कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

0: नहीं आएगी तो क्या करोगे?
1: उसकी चौखट पे जाके मरूंगा।
0: ना ना ना ना, तुम मरोगे तो मेरा क्या होगा?

यकीन मानिए, एक अजीब सा सुकून और गजब की एनर्जी महसूस होने लगी है अभी। जी हाँ, मुझे तो यही महसूस हो रहा है, क्योंकि यही तो जादू है सकारात्मक सोच और विचारों का। आज का अरुणिमा यहीं तक। रूपा विदा लेती है आपसे। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद फिर से भोर सुहानी कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए रूपा को। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि अमरीका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी।

0: श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमरीका का दृष्टिकोण साझा किया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट इनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साबली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की अध्यक्षता में 21 और 22 मई को नई दिल्ली में 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह CTWG की पूर्ण बैठक और उप समूहों की बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें CTWG की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने कार्यक्रम का मुख्य भाषण दिया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के सामूहिक और एकजुट प्रयासों के महत्व पर भी बल दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान 7 महिलाओं सहित कुल 24 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार यह अभियान खोनी पलाव क्षेत्र में चलाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक इस इलाके में अवैध रूप से रह रहे हैं। चीन के शांसक्सकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट क्युआन क्वांटी के शियुल्यू शेनू में कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 लोगों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बांग्लादेश में कल खसरा और खसरा जैसे लक्षणों से 13 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 512 हो गई है। बांग्लादेश के एक प्रमुख समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक खसरे से पुष्टि मौतों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 426 तक पहुंच गई है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 196 रन बनाए। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में जीत हासिल की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्षितिज पर सूरज की लालिमा ने बसेरा डाला है। कायनात का प्यारा तोहफा ये भोर सुहानी लाया है। स्वागत कर रही है ये ताजगी भरी सुबह आज की नव किरणों की रोशनी में, सारी दुनिया को एक नई ताजगी से, खुशियों से सराबोर कर रही है। हम भी आपके साथ वक्त की रफ्तार के साथ आपका साथ निभा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के माध्यम से भोर सुहानी लेकर हाजिर हूँ मैं आप ही की सेवा में, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुप्रभात प्यार भरा मेरा नमस्कार। ये सवेरे का सूरज हम सबके लिए है।

स्वागत करने में कोई भी कोर कसर छोड़ नहीं रहा। जी हाँ, वृक्षों की डालियां लहराकर झूम रही हैं, पक्षियों की चहचहाहट भी हो रही है। आज की सुबह की स्वागत की तैयारियों में सब लगे हुए हैं। ये ताजगी भरी सुबह आज और कौन सी खुशियां लेकर आएगी हमारे लिए, ये अभी तक एक रहस्य है। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतेगा, हम अपनी अपनी खुशियों की ओर रवाना हो जाएंगे। राह में नई चुनौतियों को पार करके एक खुशियों भरा रास्ता चुनेंगे। पत्तों पर बिखरी ओस की बूंदें, ठंडी हवा, ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात ने हमें आज का दिन एक और तोहफे के रूप में दिया है। और कौन कौन इसकी स्वागत की तैयारी कर रहा है या कैसे स्वागत कर रहा है, सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।

नई रोशनी से प्रकाशित करता सवेरे का सूरज, दुनिया का हर कोना अपनी लालिमा से भिगोए हुए है। धीरे धीरे ये लालिमा आसमान से लेकर दुनिया के हर कोने तक छा जाएगी और इस सवेरे के सूरज का, आज के नए दिन का

झूमती हवा के साथ हम भी बहकना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, लेकिन वक्त की तरह हवा भला कहाँ रुकती है। जी हाँ, ये हवा हमें ठंडक तो देती है, हमारे दिल को राहत देती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। फिलहाल वक्त भी भाग रहा है, दौड़ रहा है। 5:25 और 33 सेकंड हो रहे हैं। आप हैं भोर सुहानी में रूपा के साथ। तो जनाब, आज का दिन भी हर दिन की तरह एक खास तोहफे की तरह है, या यूं कहें कि जिंदगी का एक और साफ और नया पन्ना, जिस पर आज हम अपनी खुशियों की नई इबारत लिख सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी के 100 दिनों से अच्छे हैं प्यार के कुछ दिन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।